0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार

0: ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले के कई प्रखंडों में CO और BDO का हुआ तबादला। जिला समन्वय समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की गई जान। और महिला से हुआ दुष्कर्म तथा भूमि विवाद में हुई चाकूबाजी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के निर्देश पर गोपालगंज जिले के कई प्रखंडों के अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इसकी जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी अधिसूचना के अनुसार कुचायकोट के नए अंचलाधिकारी के रूप में मनोरंजन कुमार को नियुक्त किया गया है। माझा के नए CO शम्मा परवीन को बनाया गया है। उचका गांव का नया CO विजय कुमार होंगे तो पंचदेवरी के नए CO उमा कुमारी होंगी। वहीं थावे के नए अंचलाधिकारी के रूप में सुधीर कुमार की तैनाती की गई है, तो बैकुंठपुर में नए अंचलाधिकारी के रूप में शिवम कुमार को तैनात किया गया है। साथ ही सिधवलिया के भी अंचलाधिकारी का तबादला हुआ है, यहां अभिषेक कुमार को अंचलाधिकारी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट के वर्तमान सीओ मणिभूषण कुमार को लखीसराय भेज दिया गया और माझा के वर्तमान सीओ को सीतामढ़ी के सोनवर्षा में भेज दिया गया है। नई तैनाती के अनुसार कुचायकोट के नए बीडीओ आदित्य प्रकाश बनाए गए हैं, बरौली के नए बीडीओ अजीत कुमार रोशन होंगे, तो उचका गांव में नए बीडीओ के रूप में मनोज कुमार पंडित अपनी सेवा देंगे। फुलवरिया में भी नए बीडीओ के रूप में मनीष कुमार श्रीवास्तव की तैनाती की गई है, तो वहीं कुचायकोट के वर्तमान बीडीओ सुनील कुमार मिश्रा का तबादला पूर्वी चंपारण के छौड़ा डानो प्रखंड में बीडीओ के पद पर किया गया है। इसी तरह से माझा थावे और भोरे प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों का भी तबादला हुआ, इसकी भी सूचना जारी हुई, जिसमें माझा के नए बीडीओ वैभव शुक्ला को बना दिया गया और भोरे का नया बीडीओ मुकेश कुमार को बनाया गया है, तो थावे का नया बीडीओ प्रियंका प्रिया को बनाया गया है। आज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने अपने विभागों की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और लंबित कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने का निर्देश दिया। जिले में 65वें सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इसका आयोजन मिंज स्टेडियम में किया गया था। उत्साहपूर्ण तरीके से जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार और जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और इसमें अंडर 17 बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में इस्लामिया उर्दू अकेडमी मीरगंज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्री योगेंद्र ऋषिकुल हाई स्कूल रेवतीत को 2-1 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं श्री योगेंद्र ऋषिकुल हाई स्कूल उप विजेता रहा। प्रतियोगिता के सफल संचालन और आयोजन में शारीरिक शिक्षकों मुरलीधर राय, बसंत कुमार, पिंटू कुमार राय सहित विनीत कुमार शर्मा, आदर्श कुमार पुरी और विवेक कुमार, सुभद्रा कुमारी तथा माला सिन्हा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। जिले के अलग अलग हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक मामला हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बाजार का है, जहां सड़क हादसे में साइकिल सवार 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। मृतक सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के महुआ भूसा गांव निवासी 18 वर्षीय रजनीश कुमार पिता मंजय शाह बताया जा रहा है। रजनीश बुधवार को साइकिल से मिर्जापुर बाजार खरीदारी करने जा रहा था, इसी बीच तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र में भी एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 8 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई। अनियंत्रित वाहन ने एक 8 वर्ष के बच्चे को रौंद दिया। मृतक बच्चा मोहम्मद अदनान का 8 वर्षीय पुत्र मोहम्मद एहसान है। यह सड़क पार कर रहा था, तभी उचका गांव थाना क्षेत्र के साखे रामदास गांव में सर्वोदय विद्यालय के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बच्चा इसी गांव का निवासी था। घटना के बाद से बच्चे के परिजनों में चीख पुकार मच गया। इधर गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव में शौच के लिए घर से बाहर निकली एक महिला को जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद महिला के परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि यह महिला सुजानपुर गाँव के बुलेट शाह की 22 वर्षीय पत्नी किरण कुमारी थी, जो मंगलवार की देर रात शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान जहरीले कोबरा सांप ने उसे डस लिया। महिला को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में रेफर कर दिया और आज सदर अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला ने पड़ोस के ही युवक पर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर मारपीट करने की भी बात कही गई है। पीड़ित महिला के आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल महिला का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का उनके आवास पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें पुष्प माला पहनाकर और अंग वस्त्र देते हुए सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष पटेल ने कहा कि सांसद महोदय के नेतृत्व में बेहतर काम यहाँ किया जा रहा है, जनता की अच्छी सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से निवेदन किया गया है कि सभी लोग बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें ताकि सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुँचाया जा सके। गोपालगंज के सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संतोष कुमार का व्हाट्सएप हैक कर साइबर अपराधियों ने 40,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी सागर महतो पिता हीरालाल महतो, दूसरा मुन्ना महतो पिता दीनानाथ महतो, ये दोनों मोहम्मदपुर के ही निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी मनीष सिंह और दूसरा बबलू सिंह, ये दोनों सगे भाई हैं और जगधारी सिंह के पुत्र बताए जा रहे हैं। ये लोग छवही खास थाना माझागढ़ के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज काफी दिनों से गोपालगंज जिले में तैनात सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद का स्थानांतरण हो गया। उनके जगह पर नए सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने प्रभार ग्रहण करने के बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और अस्पतालों में दलालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत खेत बचाओ अभियान के तहत गया जी जिले के टेकारी प्रखंड के सिमुआरा पंचायत के गुलेरिया चक गांव में धान की सीधी बुआई, ढैंचा आधारित हरित खाद एवं संतुलित उर्वरक उपयोग विषय पर प्रक्षेत्र भ्रमण सह प्रशिक्षण एवं किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच धान की सीधी बुआई, ढैचा आधारित हरित खाद और संतुलित उर्वरक का उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जैसी वैज्ञानिक एवं संसाधन संरक्षण तकनीकों का प्रसार कर टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सासा मुसा में बजरंग टाकिज के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक परिवार के लोग पिकअप गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। इस घटना में एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई, साथ ही महिला का पति और उनका बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है, दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस पिकअप को लेकर बघौच गांव के रहने वाले सामीनाथ महतो के पुत्र बिरबल महतो अपनी पत्नी 30 वर्षीय रंजू देवी के साथ और बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। इस घटना में बिरबल महतो की पत्नी रंजू देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप को चला रहे बिरबल महतो और उनका एक बेटा इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी है, दोनों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया है। आज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद महिला के शव को परिजनों को सौंप दिया और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। काफी मशक्कत के बाद पिकअप गाड़ी जो ट्रक में फंस गई थी उसको निकाला गया और उसमें से महिला के शव और घायलों को निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया। पिछले 18 जून को विजयपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर मोड़ के पास एक पिकअप चालक को अपराधियों ने गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक शैनुल्लाह शेख को गोली मारने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के शुरुआती जांच में यह मामला लूटपाट का नहीं बल्कि त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एसपी ने इस मामले में एसआईटी टीम का गठन किया था और यूपी पुलिस की एसओजी के सहयोग से छापेमारी करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिकअप चालक शैनुल्लाह शेख को गोली मारने में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का एक मामला दिख रहा है। हालांकि इसमें अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बातें सामने आ रही हैं। इधर पिछले 24 घंटों में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 41 लोगों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान लगभग 600 लीटर देशी विदेशी शराब भी जब्त की गई, साथ ही एक कार, मोटरसाइकिल और दो ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। वहीं अवैध वाहन चालकों से भी जुर्माने के रूप में 31,000 से अधिक की राशि वसूल की गई है। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें हत्या के प्रयास, SC ST एक्ट के मामले और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट तथा शराब तस्करी जैसे मामलों में गिरफ्तारियां की गई हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के कई प्रखंडों में CO और BDO का हुआ तबादला। जिला समन्वय समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की गई जान। और महिला से हुआ दुष्कर्म तथा भूमि विवाद में हुई चाकूबाजी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
16: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
17: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
18: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
19: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
20: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
21: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
19: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
21: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
19: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: कहानी दे हमें कहानी।
22: एंड बस फिर बाजा उठाया मैंने, मैं हर बार बोलता रहता हूँ मैं गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत मेरा दिल और ये मेरा बाजा। बस आई शूटिंग में हारमोनियम एवरी वे, जो सुनने को तैयार है, कभी कार के बॉनेट पर, कभी आई विश टू कैच प्रोड्यूसर्स एनीवे कि आई हैड नो क्लूज। आजकल तो आपके लैपटॉप है, टेक्नोलॉजी है, यू लॉग ऑन टू एनीथिंग एंड यू कम टू नो कौन कहाँ रहता है, क्या क्या नहीं। वी हैड नो आइडिया कहाँ जाना है। एक जगह होती थी तार दो एयर कंडीशन मार्केट, वहाँ चले जाते, बाजा लेके खड़ा हो जाता बाहर में।
23: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में अनु मलिक को। 350 से भी ज्यादा अलग अलग जॉनर की फिल्मों में म्यूजिक दे चुके अनु मलिक ने साल दर साल कुछ नया किया है। फिर चाहे वो 80s में अमिताभ बच्चन स्टारर मर्द और गंगा जमुना सरस्वती का म्यूजिक हो, या 90s का फिर तेरी कहानी याद आई का सोलफुल म्यूजिक हो, या बाजीगर का चार्ट बस्टर म्यूजिक हो, या 2001 में आई अशोका का सेंसुअस म्यूजिक हो, ये अपनी कॉम्पोजिशंस, स्टाइल और म्यूजिक को कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंट करते रहे हैं।
22: Everyone is curious to know, आप क्या करते कैसे। मैंने हजारों बार ये किया है। It is a gift that Saraswati Maa has given and I will not take credit for it। मैं जो कुछ हूँ
24: जी
22: ऊपर वाले कर्म साथ है। मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला भी, अच्छी बातें भी बोली। You know, people, I always say love me or hate me, but you can't ignore me. And because of that, I started working so hard trying to come out with my own stuff, जो यादगार म्यूजिक होगा, जो आप शेल्फ लाइफ कहते हैं।
24: करेक्ट।
22: इफ यू गो बैक टू टाइम एंड व्यू माय म्यूजिक फ्रॉम द 90s, आई नेवर वांटेड टू बी अ गाय फ्रॉम द 80s और द 90s, आई वांट टू बी अ गाय ऑफ टुडे। द रीजन वाई हैव डन दिस इज, जब मैं 80s में काम करता था तो मैं आगे सोचता था 5 साल के म्यूजिक कैसा होगा, तो 90s के अंदर सोचता था 2000 में कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल उस जमाने में जब हम लोग ऐसे गाने अतरंगी बनाते थे, आज यू नो यू यूज द वर्ड ओह शी सो हॉट, शी सो सेक्सी, हमने उस पर गाना बनाया था 90s अर्ली अर्ली नहीं, शुरू भी नहीं होता 90s, 1991 सेक्सी सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले, उस पर एकदम बवाल हो गया था। और आई एंड मेड इंग्लिश वर्ड्स, माय एडोरेबल डार्लिंग आई थिंक ऑफ यू एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग, सो आई शुड स्टार्ट, आई शुड थिंक कि मैं कोई नई चीज कैसे लाऊं। लेकिन काली काली आंखें, मुझे पता नहीं था रैप, अभी रैप होता है, मगर मैंने अपने अतरंगी रैप कर दिया। मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, आई शुड डू सम ऑफ दिस मैडनेस, जो उसको फिर लोगों ने फिर आगे बढ़ाया।
23: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में अनु मलिक को। अनु मलिक लगभग पिछले 3.5 दशकों में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से लेकर हर बड़े सिंगर के साथ काम कर चुके हैं, कई सिंगर्स का करियर लॉन्च किया है, कईयों को अवार्ड दिलवाए हैं, जैसे रिसेंटली मोह मोह के धागे के लिए पापॉन को। इनको खुद को भी अपने म्यूजिक के लिए कभी अवार्ड्स मिले हैं तो कभी क्रिटिसिज्म।
22: आई वुडन्ट से रिजेंटमेंट और लक, आई बिलीव दैट पीपल चूज टू डू व्हाट दे चूज टू डू विद मी एंड आई हैव चोजन टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू विद माय वर्क। Under, I've never had this kind of anger or malice towards people. I never will have. In fact, people have had a lot of malice and a lot of anger for no rhyme or reason. But मैं उसको अपने दिल में उतारता नहीं। For example, if someone is saying आप trolling बहुत चलती है, आपको troll करते हैं लोग, तो my daughter laughs, daddy you never affected, because क्या होता है? People do this to offset their own failures in life. आप अनुमले तो बन नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो? आपको इतनी ताकत तो है कि उसको माँ भी निकालिया दो। So that doesn't affect me. लोग गालियां दे रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ, because you know what? In history, It's me who'll be remembered, good or bad, whatever. मेरा वर्क है, अशोका है, विरासत है, बॉर्डर है, एलओसी कारगिल है, आप उमराव जान है, बाजीगर है, lot of big directors launched their careers with me, lot of actors will launch with my music, and I take that as a personal achievement. In fact, today also I'm very glad that I'm working with a new lot. For example, aaj with the new lot, that day I was very impressed. You got the Zee Cine Award, aur main bahar nikal raha tha to the person later on at a party dur se, are I think इफ यू रिमेम्बर परिणीति चोपड़ा वॉज कमिंग आउट, ए अनु मोमो के धागे कलेक्टेड ऑल द अवार्ड्स मैन, मतलब तेरे लिए भी कंपोज करेंगे. तो आई फेल्ट वेरी गुड की परिणीति इज टुडे, इफ अ गर्ल ऑफ टुडे. I mean, I worked with Hema Ji when I was only 23. I worked with Zeenat Aman. I worked from there to Kareena Kapoor. You know what I mean? And suddenly when you have a beautiful, hardworking actor like Parina Singh, I love Momo Ke Dhaage. I take that as a compliment. Why? That you have to be, see, you have to be relevant today. I am not going to say ke maine wo kiya, maine 80s mein ye kiya, maine 90s mein wo kiya. You know what? There's one line that provokes me and motivates me. And I'll tell you what that line is. And it should impress you.
0: लंदन की लड़की नाना, अमेरिकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पेरिस की पोरी नाना, इंडिया आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट

0: यहाँ की लड़की वाह, बदन पे साड़ी वाह, माथे पे बिंदिया वाह, कानों में बाली वाह, पैरों में पायल वाह, होठों पे लाली वाह, हाय भोली भाली वाह, हाय शर्मीली वाह।
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

कपिल द सिक्सर वावा, लता मंगेशकर वावा, जाकिर का तबला वावा, भरतनाट्यम वावा, यहाँ का भांगड़ा वावा, यहाँ की लावणी वावा, यहाँ का डांडिया वावा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताजमहल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूर

0: रेडियो
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
1: हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशन हमारा।
0: यो।
1: ईस्ट और वेस्ट
0: यो।
1: इंडिया इज द बेस्ट
0: यो।
1: ईस्ट और वेस्ट
0: यो।
1: इंडिया इज द बेस्ट
0: यो।
1: East or West?
0: Yeah.
1: India is the best.
0: Yeah.
1: Come on, let me hear you say.
0: I-S-T-I-A.
1: Come on, everybody say.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: कहानी ये है मेरी कहानी।
11: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में अनु मलिक को। अनु मलिक ने कभी भी अपने बीते हुए कल को पलट कर नहीं देखा, फिर चाहे वो डेज ऑफ स्ट्रगल हो, डेज ऑफ सक्सेस एंड ग्लोरी हो या डेज ऑफ फेलियर्स हो, वो हमेशा आगे देखकर चलते रहे हैं। लोगों को बातों से जवाब देने के बदले अपने काम से जवाब देते रहे हैं। अपने आप को फिल्म आफ्टर फिल्म, सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग, ईयर आफ्टर ईयर प्रूव करते रहे हैं।
12: सी क्या होता है, थिंग्स चेंज। आई नो यू वांट टू रिलिव दैट ग्लोरी एंड से कि यार, आप सुबह उठते थे 6 बजे एंड यू डिडंट नो व्हेन दूसरे दिन 6 का बजते थे। दैट वाज द टाइम आई हैव सीन यू हैड 3 सॉन्ग्स इन वन डे रिकॉर्डिंग, यू हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ सिंगर्स, यू हैड द 90s के आप देखो, यू नो यू हैड a magical combo of Kumar Shanu. Then we had Alka, and we had Udit, we had Sadhna. I mean, we worked our hearts out, and that was a different atmosphere. Abhi, you see, when gets to me is many of the great composers of that time also. I mean, I was not the only one on 90s. I'll be very honest with you. We had a fabulous combo of a lot of good composers, lot of great writers, lyric writers, lot of great singers, and all contributed to 90s. Usme I'm lucky I was chosen to give music for say Baazigar or Chahat or Naraz or Najaz. I mean, I can't forget the Vishesh Films combination. Mahesh Bhatt ka bahut bada haath hai meri zindagi mein. I mean, I would say he's really encouraged me and took me to great places. Then came Abbas Mastan, and then came Audi companies like Tips and Venus. You can remember wo jo ek zamana tha. So I think I remember those days, I relish those days, but I don't live in the past. I don't feel ke ab main apne purane gaane sun raha hu ya main soch raha hu yaar wo ek hamara zamana tha aur hum ye the aur hum wo the. I don't do that. Log mujhe aake bolte hain, they remember my songs more.
10: Kahani, ye hai meri kahani.
11: To sunte rahiye ye hai meri kahani mein Anu Malik ko. Jaate jaate आइए जानते हैं व्हाट इज अनु मलिक्स ड्राइविंग फोर्स. आज भी ऐसा क्या है जो उन्हें चार्ज्ड अप रखता है? अब भी ऐसा क्या है जो वो अचीव करना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो वो चेस कर रहे हैं?
12: आई फील माई टैलेंट वैलिडेटेड विद द नेशनल अवार्ड. आई थिंक दैट ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज. आई थिंक इट वॉज वेरी सोल सैटिस्फाइंग व्हेन इट वॉज अनाउंस्ड के मोमो के धागे गेट्स two national awards. For me, it was very soul satisfying for my wife, for my kids, for me. I want to say to India's youth, I think in all fields, it could be in your radio stations, it could be in airports, it could be in hotels, it could be in corporates. I think the youngsters are rocking. I like to be with them. In fact, you know why I'm working is to be with them. I don't want to compete with them. I just love them. I love the energy that they bring, the way they're excited, the way they speak to you, and the way they applaud you if you do something good. I think it's a very honest youth that I find today. I think it's a very sorted youth. They've got a brain of their own, very smart. In fact, I should say that at this age, I am still again at the right place at the right time, and I thank YRF, and I hope to do more work with good directors, sign some good films, and I really want to work hard now.

0: उलझे।
1: जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी, कहानी किस्मत की बंजर जमीन पर अपनी मेहनत और पसीने से कनक सोना उगाने की, कभी खुद को साबित कर गुजरने की, तो कभी जिंदगी बदल देने वाली हार की, और कभी दुनिया जीत लेने की। ऐसी ही कहानियां करेंगी आपका इंतजार।
2: आईला आईला आईला आईला

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
15: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
15: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया,
3: पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
15: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
16: इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हर एरा में एक ऐसी शख्सियत आई है जिसने ट्रेंड सेट किया है, जैसे 70s में आरडी बर्मन, 80s में बप्पी लहरी, 2000s में एआर रहमान। लेकिन इन्हीं के बीच लेट 70s में एक ऐसा कंपोजर आया जिसने न सिर्फ 90s के दशक में दिलों पर राज किया, बल्कि तब से अब तक लगातार बदलते ट्रेंड के साथ खुद भी बदलते जा रहे हैं और हर जॉनर में, हर एरा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने डिलीवर करते जा रहे हैं। ये है मेरी कहानी में आज हमारे साथ हैं द वर्सेटाइल म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड परफॉर्मर अनु मलिक। आइए जानते हैं अनु मलिक के म्यूजिकल सफर की शुरुआत कैसे हुई।
17: ग्रोइंग अप इन अ म्यूजिकल फैमिली, आई एम द सन ऑफ द लेट एंड ग्रेट, आई वुड लाइक टू कॉल हिम द ग्रेट सरदार मलिक साहब। आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने उनसे सीखा कम लेकिन काफी चीजें विरासत में पाई हैं। द रीजन इज माय स्टाइल हैज बीन कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डैड्स, लेकिन कहीं ना कहीं मेलोडी जो है वो वहीं से आती है। और यू नो, छोटी सी उम्र 6-7 साल की उम्र में आप यू सराउंडेड बाय योर फादर हुज प्लेइंग म्यूजिक, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, गाने बन रहे। तो आई टू बी वेरी क्यूरियस क्या हो रखा है, बट आई नेवर पेड अटेंशन टू इट। मैं अपने स्कूल में जा रहा हूँ, एक दिन क्या हुआ, क्या है वो

0: द नेक्स्ट डे. तो मैंने क्या किया, आई बिकेम होम एंड आई सैट इन द कॉर्नर एंड आई स्टार्टेड पुटिंग अ ट्यून टू इट. ये मेरा अर्लीस्ट मेमोरी है. आई स्टार्ट पुटिंग ट्यून ऑन द वर्ड्स सो दैट मैं इजिली इसको समझ सकूं. माय फादर हर्ड दिस एंड ही सेड कि यार ये क्या है. एंड ही सेड कि ये तुमने बनाई. हाँ अच्छा मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ उस पर तुम बनाते हो. तो आई मेड अ न्यू ट्यून देयर. तो मैंने खुद डैडी से पूछा, डैडी ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है. बोला तुम अपनी खुद तर्जे बना रहे हो. बट मोर देन दैट इट वाज द पेन ऑफ माय फादर दैट टर्न्ड मी इनटू अ कंपोजर. क्योंकि ही वाज टू टैलेंटेड एंड काम नहीं था उनके पास. तो मैंने कसम खा ली थी कि डैड मैं कुछ बन के बताऊंगा. और मैं जितने भी टॉप हीरोज हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करूंगा. ये जज्बा मेरा 8-9 साल की उम्र में शुरू हो गया था.
1: तो सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में अनु मलिक को. 1977 में अनु मलिक ने पहली बार एज अ म्यूजिक कंपोजर काम किया फॉर अ फिल्म हंटर वाली. इस हिसाब से आज वो इंडस्ट्री में लगभग 40 साल पूरे कर चुके हैं. आइए जानते हैं कि उनको म्यूजिशियन बनने के लिए सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर किया.
0: यू सी क्या होता है फिल्मी बफ इन द सेंस के आई स्टार्टेड नोटिस. हमारे नेबर थे, जब पार्टियां होती थी वो भी फिल्म जाते थे. तो सब गेस्ट उनके पास आते थे और कोई गेस्ट हमारे पास नहीं आता था. तो आई टू वंडर कि यार ये क्या चक्कर क्या है. तेरे फिल्म में डैडी इज वेरी टैलेंटेड बट नो वन कॉल्स इन फॉर अ पार्टी एंड नो वन कम्स ओवर. आई सेड आई वांट टू चेंज दिस. ये जज्बा मेरा जागा था 8-9 साल के बाद. एंड आई ऑल्सो ग्रू अप हियरिंग शंकर जयकिशन उस जमाने में. अब जब छोटी सी 9 साल की उम्र में आप आवारा सुन रहे हो तो यू सी वंडरिंग ये कौन लोग हैं. बट माई एंटायर लाइफ चेंज व्हेन आई हर्ड आर डी बर्मन. सबसे पहला गाना जो मुझे याद है इन माई अर्लीस्ट मेमोरी इज दम मारो दम. जो हमारे नेबर थे, क्रिश्चियन नेबर थे, और उनके यहाँ रिकॉर्ड बज रहा था टाउन टाउन टाउन टाउन टाउन टाउन टाउन टाउन टाउन. तो मैंने आई हैड नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ म्यूजिक. आई सेड ये कौन है. एंड देयर वाज अ सोल बीट ता ते दा दा कुछ कुछ कुछ. आई वाज बोल्ड ओवर. मैं बोला भाई ये जो है ये कौन है. एंड आई वांट टू बी लाइक हिम.

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
1: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर

0: महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।
1: मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, कि अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए।
2: इतिहास में शायद ऐसे शास्त्रार्थ, डिबेट या बहस का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है। इस शास्त्रार्थ का नतीजा क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रश्न पूछने वाली महिला का नाम उभय भारती था, और पशुपेश में पड़े सन्यासी कोई और नहीं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हैं। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के इस एपिसोड में कहानी उस महान सन्यासी की, जिनकी लिखी किताबों को हम में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, जिनके लिखे श्लोक उससे भी कम लोग जानते हैं। लेकिन जब सवाल जीवन और मृत्यु का, व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच के संबंधों का हो, उसी सन्यासी के विचार 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के विचार बन जाते हैं। जब एक राजनीतिक भारत की जगह एक आध्यात्मिक भारत की चर्चा होती है, तब इसी महामानव की याद आती है। भारतवर्ष में इस बार महागाथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की।
0: यह है आज के भारत का राजनीतिक मानचित्र। लेकिन क्या राजनीतिक सीमाएं ही भारत को बनाती हैं? अब आप एक आध्यात्मिक भारत की रूपरेखा देखिए। उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत के पीछे जिनकी सोच है, उन्हें ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं।
3: रक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से, जो है आध्यात्मिक एकता की दृष्टि से, ये सारी चीज़ है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मतलब ऐसे व्यक्ति हो नहीं सकते दूसरे जो इस तरह का चिंतन रखते, और उन्होंने सफल प्रयोग किया।
0: आज से 1200 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी बटा था।

0: दाकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87 894 18744।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
8: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
11: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
12: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
11: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
12: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
12: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
12: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
14: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
13: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
15: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
13: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
13: और 90971602।

0: और वज्रपात का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली के तहत कार, जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए यह दर ₹2 प्रति किलोमीटर, बड़े निर्माण वाहनों और अन्य वाहनों के लिए टोल की दर ₹6 से ₹8.10 प्रति किलोमीटर तक निर्धारित है।
1: बिहार रोड यूजर फीस डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई, यानी बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी। पहले से इसमें प्रावधान नहीं था, जैसा भारत सरकार ने अभी टोल कलेक्शन के संबंध में प्रावधान किया है उसको ध्यान में रखते हुए उसके समकक्ष बिहार सरकार ने यह नीति बनाई है।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी रामजी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत अकुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों को मजदूरी की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
0: कैबिनेट ने पटना नगर निगम की ओर से 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद पटना नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला निकाय बन जाएगा। बॉन्ड से प्राप्त राशि से शहर की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक हो जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि मलाही पकड़ी स्टेशन के बाद मेट्रो भूमिगत हो जाएगी। इसके लिए 6 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण जारी है। इनमें राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन शामिल है। गौरतलब है कि पहले चरण में अभी तक मेट्रो का परिचालन बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड 0 माइल से होकर भूतनाथ तक ही किया जा रहा था। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 8 जुलाई तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में आज विकसित भारत समृद्ध बिहार के तत्वावधान में बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इधर इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के सभी नागरिकों से अपने अपने कार्यक्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के चिकित्सक, नर्स और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर बिना पंजीयन के प्रैक्टिस कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी अन्य राज्य की राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक केवल निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन पोर्टल पर अपलोड कर राज्य में विधि सम्मत रूप से कार्य कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर

0: की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें नगर परिषद दानापुर निजामत के पार्षद पदों के आरक्षण के संबंध में आयोग की ओर से एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पत्र पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। आयोग ने आधिकारिक सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के 18 माह के DL.ED कोर्स की योग्यता पर बहाल शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 18 महीने की DELED की उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भी कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
1: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज जिले के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जुलाई महीने में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहेगा। झारखंड पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान राजद से वैशाली के पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 303 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक वार्षिक सौराठ सभा का आज विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सौराठ सभा के दौरान मैथिल समाज के विवाह के लिए योग्य वर वधु की तलाश पूरी करते हैं, साथ ही समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अरवल जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर तथा सब जूनियर राष्ट्रीय पेचक सिलाट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिले के 4 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। मुंगेर जिले के पूरब सराय थाना क्षेत्र के दिलावरपुर में छापेमारी कर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में नकली सिगरेट सहित सिगरेट बनाने वाले सामान और 9.5 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। हालांकि पहली पाली का मैच पूरा खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। गौरतलब है कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी टीम 11 में शामिल नहीं थे। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, पुलिस प्रशासन के 2014 अधिकारी इधर से उधर। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ग्रामीण मजदूरों को 7 घंटे काम की 300 रुपए मजदूरी। दैनिक भास्कर लिखता है, भावुक पल, नए आर्मी चीफ सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे पिता को सैल्यूट किया, फिर पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रभात खबर ने राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, चढ़ावा चोरी के आरोपी के कमरे में मिला रामराज कोष का संदूक, अब तक 80 लाख रुपए हो चुके हैं बरामद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
8: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
2: जी, मैं मनन कपूरा से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: आज तो बारिश का मजा लिया आज।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, बारिश हुआ है तो मौसम ठंडा है।
2: आपके तरफ हुआ कि नहीं?
1: हाँ हाँ, मेरे तरफ भी हुआ है, एक घंटा हुआ 9 से 10 बजे के बीच।
2: नहीं तो एक घंटा तो थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि खेत का पट सिंचाई हो गया है थोड़ा। फिर धूप निकलेगा तब मजा आएगा।
1: हाँ, इतना से क्या
2: नहीं
1: होना है, धूप धूप होगा तो उमस होगा।
2: बहुत मजा, अब कीड़े पतेंगे सब निकलेंगे, सब बहुत तो होगा, मौरी भी निकलेगा। लेकिन हाँ, राहत मिला है
1: जी,
2: बहुत राहत मिल गया, इतना राहत। बच्चे सब बाहर निकल के खूब नहा रहे थे।
1: अच्छा लगता है।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है, हमको तो देख के ही उमंग हो गया, कितना लड़के मस्ती में ना सब नहा रहे हैं। तब आज मैडम, आज दोस्ताना फिल्म का गाना सुनाइए ना।
1: जी, बता दीजिए कौन सा।
2: वो कितना मुश्किल है पर भूल जाना।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: आपको नहीं। अच्छा। पहले सोनी जी को।
1: जी जी।
2: और आपको
1: जी,
2: और आपके जितने भी लोग काम करने वाले हैं लोगों को।
1: अच्छा।
2: हम तो सुनेंगे ही।
1: जी जी,
2: है ना। आप पर रेडियो प्रेमी जितने हैं रिमझिम का, खासकर उन्हीं को, है ना, और उनके साथ ये सब डेलीकेट रहेगा। बोल दीजिएगा कि मन्नान बोले हैं सोनी जी को पहले डेलीकेट रहेगा।
1: जी जी, बिल्कुल रहेगा।
2: हाँ बोलिएगा, ये काटिएगा नहीं आवाज।
1: नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे।
2: हाँ, ताकि वो सोनी जी तो सुनेंगे ना।
1: हाँ।
2: तो सुन ले तो ख्याल आ जाएगा कि हाँ, कोई मन्नान नाम का बोला था कोई। चलिए मेरा सब ठीक है, तब उसी को सुना दीजिए।
1: ओके, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ओके, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, क्या हाल चाल?
1: मैडम जी। अच्छा, कैसे मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं। ऐसा हो गया, आपका हो गया
1: जी तो सोमवार को रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। शुक्रवार को
0: होता तो है।
1: तो 12 बजे फोन लगाया तो एक बार लगा तो कट गया।
0: अच्छा, नहीं, शुक्रवार को भी रिकॉर्डिंग हुआ था।
1: तो सब ठीक है मैडम जी?
0: हाँ, सब ठीक है। आप बताइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: तो बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
1: गाना कौन सुन के सुना दीजिए।
0: ओके, कौन सा सॉन्ग?
1: तो घर और मकान हमारे यही गाना
0: साफ सुनाई नहीं दिया, एक बार और बोल दीजिए।
1: मैंने ये गाना नो आम हमारे दुख के मकान बा तोहरे।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी आपो जितना रेडियो रिमझिम तब दोस्त यार जी है सबके साथ।
0: चलिए बढ़िया। फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
9: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास 10वीं तक कंप्यूटर एजुकेशन बस फैसिलिटी रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
10: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
9: तो देर मत कीजिए
10: सेंट जॉन स्कूल स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: Pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
18: नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
17: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
18: बिल्कुल अच्छे हैं, और सब घर परिवार?
17: सबको ही बढ़िया है। आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
18: बिल्कुल बढ़िया है।
17: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका? चलिए बढ़िया है। और बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
18: जी हमें अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुनना है, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तो।
17: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
18: जी सबसे पहले आपको और सभी गोपालगंज जिला वासियों को और सिवान जिला वासियों को, और रेडियो के सबसे बड़े फैन है दुश्मियारा मलिक जी है और चंद्रा कुशवाहा जी, उनको भी सुनाना चाहते
17: हैं। ओके, तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
18: आपका शुभ नाम?
17: मेरा नाम भारती है। आप भी अपना नाम बताते जाइए ताकि इसमें रहेगा तो अच्छा रहेगा।
18: हमारा नाम है राधे समरसिया, गरतनी सिवान जिला के कबीरपुर गाँव से बतिया। सारा लोग परेशान, गर्मी से दिन और।
17: अच्छा जी,
18: ओके, गुड नाइट।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन का जिला गुना।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: दीदी हमारे यहाँ तो बहुत बेहतरीन बरसात हो रही है, कल रात से बरसात हो रही है, अभी बरसात हो रही है। जी
1: चलिए बढ़िया, मौसम तो ठंडा होगा आपके तरफ।
0: जी जी जी, और नाश्ता पानी हो गया आपका?
1: जी मेरा हो गया, आपका हो गया क्या?
0: हाँ मेरा भी हो गया।
1: और क्या बताइए, कैसे हैं, क्या
0: सुन रहे हैं दीदी? गाने दिन दिन चलाते रहते हैं दिन भर, और क्या करें।
1: आज कौन सा गाना सुनना है?
0: जी गाना सुनना था अम्मो है जी का।
1: कौन सा गाना?
0: शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी सबसे पहले आपको है, और अपने कजरा सिंह लोधी है, मांगीला चंदेल है, मांगीला काका है, गोपाल ओझा है, सरवा साहब।
1: जी तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: ठीक है, नमस्ते जी।
12: नमस्ते,
13: का हाल बा?
12: हाल तो ठीक बा, अपन बताई।
13: ठीक है बा, मौसम के हाल चाल बताई।
12: आज तो 9 बजे से बारिश भइल है, 10 बजे ले मौसम ठीक बावे।
13: हम लोग के तरफ तो पंजाब में बारिश नहीं होता है, कोई होता है, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ता है।
12: अब तो मतलब मानसून आ ही गया है तो हल्का फुल्का बारिश स्टार्ट हो रहा है। अब उधर नहीं होता है क्या कभी?
13: नहीं, कितना दिन से बारिश यहाँ कहाँ हो रहा है।
12: अच्छा, कोई नहीं, इधर से जाएगा उधर भी घूमते घूमते।
13: हाँ, इधर भेजिए।
12: हाँ हाँ, बिल्कुल भेज रहे हैं। और सब बढ़िया है?
13: हाँ बढ़िया है।
12: चलिए, बढ़िया होना चाहिए। कौन सा गाना सुनिएगा आज?
13: गाना सुना दीजिए, परदेसियों से नवाखिया मिलाना।
12: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाइएगा भी?
13: हाँ हाँ,
12: बता दीजिए।
13: परमात्मा को, बिजली को, धनजय को, हमारा स्वराज पूजा को, रानी को।
12: जी जी, चलिए बढ़िया है।
13: कभी कभी हम लोग के टाइम नहीं मिलता है, टाइम का भाव से थोड़ा देर से बंद हो जाता है मोबाइल, तो हम लोग सुन नहीं पाते हैं। ऐसे कि हम लोग मालूम नहीं चलता है कि कितना बजे बजेंगे कितना बजे नहीं बजेंगे। तो
12: 5 से 7 बजता है शाम को और सुबह में 9 से 11 बजता है।
13: हाँ।
12: तो चलिए फिर, बढ़िया है। गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ ग्राम खोड़ा मनसिंहापुर की चंपारण बिहार से संजय कुमार शाह।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप लक्ष्मी, आप कैसी हैं? आपकी पूरी रेडियो रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
1: जी सब कुछ ठीक है।
0: घर के मौसम बताइए, मौसम के क्या हाल है?
1: मौसम तो अभी सुबह में थोड़ा सा बारिश हुआ है तो अभी ठीक है।
0: अच्छा,
1: आपके तरफ?
0: इधर भी वैसा ही है, इधर ठंडा है, मौसम ठीक है। बारिश हुआ है अभी एक घंटा पहले, अभी छूटा है बारिश।
1: चलिए बढ़िया है।
0: 9 से 10 बजे के बीच बारिश हुआ है, खूब झमाझम।
1: जी जी, इधर भी उसी टाइम हुआ।
0: जी जी, चलिए तब हम हमारे आपके पास और नेपाली तरफ हुई जो बारिश के पानी बौछार हो गया, खेत के लिए बहुत बढ़िया हो गया, लाभदायक हो गया।
1: जी जी,
0: और रोपनी अब हो सकता है, सब लोग करेगा। आपके तरफ रोपाई हुआ है कि नहीं अभी?
1: अभी तो मतलब बीज गिरा है तो अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा और 2-4 दिन लगेगा उसके बाद शुरू हो जाएगा।
0: ये तो हो गया है हम लोग के गांव में, लेकिन फिर भी कुछ लोग के बाकी है अभी, कुछ लोग के छोटा छोटा बिया है, इसीलिए
1: शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा बाकी है।
0: तुझे तो इधर भी हो गया। चलिए ठीक है, बोलिए
1: कौन सा गाना?
0: हाँ, आज फरमाइश, आज फरमाइश सुना दीजिए। लता मंगेशकर की आवाज है, मेघारी मेघा मेघारी मेघा, इसे करके गाना है, वही सुना दीजिए, क्योंकि आज बारिश हुआ है तो पानी क्यों उतरता है, मन क्यों उतरता है, तूने किसको याद किया, इसी करके गाना है।
1: गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे तो पहले आपको, रेडियो रिमझिम संपन्न परिवार को, और दोस्त में हो गए मामा साबे जी, उत्तम कुमार जी, राम जब सबको स्वादी बैकोर धाम से नरेश सोहनी, नसीदीन खान, दीपक दास, उदय भान ठाकरे, छिंदवाड़े मतल दे, राजेंद्र जब भारती, संतलाल गौतम, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्तों, विशेष करके मोहम्मद सलाह अंसारी है मझौलिया को, उनको सुनाते हुए संतलाल गौतम, राजेंद्र जब भारती को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रिमझिम सुनते रहिए।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना।

0: है।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
7: Hello. जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो।
10: हेलो मैम, नमस्कार।
9: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: कैसन बानी?
9: हम तो ठीक बानी, रवा बताई रवा कैसन बानी?
10: बस ठीक है बानी, आज छुट्टी रहेला ना। आज सोमवार का छुट्टी रहेला।
9: सब और सबका होता है।
10: बस क्या हुई, अभी नहा धोआ के रवरे एक खाती हवा खबर नहीं है कि तुम कॉल करे के बाद लेट हो जाए।
9: चलिए बढ़िया, नाश्ता
10: अभी नहा धोआ के कॉल कर।
9: नाश्ता तो कैले ना हो
10: ना अभी कहा।
9: बता दी कौन सा गाना सुने।
10: गाना तो आज खुशबू सिंह की आवाज में सुने के बाद।
9: कौन सा गाना?
10: राजा कहियो मावर खा के मर जाए।
9: अच्छा, और ये गाना क्यों के सुना हूँ के बाद?
10: बस रोबड़ा के सोनी मैम, जितना लोग सुनी सुन ली। सोनी मैम अभी आई कि नहीं?
9: आई है।
10: और सब बढ़िया, पूरा परिवार?
9: सब बढ़िया।
10: चलिए सब ठीक है, सुनाइए
9: गाना। प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
10: सुनाइए, ठीक है, ओके।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 FM में।
1: गुड आफ्टरनून
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: पहचान रहे हैं क्या?
0: जी
1: कैसे पहचान गए आप?
0: आपकी आवाज़ सुने तो पहचान गए।
1: तो आवाज़ तो सुना तो मेरा क्या नाम है?
0: क्या नाम है? गणेश नाम है।
1: अच्छा चलिए ठीक है। और सब बताइए?
0: और सब बढ़िया है।
1: तो बारिश हुआ है आज?
0: इधर तो बारिश हुआ है, आपके तरफ हुआ या नहीं?
1: मेरे तरफ हुआ है, बाकी बहुत कम बारिश हुआ है।
0: अच्छा हाँ, इधर भी हल्का हल्का हुआ है, मतलब एक घंटा हुआ, थोड़ा थोड़ा मतलब धीमे धीमे हो रहा था।
1: मतलब खेत में बारिश नहीं लगा है पानी।
0: चलिए, जितना नहीं होना था उतना भी हो गया, तो उतना भी राहत दिया है।
1: हाँ इतना भी सांस हो गया है, गर्मी थोड़ा कम है अब इतने ही से। आप सब बताइए, खाना ना खा कर आए हैं कि नहीं?
0: हाँ खाना तो खा ही के आते हैं, नहीं खाएंगे तो रहेंगे कैसे।
1: अच्छा कल सुनील दीदी के बर्थडे था, तो आप कुछ मांगे नहीं थी?
0: बर्थडे मना नहीं थे, यहाँ मना तो था।
1: वहाँ पे मना है, अपने घर पे नहीं मनाई है?
0: घर पे भी मना था, यहाँ भी मना।
1: अच्छा आपको क्या खिलाई थी?
0: केक आया था, केक काटे थे लोग।
1: खाली केक ही खिलाई थी और कुछ नहीं खिलाई थी?
0: नहीं, मिठाई कुछ दिन पहले ही खिलाई थी हम लोग को, काजू कतली था।
1: अभी आई है क्या सुनील दीदी?
0: हाँ आई है।
1: फिर चलेगा?
0: चलिए
1: ठीक।
0: गाना सुनिएगा, गाना बता दीजिए।
1: गाना सुनना है हम के बरस यही बजा दीजिए।
0: अच्छा
1: मेरे महबूब के घर जाना है यही।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: डेडिकेट रहेगा आपको, सोनी मैम को, देविया मैम को। पहचान रहे हैं?
0: नहीं हम आए तो वो नहीं थे, बस सोनी जी को मिला।
1: तो सब लोग का डेडिकेट रहेगा, मेरे बहन है करिश्मा, उसका भी डेडिकेट रहेगा। फोन धराए हैं? हाँ मैं बोल रही की देवी जी में बात करेंगे। बताइए ना, ये कोई बात हुआ?
0: नहीं
1: ऐसा ही तो फोन नहीं लगता है आज, मेरा व्यवस्था नहीं कुछ बताया, पहले ही कॉल लग गया।
0: अच्छा तुरंत का कॉल कटा हुआ था?
1: अच्छा मतलब आज बीजी जी बताया था, सबसे लग गया था।
0: नहीं तो टाइम भी तो मतलब 12 बजने वाला, इधर थोड़ा कॉल स्लो हो जाता, उधर एकदम लगातार आता है,
1: इसलिए अब उधर नहीं लगाएंगे, इसी समय लगाएंगे ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, पहचान रहे तो कोई बात नहीं है। और सारा कस्टमर लोग है देख रहे हैं कि फिर लगा रहे हैं, लग देखो तो ठीक है। मेरे बहन बोल रही है कि मैं बात करेंगे।
0: अच्छा जी चलिए ठीक है। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
1: ठीक है।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
14: नमस्ते दीदी।
13: नमस्ते, क्या हाल चाल?
14: क्या हाल चाल बा?
13: हमारा बढ़िया, आप बताइए।
14: हमारे ठीक बाटे, यार सब ठीक बा न?
13: हमारा ठीक बा है। खाना हो गए का?
14: हाँ, रह रहे की ना?
13: हम तो खाना खा के आए नहीं अब घर से, अब एज लेके आए नहीं सन, तो एक दो बजे के आस पास खा नहीं सन।
14: ठीक है नहीं, हम कहाँ से बोलते नहीं?
13: करिश्मा बोल रहे हैं।
14: अच्छा, चिन्ह गए बनी?
13: हाँ, पहचाना तो नहीं।
14: चलिए पहचाने की चाहे। चल गाना सुना बता हमारे।
13: बता दी कौन सा गाना?
14: मेरी कमा से ये कौन सुना दी?
13: अपना पसंद से तब लो।
14: अच्छा, पसंद से सुने?
13: अच्छा, भोजपुरी में तो उतना हम सुन ले नहीं की तो हमारा बुझेबे ना कर ला रोल
14: बताएंगे। कौन में बजा दी? चाहे भाई कौन बजा दी?
13: अच्छा,
14: भैया फोन करे रहे हम का।
13: ठीक बा, डेडिकेट भी बा।
14: हाँ दीदी के सबसे पहले दरवा के रहिए, अगरबाद हमरा जितना सुनता ही लग
7: रहा है जान पहचान हो
14: गई। दीदी मैम से भय रहा सब
13: पूछे नहीं कहे नहीं के बाजत गाना
7: सुना तो पूछे ना खूब बढ़िया से जानता नहीं।
13: और सब घर में सब क्यों ठीक बानो?
14: हाँ सब क्यों ठीक में लगवा घर में।
13: हमने ठीक बानी सब
7: अपना साथी लोग लगे बैठल रही।
13: अच्छा,
14: बारिश होता है?
13: बारिश तो भय रहा 9 से 10 के बीच में।
14: हाँ ये भय रहा खुलल बटे तो बैठल बनी सुन दुआ।
13: अच्छा चलो कहीं तो बैठ के थोड़ा बहुत मस्ती कर लेवे के चाहिए। सब जान पहचान भी होकर जरूरी बाबे केहू केहू से बात करे की इच्छा होला। गाना प्ले करता नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं डॉक्टर अमोद मरवाहा, ग्राम जयचित्रा, जिला कुशवाहा से बोल रहा हूँ
1: जी। क्या हाल चाल है आपका?
0: क्या है मैम?
1: मेरा भी अच्छा है।
0: और मौसम है आप उधर का?
1: मेरे यहाँ का मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
0: हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, अभी सुबह में बारिश हुई है।
1: अच्छा, इधर भी हुआ है हल्का हल्का बारिश सुबह में 9 बजे से।
0: जी जी, हमारे यहाँ उस समय ही बारिश हो रही थी, 9 बजे करीब। इस समय थोड़ा सा बारिश बंद है, मौसम सुहाना बना हुआ है।
1: जी जी, बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
0: गाना सुनवा ये तुम्हें देखे मेरी आंखें अमेरिका।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: बस आपको और पूरे रिंजिम के जितने भी श्रोता है सभी को, रिंजिम और पूरे परिवार सभी को सुना दीजिए।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894 18744।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हाँ हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: हेलो,
13: हाँ जी बोलिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
12: हाँ ठीक है मैम, अपना सुनाइए।
13: मेरा भी ठीक है।
12: गाना सुना दो।
13: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
12: नदिया के पार का कोई सॉन्ग बजा दीजिए।
13: नदिया के पार का कौन सा सॉन्ग?
12: बबुआ हो बबुआ।
13: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है? बता दीजिए किसको।
12: हमारे यहाँ काम करते हैं हमारे वीरेंद्र जी है, राजू जी है, मनोज जी है, विजय जी है और भी सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी भाई बंधु।
13: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: हम थावर से रामाजी प्रसाद, राजन मार्केट से।
1: जी जी,
0: आज लोग बरखा भैया की ना?
1: हाँ हाँ, बारिश से भैया है, 9 बजे
0: हाँ भैया बारिश नगर पानी गिरल है आज, फिर तो औस हो गए, बारिश गिरा बाद फिर बुझाते अंदर से औस बा।
1: अभी तो पूरा तरह से धरती गीला नहीं है ना भाई, अभी तो उमस सूखबे करी।
0: हाँ, गाना सुना दी।
1: बता दी कौन सा गाना सुने।
0: वह पूर्व भैया कर झूमे जैसे मनवा न थे मोर।
1: अच्छा, और गाना क्यों के सुना हो के बा?
0: जितना लोग सुनते सब कुछ सुनी, हम सुने रवा सुने।
1: चले ठीक, और सब ठीक बा ना?
0: हाँ सब ठीक बा।
1: तो फिर गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे
0: सुनते 5 बजे तो सुनते रही।
1: हाँ हाँ,
0: नमस्ते।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: Now pick your phone up.
16: Hello?
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello?
15: Now pick your phone up.
16: Hello?
17: Jab phone gindi bajti hai to kehte hai hello.
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
20: जी मैडम नमस्कार।
19: नमस्कार,
20: कमलेश बोल रहे हैं हर कुमार।
19: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
20: ठीक है मैडम, आप लोग का आशीर्वाद अच्छा है मैडम, लेकिन आज काम उम नहीं चल रहा है, ठंडा मौसम है, बारिश हुआ है थोड़ा सा।
19: मौसम तो ठंडा हुआ है।
20: हाँ बहुत ठंडा हुआ है। अच्छा है,
19: तो नाश्ता हो गया है आपका?
20: जी मैडम हो गया है, बैठे हुए हैं, गाना सुनना चाहते हैं।
19: अच्छा बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
20: वो गाना नहीं है, बिछुआ भूल ना जाना, वही गाना सुनना चाहते
19: को डेडिकेट भी है।
20: हमारे साथ में पवन जी है, धनंजय पासी है, उनको सुनाना चाहता हूँ, जितना लोग सुन रहे हैं सब किसी के साथ और आपको भी।
19: अच्छा जी, लगता है कहीं किसी पेड़ के पास बैठे हैं, चिड़ियों की बहुत चहचहाट आ रही है,
20: ठंडा मौसम है, अभी जामुन के पास में बैठे हैं।
19: तो गाना प्ले करते हैं।
20: जी मैडम
19: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
20: नमस्कार।
19: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत आपका रेडियो रिमझिम 90.4
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, हेलो,
0: क्या हो रहा है मैम?
1: जी कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं?
0: कुछ नहीं मैम, बस बैठे हैं।
1: अच्छा, तो नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ मेरा हो गया, आपका हो गया? मैम गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
0: मैम विदेशी में गाना सुनना है।
1: कौन सा गाना?
0: काहे करे लो फोन यारो,
1: एक बार और बोल दीजिए, आवाज कट रहा है आपका।
0: विदेशी में का गाना सुनना है, काहे करे लो फोन यारो।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: आपको और सारे, मतलब सारे सुनने वाले सुनता हूँ।
1: अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना।
0: गुड़िया कुमारी।
1: चलिए फिर, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: टेस्ट। अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।

0: भाई मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला।
1: कैसे
0: हाँ अभी तो मौसम सुबह में पानी इधर हुआ है, मौसम अभी बहुत अच्छा है, इधर सुहावना मौसम है।
1: चलिए अच्छा है।
0: उधर गोपालगंज में?
1: हाँ इधर भी हुआ है तो ठीक है मौसम अभी।
0: हाँ मौसम ठंडा है, बड़ी व्यस्त बता रहा है आपका मोबाइल।
1: अच्छा
0: पाकिस्तान, सुनिए ना, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना आसान है, आपके यहाँ फोन लगाना आसान नहीं है।
1: अच्छा
0: एक घंटा पेड़ते रहिए तो अब जाके पकड़ता है।
1: अभी तो कॉल कटा तो तुरंत आपका कॉल आया।
0: हाँ तो बड़ी देर से लगा रहे थे ना।
1: कॉल ज्यादा ही हो जा रहा है,
0: बहुत ज्यादा हो रहा है। आपका कस्टमर इतना ना बढ़ गया है, पूरा बहुत लोग जुड़ गए हैं आपके साथ है।
1: जी
0: आप लोगों का जो आवाज है आपका और तो बहुत सोनी का बहुत अच्छा आवाज है। आप भारती जी बोल रहे हैं ना?
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तो आप दोनों अभी बेमिसाल हैं।
1: आप सबकी कृपा है।
0: हाँ हाँ बहुत सुंदर बहुत मीठा आवाज आप लोग दोनों आदमी को, हमको समझ में ना आता है कि कौन बोल रहे हैं।
1: अच्छा
0: सेम एकदम एक आवाज में,
1: कभी कभी हो जाता है।
0: हाँ हाँ हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको गाना सुनाइएगा,
1: बता दीजिए।
0: बांसुरिया अब यही पुकारे।
1: अच्छा
0: अपना मेडिकल के सभी स्टाफ और खास करके आपको और कन्हैया प्रसाद जो फौजी से रिटायर किए हैं, वो आपका हरदम रेडियो सुनते रहते हैं, तो वा करके सुन के हमको बताते हैं दुकान पर।
1: अच्छा
0: कहते हैं कि आपका गाना, उधर हम व्यस्त हो गए थे कुछ दिन, कह रहे थे कि आपका परमेश्वर नहीं आ रहा है, अब हमें थोड़ा दूसरे काम में लगे हुए हैं, बिजी है इसलिए नहीं आता है। तो बराबर सुन करके वही बताते हैं, हमको तो फुर्सत कम मिलता है, कभी सुन पाते हैं कभी नहीं सुन पाते हैं।
1: कोई तो सुनता है ना।
0: हाँ इसलिए तो आपसे आप लोगों को अवधि हमको इतना अच्छा लगता है कि हमको इसलिए हम फोन लगाते हैं आप लोगों को।
1: चलिए
0: अब सोनी जी और अब फिर आप अभी आ रहे हैं आप।
1: सोनी जी अब अभी तो मतलब जाएंगे लाइव।
0: हाँ वो लाइफ में रहती हैं, उनका ड्यूटी चेंज हो गया है।
1: चलिए फिर रखते हैं।
0: हाँ ठीक है गाना सुनवाइएगा।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMP से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है मैम, बस आज तो पहला ही कॉल लगता है हमारा ही शामिल हो गया मैम।
1: जी जी,
0: आज तो बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ा मैम।
1: हाँ हाँ, क्योंकि अभी जस्ट जैसे शुरू किया आपका कॉल आया।
0: जी जी जी जी मैम,
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: बस कुछ नहीं, आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम। और तो काम तो अपना चल ही रहा है, मशीन चला रहे थे JCB, बस हम देखे अभी 11 बज गए, बस ट्राई किए, फोन भी लग गया मैम।
1: अच्छा जी, चलिए तब बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा जब दुनिया छोड़ के जाएंगे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: और गाना चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555-94-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
12: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सुनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे हर रोज की तरह। और आज आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और आप लोग पुराने गाने का फरमाइश करेंगे तो ही आपकी फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा, वसरते आप नए गाने का फरमाइश करते हैं तो आपकी फरमाइश को हम नहीं सुना पाएंगे, पेंडिंग में रहेगा आपका फरमाइश। और जो भी पुराने गाने का फरमाइश करेंगे उनकी फरमाइश पहले पूरी की जाएगी। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी अपना कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सोनू भाई, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। रुबीना नाज भलापुर से, और आज मैं भी प्रोग्राम में जुड़ गई हूँ और मेरी भी एक शौक की फरमाइश है। शौक का बोल है, नींद उड़ रही है, चैन खो रहा है, जान जा रही है, ये क्या हो रहा है। शौक सभी को डेडिकेट करती हूँ, प्लीज़ सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय नमस्ते, आई एम बीटू शर्मा फ्रॉम पिपराही। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर जी, मुझे गाना सुनना है, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। और आप कौन, अपना फुल मैसेज सेंड करें, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश हम ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि कैसे हैं सर सॉन्ग ओ शाइबा, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और इस मैसेज को करती हैं सरिया फ्रॉम अमो मोजम से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि किशोर कुमार का पल पल दिल के पास, लेकिन आप कौन, अपना तो परिचय दें। जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वो अपने परिचय के साथ अपना मैसेज सेंड करें, अपना नाम जरूर बताएं ताकि आपकी पहचान हो और पहचान के साथ साथ आपकी फरमाइश भी पूरी हो। ऐसा ना करें कि आप केवल गाने का नाम बताएं तो भी फरमाइश पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहचान के साथ ही गाने के फरमाइश पूरा करने का आदेश है। तो आप लोग पहचान और कहाँ से मैसेज करें ये ज़रूर बताएं। फिलहाल हम गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं रुबीना नाज की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने। हम सभी, नींद उड़ रहा है, चैन खो रहा है, ना जाने

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी, और शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। आगे मैसेज और मैसेज पे मैसेज करते जा रहे हैं लखन जी, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। थोड़ा सा सब्र करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सोनम भैया, मेरा शौक पूरी करने के लिए आपको धन्यवाद है। रेडियो रिमझिम सुनने के लिए रुबीना नाज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश लिखा गया है कि अस्सलामुअलैकुम सोनम भैया, क्या हाल है? मैं मुस्कान गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है दिल लेने वाले का जोर नहीं चलता, प्यार का सिक्का कहीं और नहीं चलता। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे कुछ मैसेज पहुंचा। हाय नमस्ते, एम बिट्टू शर्मा। तो बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंच चुकी है और आपकी भी फरमाइश है, तो एक एक करके आपकी आप सभी की फरमाइश हम पूरा करेंगे। आप जहां हैं वहीं स्थिर हैं, अगर आप मैसेज करते जाएंगे तो हमारे से दूर होते जाएंगे, और हो सके तो कार्यक्रम की समाप्ति भी हो जाए और आपकी मैसेज भी हमें ना मिल पाए। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, हम एक एक करके लाइन बाय लाइन गाने के फरमाइश पूरा करते जा रहे हैं। आप लोग सुनते रहें और इंजॉय करते रहें।

रेडियो एम सी एम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और आप सभी बने हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश किया गया है श्रेया फ्रॉम अमा मौजम से करती हैं ओ शाइबा ओ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और यहाँ पे सुनो जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुनो जी बन रहे हमारे साथ और गाने इंजॉय करते रहें, सुनते रहें रेडियो एम सी एम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: Excuse me, boss. You have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम छः 94.4 एफएम पे। सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का समय जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी कार्यक्रम को बढ़ाना है। आगे मैसेज और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है शौंग रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सिंगर किशोर कुमार नाम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और डेडिकेट करते हैं दिलीप राम जी की। तो दिलीप राम जी तो ऐसे गाने पसंद तो करते नहीं, चलिए डेडिकेट किए हों तो सुनेंगे ज़रूर और आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज करते हैं सुनो जी और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पुनः आप बन रहे हमारे साथ, कहते हैं कि मोहब्बत बहुत खूबसूरत है, आपको यकीन नहीं है तो किसी से मोहब्बत करके देख लेना, बहुत सुकून मिलता है। और जो नहीं किया है वो करना चाहता है, जो किया है वो दूर होना चाहता है, इसी का नाम मोहब्बत हुआ है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाँ भैया मुझको गाना सुनना है, मैं बुलेट चौधरी तीन फेड़िया से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। तो बिल्कुल एक एक करके फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचाओ बिट्टू शर्मा जी की तरफ से। तो बिल्कुल बिट्टू शर्मा जी थोड़ा सा सब्र कर ले, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और हो सके तो इस गाने के बाद ही। अभी हम लखन जी की गाने के फरमाइश प्ले करने जा रहे हैं और इनके साथ इनके गाने के साथ हम सभी इंजॉय करेंगे। और गाने का बोल दिए हुए हैं किशोर जी की आवाज़ में, पल पल दिल के पास।

कभी प्यारा सॉन्ग किशोर जी की आवाज़ में सुन रहे थे। अभी हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और बिट्टू शर्मा जी परेशान है, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आपकी गाने सुनते हैं। हम सभी यहाँ पे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है और तो बिल्कुल लेके करके सबकी गाने का फरमाइश पूरी कर रहे हैं और सब कोई अपने गानों को लेकर परेशान है, तो थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और फिलहाल हम बिट्टू शर्मा जी की फरमाइश पूरी करते हैं और गाने की फरमाइश करते हैं। ऊपर वाला अपने साथ, सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण

0: 4400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
2: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे मैसेज पहुँच रहा है, लिखा गया है कि धन्यवाद, क्या बढ़िया गाना था, बिल्कुल बढ़िया गाना था। और अगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुपर मस्त सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं सरिया फ्रॉम अमावा से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है भोजपुरी में बोलबम का, और गाने का बोल दिया गया है कि जोड़ी तोहरे से लागो हमार ये मंगली हा ये पगलू। इस गाने के फरमाइश करती हैं निशा, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपका पसंद के गाने। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सोनू भाई जी कैसे हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, कहते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ,

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30-92 या 9765-65750।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे सोनिया। आप सभी के बीच उपस्थित हो चुकी हूं आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:04 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो घड़ी में और अभी से 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। अगर आपको भी जुड़ना है कार्यक्रम से, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527888291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करिए हमें 72776696 पे। और बिना देरी किए आज की शो की शुरुआत करेंगे खूबसूरत से गाने के साथ। तब तक आप सभी मैसेज करिए, अपनी फरमाइश से भेजिए और जब तक आपकी फरमाइश से पहुंचती है तब तक एंजॉय करते हैं एक खूबसूरत से गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और 12:09 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे हमारे लिसनर हमसे जुड़ चुके हैं और मैसेज है लिख रहे हैं कि वाजी गाने में गाकर गाने की खूबसूरती बढ़ा दी। मैसेज करने वाले हैं सनी शर्मा जी लाइव फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ मनीष जाग जी जुड़ चुके हैं फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि तुम्हारे सिवा ना चाहत करेंगे, वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। अफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, लिख रहे हैं कि क्यामत से क्यामत का गाना सुनना है, बिल्कुल गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और केशव राज जी है बिहार बेगूसराय से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग, संजय यादव जी हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। राम कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देवराज कुमार है रेशम नगर भगैया जिला गोंडा झारखंड से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है, और नई मंसारी जी हैं जामतारा से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ शकील अहमद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मुंबई से जुड़े हुए। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है, नाम पता जरूर मेंशन करिए आप कौन है कहाँ से। और एक और मैसेज पहुँचेगा, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी जी हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। अनिल कुमार जुड़ चुके हैं दरभंगा से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगला फरमाइश भी काफ़ी खूबसूरत गाने की पहुँची हुई है, सनी जी है फ्रॉम सिवान से, तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। इतना मैं चाहूँ तुझे

और यहाँ सनी जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए और मेरा गाना केवल आपके लिए है। ओहो, मैं सुन रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको गाना फरमाइश करने के लिए, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश।

90.4 रेडियो सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में एंजॉय किया सनी जी की फरमाइश पे। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शुरुआत काफ़ी अच्छे गाने के साथ हुई है और आगे अगली गाने की फरमाइश जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। और उससे पहले यहाँ नूर आलम जी जुड़ चुके हैं जीरा देवी सिवान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी थोड़ा एनर्जी आ गया मेरा, कल फरमाइश रहेगा। ओके बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल जब मर्जी हो आप फरमाइश भेज सकते हैं अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका शो में जुड़े और काफ़ी दिनों बाद आए। बताइए क्या हाल चाल है और कहाँ थे इतने दिनों से। राकेश भारती जी हैं बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। समीर आलम जंगलिया से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इश्क में मेरे रब्बा जाने क्या कर जाता, गाने की फरमाइश के साथ है। अयोध्या से अजय जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और गाने की फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे यहाँ मैसेज, नाम मेंशन नहीं है, नाम मैसेज करिए। मिस्टर कुमार जी जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। उमा शंकर मिश्रा जी है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है साखे खास से, आफ्ताब आलम जी जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना कयामत कयामत। इनकी तरफ से भी काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, चलिए इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: गोला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी चोट की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम से आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं। और मेहताब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ एक गाने की फरमाइश के साथ और गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं कि राधे राधे सभी को बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुनील जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से, मैं भी सोच से जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मुन्ना जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए, मैं पहली बहुत दिन बाद रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। खुशनेहरा मलिक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने की फरमाइश है, थोड़ा वेट करिए, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ बारी है कॉल की, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रिमझिम में। जी का हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा।
0: कहाँ रहता नहीं इतना दिन से?
1: भोज खाता नहीं यार, और टीम के बॉक्स खुलवा के आई रोटी भाई बाप पंचायत आदमी के नाम नरेश सुरती वाला बाबा थाले से, हरेंद्र प्रसाद किराना वाला बाबा थाले से,
0: अच्छा अच्छा
1: पप्पू प्रसाद समोसा वाला बाबा थाले से, अदालत यादव वाला दही वाला हर भाषा से, आर जे सोनू जी बारे गोपालगंज से, प्रीतम प्रसाद बारा छावे से, गीता देवी बारी छावे से, चंद्रादी बारी छावे से, सुशीला देवी बारी छावे से, इतना लोग टिकट बुक भेल बा।
0: अच्छा
1: हाँ, तो लोग पहुँचावे बा बस खुल दिया सुपर फास्ट।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, तो उनमें ड्राइवर बारे बेटा बाप बेटा खला बाप ड्राइवर बेटा खलासी यही पर सवार वालों को पहुँचा दी जल्दी से झांसी।
0: चलिए तो प्ले कर दे लवानी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करनी।

0: इधर देख रहे हैं।
1: तो हम का करी, राम प्यारी के चालू करी।
0: हाँ चालू कर ना, कम से कम इंजनवा तो गरम हो।
1: इल्ला चालू हो गए।
0: यात्री गण कृपया ध्यान दे, अपना सामान का सुरक्षा खुद करेंगे।

0: टिकट
1: है? खाली टिकट में काटिएगा कि बैठेबो करिएगा?
0: अरे बैठिए ना माता जी, आपको कुछ बोल रहे हैं?
1: हम माता जी दिख रहे हैं आपको?
0: अरे तो भाभी जी समझिए ना।
2: अरे बाबा हमारो टिकट दो ना।
0: अरे दे रहे हैं ना, काहे हबला रहा है?
2: 2 रुपया कम है, रख लीजिए ना।
0: हाँ तो डीजलवा तोरा बाबूजी के पेट्रोल पंप से आएगा का?
1: आए बाबा, काहे इतना ऐठो हूँ?
0: हाँ तो अरे तो लाओ ना भाई।
3: ए पप्पा ध्यान से भाड़ा वसूलिया, दिन भर के रोजी रोटी है।
0: बाग बुड़बक तू गाड़िया चलाओ ना, हम इधर सुन रहे ने।
2: देखिए सीट बहुत छोटा रखे हैं आप, कितना दिक्कत हो रहा है बैठने में?
0: अरे तो थोड़ा एडजस्ट करो।
1: कितना एडजस्ट करें?

0: कहीं और मत पहुंचा दीजिएगा।
1: अरे जहाँ का भाड़ा दिया है वहीं तक न पहुँचाएंगे, मारे साले लपड़।
2: हे बाबा इतना काहे फड़कत हुआ।
1: अरे तो भाड़ा कौच रहे हैं, साला बीपी बढ़ाता है।
3: ठीक से बैठिए जी, धक्के

0: उतरो ने यार ऊपर से यही घर बनाएगा चाचू।
1: आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी फनी गाना सुन रहे थे। रामाजी प्रसाद की तरफ से गाने की फरमाइश थी और यहाँ काफी सारे लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रीति रदास जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि मैं भी कुछ देर पहले ही शो से जुड़ी हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि राम राम, गुड आफ्टरनून सनी मैडम जी, कम छो तो मजमा। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, दुर्गेश कुमार जी हैं आजमगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी दी मेरा शादी अभी हुआ नहीं और साले साहब साथ रहने लगे हैं, जिनको रहना चाहिए वो आई नहीं और जिनको नहीं रहना चाहिए वो साथ में है। कोई नहीं, साले साहब जब साथ में आ गए हैं तो जिनको रहना चाहिए वो भी आ जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। और राकेश भारती जी है बक्सर से, इरशाद मास्टर जी जुड़ चुके हैं दनाव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि हम भी अभी अभी जुड़ चुके हैं। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, साधु राय जी आ चुके हैं सब छपरा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अनिल जी जुड़ चुके हैं छोटपुर से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, मैं भी जुड़ गया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम कैसी हैं आप, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, एक और मैसेज है, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, और काफ़ी दिन बाद हुस्नैरा मलिक जी जुड़ी हुई हैं, बताइए आप कैसी हैं। फिलहाल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
2: हेलो, हाय, आदाब, सलाम, गुड आफ्टरनून सभी फ्रेंड को हुस्नैरा मलिक की तरफ से। और क्या हाल है जी, सब मस्त है ना, और मैं भी बढ़िया हूँ। एक्चुअली हमें एक सॉन्ग सुनना है, प्ले कर दीजिएगा, बहुत दिन बाद अपनी रिकॉर्ड को सेंड कर रही हूँ, तो एक सॉन्ग बनता है। और मैं बारिश का मौसम है, एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, आएगा मजा अब बरसात का, और इस सॉन्ग को सुनवाना चाहूँगी आप सभी दोस्तों को, और खुद मैं सुनूंगी, और मेरी बेटी है और सभी के साथ। तो ये सॉन्ग को प्ले कर दीजिएगा, ठीक है, फिर कभी रिकॉर्डिंग भेजेंगे टाइम मिलेगा तो, ठीक है, बाय बाय। मैं हुस्नैरा मलिक जादूपुर से, बाय, प्ले कर दीजिएगा मैं।
1: बिल्कुल प्ले हो चुका है अपने गाने को, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि आज मेरा गाना चलेगा, बिल्कुल कोशिश तो यही है कि आज सबके गाने प्ले कर दें। और फिलहाल जैसे जैसे जिनकी बारी आएगी हम गाने प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए और थोड़ा सब्र रखिए।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे उष्मिता मलिक से और काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश और इनके तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए पहले उससे सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
1: थैंक यू सो मच सॉन्ग प्ले करने के लिए, और सच में बहुत दिन बाद अपनी रिकॉर्ड को सेंड कर रही हूँ। और ये बात है कि जब भी मैं अपनी आवाज़ को सेंड करती हूँ और आप प्ले कर देती हैं, मैं उसके लिए शुक्रिया। और मौसम वाला सॉन्ग तो सुन ली हूँ, लेकिन इस बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मौसम बन रहा है बिगड़ रहा है। हो सके तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा, लेकिन कल के बारिश तो हुआ है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, थैंक यू एक बार और आपका शुक्रिया सॉन्ग प्ले करने के लिए। बाय बाय, फिर उष्णियारा मलिक मिलेगी कभी ना कभी। थैंक यू।
0: बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़ी, और आगे यहाँ काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। और रेडियो फैन पंकज जी है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सोनी मैडम जी, राजेश गौतम जी मुंबई से, बेहतरीन सॉन्ग, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े। और आगे यहाँ लिख रहे हैं कि आएगा मज़ा, बरसात का सुपर सॉन्ग, और बारिश तो हमारे यहाँ भी हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे यहाँ तो काफ़ी धूप निकला हुआ है, हमारे यहाँ परसों बारिश हुआ था, उसके बाद से भी हुआ ही नहीं। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि वाह सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अंदाज से, पहले के गीत कमाल के होते थे। जी हाँ, और अभी के गीत भी कमाल के हैं, भले समझ में ना आए कुछ गीत, लेकिन अभी भी जो गीत है वो अच्छे ही हैं। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आज मेरा गाना प्ले हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, आपका भी गाना। जहूर आलम अंसारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं कि हम सब मिलकर साथ में सुन रहे हैं, संजय है, डेल चंद है, और शाकिर जी भाई जी हैं साथ में, सादिक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और न्यू फैशन टेलर नागपुर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और मैसेज यहाँ लिख रहे हैं कि एकदम सही, एकदम सही, अब आ गया है बरसात का मौसम और मस्ती भरी में ये गाना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शो में जुड़े। और वीरेंद्र गुप्ता जी है रक्सौल से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए और फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि खेसारी लाल का गाना सुना दीजिए। शाकिब अहमद जी है, तो खेसारी लाल का मेहदी फिल्म का गाना सुनवा दे, कौन सा गाना सुनवा दे ये कंफर्म करते तो हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर देंगे। और लिख रहे हैं कि मैं 2-3 बार भेजा हूँ और आप गाना नहीं सुना है। ऐसा बात नहीं है, मैं गाना सभी का प्ले करते हैं, और अभी आपकी थोड़ी देर पहले जो गाने की फरमाइश थी तलाश फिल्म से थी और तुरंत अभी गाना चेंज हो गया, तो फिर समझ में नहीं आता है कि कौन सा गाना प्ले करें। फिलहाल मेहंदी फिल्म से कौन सा गाना है कन्फर्म करिए, या फिर बाद में बोलिएगा कि आप ये गाना नहीं था दूसरा गाना था, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। और काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आते हैं गाने की फरमाइश तुरंत चेंज करने के बाद। तो फिलहाल यहाँ हम अगला फरमाइश प्ले करेंगे, हमारे पास इंस्टाग्राम पे गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और फरमाइश करने वाले हैं मेहताब सिद्दीकी जी, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना।

0: समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और यहाँ 12:52 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ नील जी है, लिख रहे हैं कि वैसे तो ईमान घर से बाहर निकलने पर ही डोल जा रहा है, धूप जो इतना तेज है। जी हाँ, बिल्कुल, बात तो आपकी 100% सच है एकदम। और लिख रहे हैं कि बट नाइस सॉन्ग। रागी हाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग बच जाएगा सुनिधि, और बच जाता तो अच्छा होता। बिल्कुल बच जाएगा, पूरी कोशिश है। राकेश भारती जी है बक्सर से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना, और माय नेम इज रंजीत कुमार। बहुत बहुत स्वागत रंजीत जी आपका भी, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं। राजा हिंदुस्तानी से गाने का बोल है, परदेसी जाना नहीं। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और आपके गाने की बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश प्ले कर रहे हैं। निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं क्या हाल है, और बारिश हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है लेकिन कहीं कहीं हो ही रहा है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आप समाचार के पहले मेरा गाना सुनवा दीजिएगा प्लीज़, कृपया करके। बिल्कुल आपकी बारी आ जाएगी समाचार से पहले ही। और यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है। और शकीर आलम अंसारी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश भी है, जो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रही है हमारे साथ में। फिलहाल अगली फरमाइश जो हम प्ले करने जा रहे हैं, हमारे पास पहुँचा हुआ है, और गाने की फरमाइश है ममता बाड़ू, अनमोल ऐसन खजाना। तो चलिए गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दें। और फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका शाकिब अहमद जी। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे, बाड़ू अनमोल ऐसन खजाना, खेसारे लाल की आवाज में। और नेक्स्ट फरमाइश जो हम प्ले करने जाएंगे वो हमारे पास पहुंचा हुआ है, मिस्टर कुमार जी हैं मोतिहारी जिला से। तो एंजॉय करिएगा अपने गाने को, नेक्स्ट फरमाइश आपकी है।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे साकिब अहमद जी की फरमाइश थी और लिख रहे हैं मैडम जी थैंक यू। शकील अहमद यूपी से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग और अजय जी है अयोध्या से। और यहाँ इंद्रदेव जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। एक और मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका रंजीत कुमार जी जो कि जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं बताया ही नहीं यार। मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहाँ लिख रहे हैं कि हमारा मैसेज जो कहीं गुम हो गया है क्या मैडम जी। बिल्कुल गुम नहीं हुआ है। और लिख रहे हैं कि दिल से दिल की दूरी नहीं होती, दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश हमारे बीच कोई मजबूरी नहीं होती। आपसे मिलने की तमन्ना है हमें लेकिन कहते हैं ना तमन्ना, हर तमन्ना पूरी नहीं होती। हर हर महादेव सोनी जी हमारे तरफ से सभी को बोल दीजिएगा। हर हर महादेव बिल्कुल बोल दिए हैं। और लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं, हमें भी गाना सुनना है, गाना का लिंक भेज रहा हूँ। और बसंती देवी जी है लामी चौर चबड़िया टोला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश है तो थोड़ा वेट करिए, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है और यहाँ लिख रहे हैं कि हेलो राधे राधे मेरा अजी भी लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुके हैं पाजी यूपी चौहान से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है और लिखते हैं कि तुम्हारी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया, तुम्हारी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया, इसलिए हमने भी अब तुम्हें पुकारना छोड़ दिया। मुझे लगा था मेरे बिना तुम अधूरे हो पर तेरी मुस्कान में मेरा ये वहम भी तोड़ दिया। क्या बात है। और मैसेज के साथ है केशव राज जी बेगूसराय से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबह जुड़े। और आगे यहाँ एक और लाइन पहुँचा हुआ है और धनेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि मेरी यादों में तुम हो, मेरी मेरी यादों में तुम हो या मुझमें ही तुम हो, मेरे ख्यालों में तुम हो या मेरे ख्यालों में ख्याल ही तुम हो। दिल मेरा धड़क के पूछे बार बार एक ही बात, मेरी जान मैं मेरी जान में तुम हो या मेरी जान ही तुम हो। क्या बात है धनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी एक बार फिर से। और बने रही हमारे साथ में और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ निजामुद्दीन जी हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे मैसेज है लिख रहे हैं कि पीता शराब है और कहता नशा खराब है, पीता शराब है और कहता नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता कि जवाना खराब है। सुजीत कुमार जुड़ चुके हैं बिशुनपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका सुजीत जी। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अभी लंच चल रहा है मस्त सॉन्ग और नाम मेंशन नहीं है, समर दिखा रहा है प्रोफाइल पे नाम, अपना नाम मेंशन जरूर करिए और पता कहाँ से है आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक और यहाँ मैसेज और भी सारे हैं प्ले करेंगे लेकिन फिलहाल अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है मोतिहारी जिला से और मिश्र कुमार जी हैं, गाना सुनना है पवन सिंह की आवाज़ में राजा जी के दिलवा। तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: कर रो।
1: हम मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
13: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
13: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस में, योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ देखते देखते एक बज के 6 मिनट हो चुके, 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला आप सभी के साथ। और फरमाइशों का सिलसिला जो है देख रहे हैं कि काफ़ी सारे हैं और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि फरमाइश कर सकते हैं मैम बिल्कुल, अगर 1 सप्ताह हो चुका है तो कर दीजिए, जैसे ही आपकी बारी आती है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके आने की फरमाइश जो है प्ले कर सके। और आगे यहाँ रितेश कुमार जुड़ चुके हैं फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बने रहिए हमारे साथ में। लिख रहे हैं कि कल मेरा फीडबैक कहाँ गुम हो गया था सोनी जी, और रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम पर कब तक। कब तक ओपनिंग हुआ था और गोपालगंज में क्या आपका पता है और क्या आप कहना चाहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया, अपना मैसेज क्लियर करिए फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या ओपन था या फिर नहीं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रितेश कुमार जी हैं फ्रॉम सिवान से, फिलहाल यहाँ आगे बढ़ेंगे। एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल तोड़ने वाले का कुछ नहीं जाता, दिल तोड़ने वाले का कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसका दिल टूटता है उसका सब कुछ चला जाता है। हेलो सोनी जी नमस्कार, अनामिका चौधरी जुड़ चुके हैं प्रेम नगर बसरा लालगंज मिर्जापुर से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। बिल्कुल आपकी फरमाइश है और आपका 1 सप्ताह हो चुका है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, थोड़ा इंतजार करिए और आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना सुनवा दीजिए मैम, बिल्कुल पूरी कोशिश है गाना सुनवा दे आपकी। अंकुर जी जुड़े हुए अयोध्या से, लिख रहे हैं कि पूरा दिन हम रेडियो रिमझिम सुनते रहते हैं, मुझे गाना सुनना है, सनम मूवी का गाना है इश्क में मेरे रब्बा जाने क्या कर जाता है। बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है और लिख रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, और मैसेज करने वाले हैं रंजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि गाने की फरमाइश है तो इंतजार करिए, मैसेज डिलीट नहीं किया करिए। और दरभंगा से जुड़े हुए हैं अनिल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और लिख रहे हैं कि सॉन्ग है मनोज तिवारी जी की आवाज़ में, चलल करा ए बबुनी ओढ़नी संभाल के। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे, लेकिन आपकी फरमाइश जो है मंगलवार को पूरा किए थे तभी 1 सप्ताह नहीं हुआ है, जैसे ही 1 सप्ताह होगा हम आपकी गाने की फरमाइश जो है जरूर प्ले करेंगे। आगे यहाँ समर जींस जामो से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है प्रेम मदेशिया पड़ोना कुछ नगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नमस्कार जी कैसी है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आप बताइए आप कैसे हैं। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, और गाने की फरमाइश है और गाना सुनना चाहते हैं इसमें मेरे रब्बा जाने क्या कर जाता है, और मैसेज के साथ है अजय जी अयोध्या से। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश है जो प्ले कर रहे हैं, और यहाँ अंकुर जी अयोध्या से थे, अब दोनों की फरमाइश प्ले हो रही है, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

और यहाँ अंकुर जी के तरफ से भी मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरा गाना बजाने के लिए। अजय जी है ये भी लिख रहे हैं कि धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका अयोध्या से लुकमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, इंजॉय करिए गाने को। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जबरदस्त सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं केशव राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज पहुंचे हुए, लिख रहे हैं कि आज आपका पसंद का गाना सुनना चाहते हैं मैम। बिल्कुल मेरे पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो सुना दीजिए। बिल्कुल, तो इंतजार करिए थोड़ा सा, और इस गाने के बाद हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में, काफी बेहतरीन गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची थी अयोध्या से अंकुर कुमार जी की और अजय कुमार जी की, और दोनों जी के तरफ इन दोनों लोग के तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाली है बसंती देवी जी लामी चौर चौबड़िया टोला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और फरमाइश है तो प्ले करने की कोशिश है। और अनिल जी है लिख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक पीते रहिए और दोनों लोग रेडियो रिमझिम सुनते रहिए दिल से। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम मुझे भी गाना सुनना है, इजाज़त हो तो बताएं। बिल्कुल सुनना है तो भेज दीजिए। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई अच्छा इस भी कदर ना लगे कि तुझे देखा बस इस नज़र से, कि तुझे देखते ही बस नज़र ही जिस नज़र में मुझे नज़र ना लगे, और तेरी मुस्कान पे ठहर जाए दीवाना मेरी, तेरी चेहरे पर कभी कोई असर ना लगे। हेलो मैम, राम राम, और कैसी हैं? मेरे तरफ से सभी श्रोताओं को, सभी दोस्तों को राम राम बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिया। और अनामिका जी है काकरकुंड से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी है अनामिका जी, जरूर बताइए। और बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम के। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हम यहाँ प्ले करने जा रहे हैं, मेरे पास पहुंचा हुआ है फरमाइश, नौशाद अली जी है मोतिहारी जिला से, और सुनना है गाना तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए। काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, सैड सॉन्ग ही है लेकिन काफ़ी मस्त गाना, एंजॉय करिए आप सभी नौशाद अली जी की फरमाइश पे ये खूबसूरत।

और यहाँ हमारे पास काफी सारे फीडबैक पहुंच चुके हैं, लिख रहे हैं सभी लोग की सुपर लाजवाब सॉन्ग। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना सुनाने के लिए, नौशाद जी है मोतिहारी जिला से। और आगे यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैडम जी। और अजय कुमार जी है अयोध्या से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और बसंती देवी जी हैं यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, लाजवाब सॉन्ग। और अली अख्तर जी जुड़ चुके हैं कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। टाइगर यादव जी हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपकी गाने की फरमाइश है, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश, बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आगे यहाँ मैसेज है एक और, लिख रहे हैं कि होठों पे हंसी फूल खिलाए रखना, होठों पे हंसी फूल खिलाए रखना, यादों को हमारे दिल में बसाए रखना, चाहे आपसे मुलाकात हो या ना हो पर हमसे सदा दोस्ती बनाए रखना। और क्या बात है, इस मैसेज के साथ है पाजी यूपी चौहान से, बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी खूबसूरत लाइन आपकी तरफ से। इंजॉय करिए रेडियो रिमसिप को। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं कि मैम और मैं कहना चाहूँगी कि ये योर वॉइस योर चॉइस का कार्यक्रम है, यहाँ एंटरटेन होता है, आपके गाने की फरमाइश सुनाई जाती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अपने आप को ज़्यादा तेज तरार बन रहे हैं तो आप कहीं जाइए, मैं यहाँ टीचर बन के नहीं बैठी हूँ कि जो आप लोग मेरे से सवाल करते हैं। और इतना ही शौक है अपने ज्ञान को आजमाने के लिए, तो हमारे यहाँ संडे को रिकॉर्डिंग होती है हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट की, आप उसमें अपने ज्ञान को आजमा सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं, फिर पता चल जाएगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। और वहाँ भी सवाल आप नहीं, हम ही करने वाले हैं और हमारे सवाल का जवाब आपको देना होगा। फिलहाल ये योर वॉइस योर चॉइस का कार्यक्रम है, इसमें गाने की फरमाइश की जाती है, तो गाने की ही फरमाइश भेजा करिए, अपने सवाल फालतू के सवाल उठा उठा के नहीं भेजा करिए, क्योंकि यहाँ हम टीचर बन के नहीं बैठे हुए हैं कि आपको पढ़ाते रहें और आप मेरे ज्ञान को चेक करते रहिए। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग दीदी। और मैसेज करने वाले हैं अनामिका चौधरी जी, जुड़ी हुई हैं लालगंज बीजापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि फरमाइश करने वाले भाई को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अली खान जी, जुड़े हुए हैं कुशीनगर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ कृष्ण मोहन जी जुड़ चुके हैं सिपाया खास से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, मैम मेरा फरमाइश कब बजेगा? बिल्कुल आपका भी फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, लिख रहे हैं कि आज आपकी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं हम। अगर लिख रहे हैं कि हम जिनकी इजाज़त करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। जी हाँ, बात ये बिल्कुल सही है और सोरा आना सच है आपकी बात। और मैसेज करने वाले हैं दुर्गेश कुमार जी आजमगढ़ से, तो चलिए आपको मेरे पसंद का गाना सुनना है, तो इन्जॉय करिए और सुन के बताइए कि आपको गाना कैसा लगा। गाना प्ले कर दिया, इन्जॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश दुर्गेश कुमार जी की थी लेकिन पसंद मेरी थी और इनको मेरे पसंद का ही गाना सुनना था। और मैसेज लिख रहे हैं कि जितना सुंदर है उतना आपका पसंद। मैडम जी बहुत ही सुंदर सॉन्ग और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि आपकी पसंद लाजवाब है दी सुपरहिट गाना। और मैसेज करने वाली हैं अनामिका चौधरी जी। और आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन पंकज जी। और आगे यहाँ मैसेज एक और है और प्रेम अदेशिया जी हैं पुराना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि वाह लाजवाब सॉन्ग। और आगे और भी सारे मैसेज पहुँचे हुए, लिख रहे हैं कि आपका पसंद लाजवाब है। और महेंद्र कपूर की जादुई आवाज़ जो रंग रंग को रोमांटिक कर देता है, सुपर सॉन्ग मेरा प्यार वो है कि जी हाँ काफ़ी खूबसूरत गाना है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दर्द का एहसास जानना है तो प्यार करके देखो, दर्द का एहसास जानना है तो प्यार करके देखो, अपनी आंखों में किसी को उतार करके देखो, चोट उनको लगेगी आंसू तुम्हें आएगी, एहसास जानना है तो दिल हार कर देखो। और क्या बात है, लग रहा है कि पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। और मैसेज करने वाले हैं फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मनीष रजाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम कौन है जो आपके दिमाग का दही कर रहा है, छोड़ दीजिए हर रोज़ कोई ना कोई आते रहेगा जो कि दिमाग का दही करते रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग का दही होने वाला नहीं है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इतना ओल्ड सॉन्ग क्या गजब चॉइस है आरजी जी की। और मैसेज करने वाले हैं समर जींस जामो से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम शो से जुड़ रहे हैं। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि वाह सोनी जी आपकी पसंद तो इतना प्यारा है, आपकी पसंद है दिल को छू लिया। और मैसेज के साथ है बसंती देवी जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे और अगली फरमाइश और भी सारे मैसेज शामिल करेंगे। फिलहाल यहाँ मैसेज है वेरी नाइस सॉन्ग और यहाँ मैसेज पहुँच गया, धन्यवाद मैडम जी। और इसी के साथ अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे और कॉल पहुँच चुका है तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
1: सोनी जी, जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन में।
1: मैं कृष्णा जी,
0: जी कैसे हैं कृष्णा जी?
1: ठीक है बानी, बुझाता कि कोनो गलती हो जाए का हमरा से कि दो दिन से फोन धरा होता नहीं उठाते
0: ना जी, ऐसा कोनो बात नहीं है, हम नंबर थोड़े चीन के रख ले बानी हम।
1: अच्छा,
0: जेकर फोन उठ जाओ, अभी उतना हम ही सोच के ना उठे नहीं कि रावरे फोन हुई, बस कॉल पहुंचा ला हम रिसीव कर लेनी।
1: 11 बज के सब 11 ही में से कॉल करो तन,
0: चली मेहनत करनी तो लाग गलो।
1: बहुत ना,
0: भीड़ तो बहुत ज्यादा बा।
1: और सब सुनाई?
0: सब बढ़िया बाटे, रहुआ बताई घर परिवार सब लोग कैसन बा?
1: सब कोई ठीक बा, माई के कृपा बा।
0: तो आज कौन गाना सुने रहुआ?
1: ए रामा जी भाई तो बड़ा जानकार गाना सुनोनी है जी। और सब सुनाई?
0: सब बढ़िया बाजी, गाना के नाम बता दी।
1: खाना होना हो गई?
0: खाना तो ये गलबाब लंच के टाइम होता है।
1: अच्छा, एक दिन रामा जी भाई को अपनी की कौन अलग के सब कोई साथी होला भी अलग के ही ना हो। तो बात तो ही सही बा,
0: बिल्कुल सही बा।
1: मैं के बात करे हो गाना हमारा याद तो दिन से सोच के रख लगा नहीं। वो तो ये सॉन्ग है शायद।
0: अच्छा,
1: गंगा किनारे मुन्ना कौन फिल्म हो, दुखवा में सब कोई साथी, सुखवा में सब कोई साथी, दुखवा बतावे वाला केगा, कहे खाती सब कोई आपन बा, दुखवा में
0: कहे के सब कोई आपन आपन कहे वाला केवा, यह गाना। चलिए तो प्ले कर दिले बनी गाना।
1: ठीक
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कॉल करने

अरे हाँ, रेडियो फैन पंकज जी लिख रहे हैं कि खूब नीमन गाना। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही नीमन गाना बाटे और कृष्णा जी के फरमाइश बाटे, एंजॉय करी रहुआ सबे। और आगे यहाँ एक और मैसेज वाला लिखा तनी कि सुपर हिट सॉन्ग केशव राज जी जुड़ल बनी, एंजॉय करी गाना के रहुआ भी।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 1:41 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास। और यहाँ मैसेज है लिखे कि ये गाना सिर्फ आपके लिए हो सकता है, थोड़ा गुनगुना दीजिएगा। बिल्कुल। और धनेश मिश्रा जी की तरफ से फरमाइश पहुँचा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि लेकिन मेरा सॉन्ग बजा दीजिए, वॉइस मैसेज में भेजा हूँ। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश से प्ले कर रहे हैं। और यहाँ एक और मैसेज है दिल्ली से जुड़े हुए हैं मुन्ना जी, तो बिल्कुल आपके ऊपर भी ध्यान है और आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है, थोड़ा इंतज़ार करिए। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं और नाम है इनका नईम अंसारी जी, जानतारा से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है नईम जी। हम आपको बोले हैं कि हम आपके गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे और दूसरी फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद प्ले होगी। तो फिलहाल सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम को, शो से जुड़ सकते हैं लेकिन फरमाइश जो है आपका आज नहीं प्ले कर सकते क्योंकि हमारे पास काफ़ी फरमाइश है। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है मुन्ना जी का दिल्ली से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे मुन्ना जी की फरमाइश से। दिल्ली सर लिख रहे हैं कि एक बार मैसेज देख लीजिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग मैसेज जब भी करिए क्लियर मैसेज करिए। समझ में ही नहीं आता है कि शायरी किधर है आप लोग का नाम किधर है और गाने का नाम किधर है, सब एक ही में कर देते हैं। तो अलग अलग करिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और ये भी गाना आपकी तरफ से नाम फरमाइश में था, इसलिए हम सोचे कि यही गाना है और ये गाना प्ले कर दिए। और मुझे क्या पता था कि इस गाने का रील आप भेजे हुए हैं देखने के लिए। फिलहाल यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुन्ना भाई का गाना और खाना पीना छूट गया है। ओहो, और उमाशंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इतना इंस्टा आईडी नहीं बताया नाम आपने, और इंस्टा आईडी और नाम से क्या करना है वो तो मैं किसी को नहीं बताती हूँ। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, और यहाँ दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं अपने गांव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आजकल फोनों कल का हमारा फेवरेट गाना है और मुन्ना भाई के बजाने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। और जो अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है जहूर आलम अंसारी जी हैं, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं हम कुवैत से जहूर आलम, और मैसेज वॉइस कर रहा हूँ। हमको गाना सुनना है जो बीच बजरिया में मेरी पकड़ी बहिया, ये गाना सुनवा दीजिएगा।
2: नए वीडियोस देख,
0: तो चलिए जोहर जी आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। और जब भी आप लोग वॉइस भेजा करिए, थोड़े शांत जगह से भेजिए। आपकी वॉइस में गाने का नाम तो समझ में आया, बाकी और मैसेज समझ में नहीं आया, हवा का आवाज़ ज़्यादा था, तो कम से कम वॉइस रिकॉर्ड करिए, तो उसे क्लियर रिकॉर्ड करके भेजा करिए ताकि समझ में आए कि आप कह क्या रहे हैं।

और यहाँ किसी का एक गाना प्ले नहीं हो रहा है, और यहाँ मैसेज पहुँच रहा है कि मेरा दूसरा गाना भी प्ले कर दीजिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपका दूसरा गाना प्ले नहीं हो सकता है, और ऐसा नहीं करिए आप लोग। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, फिलहाल एंजॉय करिए जहूर जी की फरमाइश का।

क्यू मेरा गाना बजाने के लिए और साथ में गुनगुनाने के लिए। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है परदेसी, परदेसी जाना नहीं। तो चलिए अगली फरमाइश भी प्ले कर रहे हैं बिना देरी किए, और इस गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है रंजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं, और कहाँ से जुड़े हुए हैं नहीं पता है। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका, और गाने की फरमाइश है तो चलिए प्ले कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टेबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया टीका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासी खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971602।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: ठक ठक
9: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 2:01 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद है। और रंजीत कुमार जी मैसेज किए हैं जो कि जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गीत बहुत ही सुंदर है और मैसेज करने वाले हैं नाम है इनका, नाम भी मेंशन किया करिए साथ में आप लोग। और केशव राज जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि तुम्हारा जाना मुझे मंजूर नहीं था, तुम्हारा जाना मुझे मंजूर नहीं था, मगर तुम्हें रोकने का हक भी कहाँ था। मैंने तुम्हें अपनी दुआओं में रखा और तुमने मुझे अपनी मजबूरियों में। तुम समय के साथ चल दिए, मैं यादों के साथ रह गया। तुम्हें नया संसार मिला और मैं तुम्हारे एक वादे का इंतजार करता रह गया। और बहुत ही सुंदर गीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ और भी एक मैसेज पहुँचा हुआ है, और मैसेज है लिख रहे हैं कि हर शाम किसी की सुहानी नहीं होती, हर शाम किसी की सुहानी नहीं होती, चाहत के पीछे किसी की कहानी नहीं होती, कुछ तो बात है इस मोहब्बत में। वरना गोरी राधा सांवले श्याम की दीवानी नहीं होती है। क्या बात है। और मैसेज के साथ है पाजी यूपी चौहान से, और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज फरमाइश किए गए सभी गाने बहुत ही अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ गाने ऐसे फरमाइश आए थे जो मोहब्बत की दास्तां को बयां कर रहे हैं, और कुछ गाने ऐसे थे अपने से बिछड़ने की दास्तां को बता रहे थे। उनके लिए कुछ है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी यादों में लौटना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों पर रखकर तुम्हें अपने दिल की धड़कन सुनाना चाहता हूँ, मैं बस एक आखिरी बार तुम्हारी आँखों में देखना चाहता हूँ, और मुझे कोई परवाह नहीं कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बस मुझे जीते रहना है। मतलब ये चारों तरफ धोखेबाजी या यहाँ संसार नियम खोलते हैं तो आपका स्वागत है। इस छल कपट के दौर में अब कुछ भी सही या गलत नहीं, आज के इस युग में सही बात है। और मैसेज करने वाले सोनू जी सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका सो में। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हर उम्र में रहती है मोहब्बत की ज़रूरत, हर उम्र में रहती है मोहब्बत की ज़रूरत, इस उम्र में क्या दिल दिल नहीं रहता। और सॉन्ग है अंखियाँ मिला के अंखियों से। और मिजाजी यादव जी जुड़ चुके हैं कल्याणी चौक ज्यादा वैशाली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ संजय यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मंतोष चौरसिया जी हैं अदमापुर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, और बसंती देवी जी हैं लामीचोर चबरिया टोला से, तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। एंजॉय करिए अपने गाने को, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
8: हेलो सोनी जी, मेरा भी गाना बजा दीजिए। गाना का बोल कहे के तो सब के हुआ अपन,

0: अल्लाह के यही मैसेज मैं भेजी थी बोल के रिकॉर्डिंग में, आप देख लीजिएगा, यही गाना बजा दीजिए।
1: और बसंती जी, मुझे उम्मीद है कि ये गाना आप जो है सुन चुके हैं, क्योंकि आपके जुड़ने के बाद ही हम इस गाने की फरमाइश जो है प्ले किए थे, जो कि कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश पहुंची थी। अगर आप गाने की फरमाइश चेंज कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम में एक ही गाना दो बार बजे अच्छा नहीं लगता है। और अगली फरमाइश की तरफ हम रुख करेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और फरमाइश करने वाले हैं मनीष रजाक जी, और इनकी तरफ से गाना की फरमाइश है तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश।

जितनी भी फरमाइश हमारे पास पहुंची हुई है, जो लोग लिख रहे हैं कि मेरा बारी कब आएगा, तो सबकी बारी आएगी और अब बारी आएगी जो दोपहर समाचार के बाद आएगा। तो आप सभी कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और फिलहाल हम गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले हैं मनीष जागदी फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और इनकी तरफ से मैसेज कुछ पहुंचा है। एंजॉय करिए, काफी खूबसूरत गाना, और लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद।

0: 90.4 रेडियो टिमटिम सुन रहा है आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी बढ़िया गाना सुन रहे थे, 90s का गाना, और गाने की फरमाइश करने वाले थे मनीष रजाक जी, तेरी चिनरिया दिल ले गई। और आगे लिखते हैं कि ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना, खुशियाँ बांटने के लिए तो दोस्त हजारों रखना, जब गम बांटना हो तो हमें याद करना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज लिख रहे कि सोनी जी मैं दूसरा लिंक के भेजी हूँ, वो गाना बजा दीजिए। बिल्कुल, और अब जो आपके गाने की फरमाइश है वो दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ और भी सारे मैसेज है, तो मैं जैसा कि मैं बोली हूँ कि दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि आज जितने भी गाने बजे हैं मैम पसंद के, सारे मेरे पसंद के थे और टाइम बसा है, चलिए बहुत ही अच्छा। और यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन है, कहाँ से और फरमाइश क्या है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जी में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्ते, कैसी है नेहा जी?
1: अच्छा है, आप बताइए कैसे
0: है? हम भी बढ़िया हैं।
1: बोलते बोलते प्यास लग गया आपको।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं, प्यास तो लग गया है और भूख भी लग गया है।
1: हाँ तो खाना खा लीजिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, आपके गाना जो है प्ले करके उसके बाद खाने ही जाएंगे।
1: जी
0: जी, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनवा दे आपको।
1: गाना सुना दीजिए, तुम मेरे हो जब जब धड़कन बोले मेरा दिल पुकारे,
0: जब जब धड़कन बोले मेरा दिल पुकारे।
1: जी, तुम मेरे हो।
0: गाना का नाम है तुम मेरे हो,
1: फिल्म का नाम है, गाना का नाम है।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग है।
1: जी
0: चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपका।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल की, एंजॉय करिए अपने गाने को। और इसी गाने के पार हम चलेंगे दोपहर समाचार के तरफ, तो आप सब कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। आप सभी से मिलते हैं फिर इसी कार्यक्रम में यहीं पे दोपहर समाचार के बाद, तब तक के लिए एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
5: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
6: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
12: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
16: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
15: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
17: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
15: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
17: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
15: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
17: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
15: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
17: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
15: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
17: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
15: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
17: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
15: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
17: बोलबम, हर हर महादेव।
18: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
19: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
18: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
19: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
18: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
19: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
20: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
18: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
21: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
20: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
21: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
18: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
22: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
23: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:48 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और 4 बजे तक आपकी फरमाइशों के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और मैसेज ये लिख रहे हैं कि पूजा कुमारी जी मेरे दोस्त का नंबर अनब्लॉक कर दीजिए दी और ब्लॉक से निकाल दीजिए। तो पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके दोस्त का नंबर अगर अनब्लॉक कराना है आपको तो अपने दोस्त को बोलिए कि वो इस बात को खुद बोले, और अगर उनको अपनी गलती का पछतावा है तो उनको खुद माफ़ी मांगने बोलिए। हम आपके कहने से नंबर बिल्कुल नहीं निकाल सकते और अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं।

और आगे यहाँ मैसेज है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ और मेरा भी गाना बजा दीजिए। और गाने की फरमाइश है दिल का टुकड़े टुकड़े करके, बिल्कुल आपकी फरमाइश है और आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे और आपका इंतजार जो है हुआ खत्म। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अजय जी, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, कॉल भी आ रहे हैं। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मंजिल भी उसी की थी, रास्ता भी उसी का था, एक मैं ही अकेला था, बाकी सारा कारवा भी उसका था, एक साथ चलने की सोच थी उसी की थी और बाद में रास्ता बदलने का फैसला भी उसी का था। और मेरा गाना कब बजेगा, तो बिल्कुल अगला गाना आपका होगा। और मैसेज करने वाली है अनामिका जी, मिर्ज़ापुर लालगंज उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका शो में जुड़ी और फरमाइश बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है। विश्व कुमार जी जुड़ चुके हैं वीके फास्ट फूड सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज पहुँच चुका है गुरु नानकपुर बठिडा पंजाब से, किशोर साबलिनिया जी, सवित्री साबलिनिया, सुमन साबलिनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़ चुके हैं गाने की फरमाइश के साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाना सुनना है तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल इंजॉय करिए अजय जी की फरमाइश को दिल के टुकड़े टुकड़े करके, रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 FM रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी अजय जी की तरफ से अयोध्या से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ बसंती देवी जी है लामी चौर शबरिया टोला से लिख रहे हैं कि सोने दी ये बेमानी हो रहा है, और आप बोली थी कि समाचार के बाद गाना बजेगा और मैं लिंक भेज दी हूँ, तो बिल्कुल बेमानी नहीं हो रहा है। मैं आपके गाने के लिए नहीं बोली थी, मैं आपका गाना प्ले करके बोली थी कि बाकी की जो फरमाइशें है वो जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। आपकी तरफ से दो वॉइस था तो हम ये भी पूछे थे कि कौन सा वॉइस प्ले करना है, और आप क्लियर करके बताई थी, और उसके बाद मैं गाना प्ले करके दोपहर आपका गाने के बाद ही दोपहर समाचार की तरफ बढ़े थे। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिखने की, सोनी मैम हम भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश यादव जी हैं नारायणपुर सिवान से, बने रहिए साथ में। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। दिलीप राम जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि सोनी जी नमस्कार, आपके लिए भेजा हूँ सॉन्ग, सुना दीजिएगा बिल्कुल। और आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करने की आपकी भी फरमाइश पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जी हम भी जुड़ गए हैं। और कोलकाता से संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ और भी फरमाइश है, अमरजीत शुक्ला दुबई से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिखते हैं कि अगर इश्क है तो छुपाती क्यों हो, मेरी बातों पर फिर मुस्कुराती क्यों हो, कह दो ना एक बार दिल की बात हमसे, वरना आंखों से प्यार जताती क्यों हो। और मैसेज के साथ है अमरजीत शुक्ला जी दुबई से, और लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, अभी मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और नाइट ड्यूटी करते हैं इसलिए शो से जुड़ने में लेट हो जाता है। कोई नहीं, पहले प्रायोरिटी आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, और जब भी समय मिले आप जुड़ जाया करिए। और दिनेश मिश्रा जी हैं लिख रहे हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके करके नहीं, दिलवा के बुकनी बुकनी करके दांत चियार के चल गई, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग। और सॉन्ग बजाने वाले फरमाइश करने वाले भाई को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और

0: फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो बात करते हैं, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए। अलाउद्दीन
1: जी। मैडम
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं अलाउद्दीन जी?
1: मैं गोपालगंज से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है मैडम,
0: जी जी मेरा भी बढ़िया है। गाना कौन सा सुनवा दे आपको आज?
1: तांगे वाली नेचर मुझे ख्वाजा की नगरिया।
0: एक बार और बताइए।
1: तांगे वाली नेचर मुझे ख्वाजा की नगरिया।
0: ये कवाली है?
1: हाँ ये कवाली है मतलब।
0: चलिए जी जी, गाना प्ले कर दिया।
1: ठीक है,
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।
1: धन्यवाद।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रूपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रूपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रूपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 3:07 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है। और बसंती देवी जी है, लिख रही है कि चेक कर लीजिए मैम, मेरा गाना नहीं बजा है। तो जब तक मैं किसी का गाना नहीं प्ले करती हूँ, मैं इधर से मैसेज नहीं करती हूँ। और आपके लिए आपके गाना प्ले करके हम मैसेज किए हैं कि आपका गाना बज चुका है, आप सुन लीजिए। और मैं ऐसे ही ये मैसेज नहीं डालती हूँ। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, लेकिन अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए कि आप कौन हैं और कहाँ से। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि अलाउद्दीन भाई के लिए गाना, अलाउद्दीन भाई का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, उन्हें कह दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा उनका गाना। और मैसेज करने वाले हैं एमडी महमूद जी केरला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि अब जब अरे दादा अरे, यहाँ काफ़ी सारे ये जो भी प्ले किए थे वो बिल्कुल धार्मिक सॉन्ग था। मैं कहाँ कह रही हूँ कि धार्मिक सॉन्ग नहीं था, लेकिन मैटर करता है ना कि धार्मिक सॉन्ग वो है कैसा। और एक तरफा सॉन्ग नहीं होना चाहिए ऐसे। और जो भी मुझे लगता है कि ये सही है, प्ले करना चाहिए, इसे कोई आपत्ति नहीं है। वही जो गाना अगर धार्मिक हो और उससे किसी को सुन के परेशानी हो, वैसा गाना मैं बिल्कुल प्ले नहीं करती हूँ। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। और यहाँ मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। नाम पता मेंशन नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप लोग गाने की फरमाइश करिए, साथ में अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए कि आप कौन है कहाँ से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फिलहाल अगली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है गुरु नानकपुरा बठीरिया पंजाब से किशोर साबलनिया जी की तरफ से। तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। और गाना है तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। प्ले कर दिया आपके गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

और यहाँ बोकारो से प्रशांत कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका भी, और लिख रहे हैं कि मेरा भी अटेंडेंस लगा दीजिए। बिल्कुल लगा चुके हैं आपके अटेंडेंस और गाने की फरमाइश है, तो वेट करिए आपके गाने की फरमाइश जो है सागर जैसे आंखों वाली, बिल्कुल प्ले करने की पूरी कोशिश है।

और यहाँ मैसेज पहुंच चुका है किशोर सबरनिया जी की तरफ से, लिख रहे हैं धन्यवाद मैडम जी गाना सुनाने के लिए, एंजॉय करिए। और यहाँ इंद्रदेव जी है लिख रहे हैं कि सुपर हिट सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, सॉरी जम्मू से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं रेडियो रिमझिम के साथ, तो एंजॉय करिए गाने को किशोर सबरनिया जी की तरफ से, गाने की फरमाइश है, काफ़ी खूबसूरत गाने की।

90.4 रेडियो रिमझिम से आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी किशोर सावरनिया जी की। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है गाने की फरमाइश, टोना लागे ना हमरा सोना के। और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है आरज अमन जी की तरफ से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को। आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
6: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
6: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और यहाँ मैसेज है कि अवध में प्रोटोकॉल में कल ही बोली थी कि आपका गाना हम नहीं प्ले करेंगे, फिर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये अच्छा बात नहीं है, और ये गाना हम बिल्कुल प्ले नहीं कर सकते। धार्मिक अगर गाना हम प्ले कर रहे हैं, और भी सारे गाने हैं अगर आप प्ले करना बजाना चाहें, सुनना चाहें तो आप भेज सकते हैं, हमें प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये गाना जो आपकी तरफ से है ये बिल्कुल नहीं प्ले कर सकते। और यहाँ जुड़े हुए हैं अहमद अली जी, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, कैसे हैं मैम, और सारे वार्ड नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए क्या, आप कैसे हैं। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि वह लाजवाब सॉन्ग तेरे संग प्यार में, और फरमाइश करने वाले दोस्त को दिल से धन्यवाद देते हैं। देवराज कुमार है रेशम नगर भगया जिला झारखंड, गोंडा झारखंड से। और आगे यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि चलिए मैम हमारा भी अटेंडेंस लगा दीजिए। बिल्कुल आपका अटेंडेंस लग चुका है। और दीपक जी हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, और मोतिहारी जिला से मिस्टर कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर गाना। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी एक आपके लिए गाना और बाकी सभी दोस्तों के लिए गाने की फरमाइश किए हुए हैं। और ओम प्रकाश यादव जी है, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और यहाँ मैसेज है कि कॉल रिसीव करिए, बिल्कुल कॉल रिसीव करेंगे, कॉल पहुंचे तो सही। और आगे एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बा मैम जी, हाँ बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि क्या बात है मैम, और क्या आवाज़ है मैम आपका, जब भी आप गुनगुनाती हो। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं, और फिलहाल हम अगली फरमाइश प्ले करेंगे। हमारे पास फरमाइश जो है वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
9: हाय मैम, मैं ओम प्रकाश यादव नारायणपुर सिवान से बोल रहा हूँ, मुझे भी गाना सुनना है, फूल तुम्हें भेजा हूँ खत पे, फूल में ही मेरा दिल है। मैम सुना दीजिए, बहुत दिनों के बाद जुड़ रहा हूँ, ऐसे तो कार्यक्रम सुनता हूँ जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा टाइम का कमी है इसलिए मैं बहुत दिनों के बाद मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है,
10: सारे गामा

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि फूल आपको भेजा हूँ मैडम जी, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, ओम प्रकाश यादव जी है और इनकी फरमाइश है, एंजॉय करें काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और यहाँ है कि मेरा गाना कब बजेगा, बिल्कुल सबके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर ही रहे। और यहाँ अभी अभी मैसेज पहुँच रहा है और गाने की फरमाइश के साथ विदा नमाज़ जी है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी आपका एक सदा नहीं हुआ है, जैसे एक सप्ताह

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे थे। गाने की फरमाइश थी ओम प्रकाश यादव जी के नारायणपुर सिवान से और यहाँ आगे मैसेज है लिख रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड लाजवाब सॉन्ग और मैसेज करने वाले हैं राजेश गौतम जी मुंबई से और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी और प्रदीप सहानी जुड़ चुके हैं दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत और आगे लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा तो बिल्कुल अगली फरमाइश आपकी है। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो पहले बात करेंगे देखते हैं कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो वालेकुम अस्सलाम नाम बता दीजिए।
1: बहुत जी कॉल उठाने के लिए
0: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं।
1: खाना वाना खाई है?
0: जी हाँ खाना पीना हो गया है।
1: और सब अच्छा है ना?
0: जी जी सब बढ़िया है।
1: आज हमको सॉन्ग सुनाइए सनम बेवफा मूवी से चोरी मजा ना देगी कंगन मजा ना देगा
0: जी
1: और सुनाना है सबसे पहले आपको और भारती जी को अख्तरी को और जो भी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी को।
0: चलिए तो प्ले कर दिया है गाना आपका।
1: थैंक यू मैम बहुत मुश्किल से नेटवर्क पकड़ाए हैं गाना सुन रहे हैं।
0: कोई नहीं सारा मुश्किल अब खत्म हो गया गाना सुन के।
1: ये तो बात है।
0: जी जी
1: चलिए अच्छे अच्छे गाना फरमाइश हो रहे हैं आज। पुराना पुराना बहुत सुपर से ऊपर गाना था अभी जो सरस्वती चंद्र मूवी पे जो गाना बज रहा था जबरदस्त गाना।
0: जी आप ही लोग के हाथ में है कि कार्यक्रम में गाने कैसे चले?
1: ऐसे ऐसे गाने तो बहुत अच्छे लगते हैं मैम आदमी लोग भोजपुरा भोजपुरी फरमाता है
0: ये तो भोजपुरी गाने भी खराब नहीं है अगर गाने फरमाए जाए अच्छे तो
1: उसमें भी अच्छे हैं फिल्मी जो फिल्मी गाने हैं उसमें अच्छे अच्छे हैं।
0: चलिए समय कम है फिर बात होगी गाना इंजॉय करिए ठीक है
1: आपका थैंक यू मैम
0: वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद सोना कॉल।

0: पिताजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
0: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और समय काफी कम है तो बात नहीं करेंगे और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और अगली फरमाइश जो मेरे पास पहुंचा हुआ है, अभिमन्यु कुमार जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। पकौली कटिया से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से और गाने की फरमाइश है। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दें, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ था और यहाँ मैसेज भी पहुंच चुका है, लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। अभिमन्यु कुमार थे जो कि जुड़े हुए हैं और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि नमस्कार जी आप सभी को, और जब इतनी वफा से भरी गाने की फरमाइश आए तो जिससे मोहब्बत की गूंज दिलो दिमाग पर छा जाए, जिसे सुनकर दिल की धड़कन रुक जाए और तो कोई कैसे अलविदा कह दे। इस रेडियो रिमझिम इस प्रोग्राम से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और अच्छे गाने की फरमाइश करने के लिए। और ये बात भी सही है कि आप गाना कहीं भी सुन सकते हैं आज के ज़माने में, लेकिन जो फरमाइश आती है उसके साथ जो इमोशन एहसास जज्बात जुड़े होते हैं वो नहीं मिलता। जी हाँ बिल्कुल सही, और रेडियो के साथ ये एक फ़ायदा होता है। और मैसेज करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि लगे रहिए इसी तरह सुपर हिट गा रही हैं मैम। और मैसेज करने वाले हैं अहमद अली जी सारे अवार्ड नंबर एक से एक। और यहाँ मैसेज है संजय यादव जी हैं, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। बिल्कुल सही। और मैसेज के साथ है फाजी यूपी चौवन से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि देख लीजिए अगर बच जाए एक सप्ताह पहले तो ओके, समय रहा तो ज़रूर प्ले करेंगे, लेकिन अभी समय काफ़ी कम है और फरमाइश जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को। और गाने की फरमाइश है देख तमाशा लकड़ी का, और गाने की फरमाइश करने वाले नाम है इनका बाबा, जुड़े हुए हैं सूरत से और लिख रहे हैं कि 14 दिन बाद गाने की फरमाइश किए हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दी है, इंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
1: तू पगले सर तेरे एहसान है कितना लकड़ी का, जान को छू

से जब माँ की तूने जन्म लिया तो सबसे कब इसी लकड़ी ने तेरा साथ दिया। ज़ईफ दाई ने संसार के हयूले में सुला दिया तुझे लकड़ी के एक झूले में। छूटा जो झूला तो लकड़ी की चारपाई मिली, बनी जो लकड़ी के छिलकों से वो चटाई मिली। उम्र में 5 की जब आई मदरसे की घड़ी तो गुरु के हाथ की लकड़ी से पहले आंख लड़ी। नशिस्त लकड़ी की, कुर्सी भी तेरी लकड़ी की, कलम भी लकड़ी का, तख्ती भी तेरी लकड़ी की। हुआ तू 12 बरस का तो और खुली किस्मत, जब और आई तेरे हाथ पांव में ताकत। निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा, तो अपनी खातिर खुद ही

और यहाँ मैसेज भी पहुँच चुका है बाबा जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि थैंक्स सोनी जी गाना बजाने के लिए। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मजा आ गया गाना सुन के, मिस्टर कुमार जी हैं जो कि मोतिहारी जिला से।

0: अगर जग से तूने जोग लिया, गले में लकड़ी के मन के खड़ा हूं लकड़ी का भजन के वास्ते, लकड़ी का एक तारा भी गजा के वास्ते, लकड़ी का एक कासा भी अग्नि भी लकड़ी की पूजा प्रार्थना के लिए, नशिस्त लकड़ी की मंदिर में देवता के लिए, ये दाने लकड़ी के तस्बीह में जो है तेरी, कुरान जिस पर रखे तू वो रैल लकड़ी की, बना जो शेख तो हर वक्त साथ में लकड़ी, बना इमाम तो मिंबर पे हाथ में लकड़ी, तू जो मरा तो फिर अहबाब ने ये काम किया कि सुला के लकड़ी के तख्ते पे तुझको गुस्ल दिया, बनी जो अर्थी तो अर्थी में भी वही लकड़ी, मसान में भी तेरे साथ ही गई लकड़ी, तेरे जनाजे को देखा तो वो भी लकड़ी का, मिला ये आखिरी साया तो वो भी लकड़ी का, तेरी चिता भी तो लकड़ी बगैर जल न सकी, अजीब लकड़ी थी मरने पे भी जो टल न सकी, कब्र में तुझको दफन किया तो कब्र में बरगा लकड़ी का।
1: चांद को छूने वाले
2: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महादेव।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और 3:51 हो चुके हैं, स्टूडियो घड़ी में और 9 मिनट है सो का समय। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी सारे मैसेज और लिख रहे हैं कि ठीक है मैम कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ सुन लेते हैं, जैसे लगता है कि रेडियो रिमझिम में उसे ईश्वर से बढ़कर भी इस रेडियो रिमझिम में आई है और आप और मैं ईश्वर को तो कभी नहीं देखा, आपकी आवाज़ सुनकर मुझे एहसास होता है कि आप उनसे भी बढ़कर है। भाई ऐसा बात नहीं, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता है, और ईश्वर ईश्वर है और इंसान इंसान। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े, और मऊ जिला से जुड़े हुए हैं विदा निवास जी। तभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है, जैसे ही एक सप्ताह होगा हम आपकी यानी कि फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फिलहाल अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। और हाँ, मैसेज है सोनू जी है सऊदी अरब से, लिख रहे हैं कि आई हैव वन ऑब्जेक्शन फॉर यू, वाई नॉट यू रीड सो स्लो। ओहो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैसेज स्लो ही पढ़ूँ, लेकिन क्या करूँ, फिर भी आपकी मैसेज जो है मैं काफ़ी स्लो पढ़ती हूँ, और आगे से और ध्यान रखूँगी कि और भी स्लो मैं आपका मैसेज पढ़ूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। पहले से तो मैं काफ़ी स्लो कर दी हूँ आपके मैसेज जो है, शामिल जब भी करते हैं आराम से पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम आपका मैसेज जो है सही पढ़ रहे हैं या नहीं। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग राजेश गौतम जी है मुंबई से। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया सुपरहिट गाना, और इस तरह के गाने चलेंगे तो मज़ा आ जाता है, सो सुन के चलिए बहुत ही अच्छा। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम मैसेज कर सकते हैं ना? बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाने की फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद ही प्ले करेंगे। मिस्टर कुमार जी हैं, और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सबसे बढ़िया शायरी उनके हाथों से नहीं बनती जो फ़ोन को सबसे लंबे समय तक पकड़ सके।

किशोर कुमार की आवाज़ में एंजॉय करिए आप सभी। और प्रशांत कुमार जी बोकारो जिला से जुड़े हुए झारखंड से, तो आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है सागर जैसी आंखों वाली। एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। और आप सभी से निवेदन है कि मुझे कसम नहीं दीजिए, मैं गाना बिल्कुल प्ले नहीं करने वाली हूँ, ये गलत बात है और गलत हमेशा गलत होता है।

0: क्या।
1: और यहाँ राम कुमार जी जुड़े हुए हैं बालाघाट एमपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैहर एमपी से सुनील कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, मैसेज इतने सारे आते हैं कि उसमें कुछ मैसेज छूट जाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि मैं किसी से नाराज हूँ या फिर किसी का मैसेज नहीं शामिल कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो फिर एक बार मैसेज कर दिया करिए ताकि सामने आ जाए और मैं शामिल कर पाऊँ आपकी मैसेज।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी और फरमाइश करने वाले हैं प्रशंजीत कुमार जी बोकारो से, और इन्होंने गाना सुन लिया और काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या करेंगे क्या करें, कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है पर सहा नहीं जाता, दोस्ती हो गई है कुछ इस कदर, आपसे बिना याद किए रहा नहीं जाता। और मैम अब विदाई हो रहा है जहाँ पर मैं आया हूँ, ओहो, और मुझे लग रहा है कि विदाई देखकर आपने ये शायरी लिखा है, बहुत ही बढ़िया। और मैसेज करने वाले पाजी यूपी चौहान से, और समय इशारा कर रहे हैं कि समय हो चुका है शो से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर सॉन्ग लगा, बाय बाय सोनी मैडम जी। राजेश गौतम जी है मुंबई से, और यहाँ इरशाद मास्टर जी हैं, लिख रहे हैं कि बाय बाय। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी को कैसे कोई कसम खिला सकता है, चाहे कसम दे सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, लेकिन उतना ही सत्य बात भी है कि आप इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से चलाते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। सागर जैसे आंखों वाली इस गाने की फरमाइश करने वाले भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ सही है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती कसम देना ये बिल्कुल गलत है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ बजा दीजिए, या फिर कुछ और भी है बहुत सारे यह है, लेकिन कसम नहीं दे सकते, ये गलत बात है। और किसी भी चीज़ के लिए, गाने बजाने के लिए ही नहीं हो, कसम तो बिल्कुल नहीं दे सकते। और यहाँ मैसेज भी पहुँच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू मेरा गाना बजाने के लिए, फ़िलहाल 4 बज चुका है और दीजिए आज के शो से मुझे जाने की इजाज़त। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वाह और बाय बाय सभी को, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: कर। अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
1: और 9097-6160-02।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम सुनो।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746 64।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
1: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर

0: 48507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.

0: आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहाँ आपकी फरमाइशें और आपकी पसंद की गीतें सजाते हैं इस महफिल को। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार बुधवार शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफ़र को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मनीषा कुमारी तरिया से।
1: कैसी है मनीषा जी?
2: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था?
2: अभी बैठी हूँ, खाना खा कर बैठी थी। आपका खाना हो गया?
1: जी जी, मेरा खाना हो गया है।
2: चलिए ठीक है।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
2: तेनु शरारत सिखावा जद नैना लड़ा।
1: और सुनाना भी है
2: जी मैम आपको और अपने दोनों दीदी को और छोटे भाई को और रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी
1: ओके। चलिए तो प्ले करे गाना आपके।
2: जी मैम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।
2: जी थैंक यू मैम।
1: मोस्ट वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
1: प्रणाम प्रणाम
0: जी प्रणाम जी जी आज हम ही बानी सब बढ़िया बा। अपने के बताई कैसन बानी घर परिवार सभी लोग कैसन बा?
1: सब लोग ठीक
0: बढ़िया बा। हम भी ठीक है बानी। मनीष मिश्रा बात करते नहीं?
1: हाँ हाँ मनीष कुमार मिश्रा। सबका हमारा ठीक ठाक बानी
0: कैसे
1: सही अनुमान होता।
0: अच्छा मतलब अनुमान लगावे के कारण जान सकता नहीं?
1: कारण क्या जान सकता नहीं
0: मतलब कैसे अनुमान लागल कि हम ठीक ठाक नहीं थी?
1: ठीक ठाक जब शो में आई ले जब बोली ले तो वही पता चल जाएगा कि ठीक ठाक वाली की नहीं ठीक ठाक।
0: अच्छा अच्छा चली
1: वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मैम चक चक आज बारिश भी भय लगे ना।
0: अभी कहाँ इंतजार बटे बारिश के। तो गाना कौन सुनवा दे?
1: गाना सुनवा दिया आज एगो अंजलि यादव का गाना बा सीधा साधा दिलवा के कत्ल कैलू
0: जी
1: सुनवा दे।
0: सुनवाए के भी बा
1: इतना हमारा नाम से जाने वाला लोग सब लोग सुन ली आपका रोड़ा के।
0: चलिए ठीक बात तो प्ले कर तनी गाना
1: प्ले कर।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल के प्रणाम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
10: हेलो, नमस्कार मैडम।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
10: ये आप भारती जी बोल रहे हैं?
11: सोनी बात कर रहे हैं।
10: सोनी
11: जी,
10: आपसे हमको शिकायत है पहली बार। आज बहुत दिनों के बाद मिली हो। मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
11: जी जी,
10: है ना, आज कितने दिनों के बाद मिली है। कल आपका हम प्रोग्राम सुने हैं, वो वाला लाइव वाला। उसमें कौन सा आदमी पूछा है कि हम पान बहुत ज्यादा खाते हैं?
11: दनेश मिश्रा बोले हैं कि आप पान के शौकीन हैं।
10: बताइए, हम पान खा के बात करते हैं क्या?
11: नहीं, और ये बिमलेश जुड़ते हैं क्या, थारे की तरफ से कहीं से।
10: अच्छा,
11: हाँ, तो वो बोले कि आप कुछ खाते खाते बात करते हैं, आपके बातों से ऐसा लगता है।
10: मेरा आवाज ही मोटा है तो हम क्या करें, बोलिए।
11: नहीं, वो तो मैं बोली उनको कि ऐसा है, बाकी अब मुझे नहीं पता कि वो खाते हैं या नहीं खाते हैं।
10: ऐसा ही बोल रहे थे कपूरपुरा वाले भाई साहब।
11: हाँ हाँ, मन्नान भाई।
10: तो पान खा के बात करते हैं क्या? पर इतना ही हम पहले सुने, जब रेडियो को जैसे वॉल्यूम ऑन किए ना तो यही आवाज पहले मेरे कानों पे आया, और उससे पहले क्या प्रोग्राम हुआ वो हमको पता नहीं है।
11: अच्छा,
10: लेकिन हाँ वही प्रोग्राम सुनने के लिए खोले, जब हम टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिला तो अपना खोल कर सुनने लगे, इन्हीं का आवाज आया है ना,
11: अभी पता नहीं था समय पे आप रेडियो ऑन किए हैं।
10: हाँ एकदम बिल्कुल सटीक एकदम समय पे किए हैं ऑन, है ना। अब हम किसी से शिकायत अपना बोल भी नहीं रहे घर में कि देखो ना हमारे पान खाने का जो है मेरा शिकायत आ चुका है ना,
11: तो ऐसा क्या बात है? नहीं होता है कि अनुमान लगाना, तो वो ऐसे बोले तो हम बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम उनसे बात होगा तो बोले कि पूछिएगा, हमें उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर वो सुन रहे हैं तो वो खुद ही बोलेंगे, जवाब देंगे।
10: नहीं नहीं ऐसा कोई बात, पान तो खा ही लेते हैं, पर ऐसा कोई ये नहीं है कि पान हम नहीं खाए हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं, वैसा ये नहीं है कि हम बात करते वक्त जो पान खा लिए हो, है ना, तो वैसा नहीं है बात मेरा, लेकिन वो शिकायत किए हैं तो सीख ही किए हैं, कभी ना कभी तो खा ही लेते हैं।
11: नहीं शिकायत नहीं बोले, शिकायत बोल के नहीं बोले, वो बोले कि ऐसा लगता है कि कुछ खाते हुए बात करते हैं, तो वो बोले कि हो सकता है पान के शौकीन हो तो पान खा रहे हो, ऐसा नहीं बात, बस बात हुई है शिकायत के तौर पर, ना वो बोले है ना, ये उनका सवाल था कि पूछिएगा,
10: पूछिएगा, तो हम उनसे पहले हम ही आपसे पूछ दिए हैं, बात को काटिएगा नहीं।
11: नहीं नहीं काटने क्यों, हम बोले वासो में ही बोले कि मुझे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो सुन रहे हैं जहाँ से भी तो इसका रिप्लाई वो जरूर देंगे, जब भी उनसे बात होगी लेकिन जवाब मिलेगा,
10: बोल दीजिएगा उनसे भाई साहब कि हम पान खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, है ना, पर जो बातें होती है उस टाइम पे हम नहीं खाते हैं, और मेरे आवाज ही है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा।
11: नहीं नहीं वो तो सही है, लेकिन
10: हम तो ज्यादा तो कभी कभी तो नाम भी नहीं लेते हैं, बातों बातों में झील जाते हैं, है ना, कभी नाम भी लेते हैं, लेकिन नाम लेना जरूरी है और जगह का नाम लेना भी जरूरी है, इसमें लोग बाकी लोग सुनेंगे तो कैसे पता होगा कि कौन सा
11: जो नया लिसनर है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए क्या कि आदमी जुड़े कहाँ से है, कौन है।
10: आज आपका प्रोग्राम आएगा ना, वो
11: लाइव तो आज आएगा ही,
10: लाइव आएगा ना,
11: लाइव आएगा,
10: तो उसमें कैसे उसका नंबर भी नोट नहीं किया है ना लाइव वाला का, उसी में कॉल करके हम भी बोले,
11: उसमें नंबर है 72776665 पे कॉल कर सकते हैं,
10: 72776665
11: जी
10: ना, तो हाँ। कितने बजे कॉल होता है, हर रोज होता है क्या?
11: हर रोज 12 से 4 के बीच में शो चलता है, लाइव रहते हैं, हाँ, तो 12 बजे के बाद आप कभी भी जब भी रेडियो ऑन करिए, बस शो सुनना शुरू करिए, कॉल कर सकते हैं आप,
10: तो इसमें लिखते हैं रुकिए, 72 कितना,
11: 77 16 65 96
10: 16 65 रख लिए हैं, और इसी को हम कॉल करेंगे 12 बजे से लेकर कितने बजे तक मैडम?
11: 4 बजे तक,
10: 4 बजे तक, 12 1 2 3 4 वापस, कितना बड़ा शो चलाती है जी आप,
11: बीच में आधा घंटे का ब्रेक होता है, न्यूज चलता है ना दोपहर समाचार,
10: तो हम तो देखते हैं कि आप इतना स्पीड में आप बोलती जा रही है, इतने बोलती थकती नहीं है क्या मेरा?
11: थकते हैं तो पानी लेके बैठते हैं, पानी पीते रहते हैं,
10: अरे बड़ी स्पीड है, इतना स्पीड में आपका वो पढ़ लेना, जान लेना, बोल लेना, हम तो कहते हैं कि ये ऊपर वाला कहाँ से दिमाग आया है, कितना सोच है।
11: नहीं वहाँ तो फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ काफी सारे लिसनर होते हैं, और गाना बजे या ना बजे मैसेज तो सबका शामिल करना है।
10: अच्छा कॉल भी उठा लेती है उसी टाइम में?
11: उसी में एक व्हाट्सएप से रहता है, इंस्टाग्राम से भी फरमाइश होती है, कॉल से भी होता है।
10: व्हाट्सएप से करेंगे क्या?
11: जिससे मर्जी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहे तो वहाँ मैसेज हो सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज, अब या फिर आप बोल के वॉइस भेज सकते हैं अपना, उसमें होता है ना वॉइस रिकॉर्डिंग का, हाँ तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने आवाज में अपना बात।
10: नहीं जैसे अभी कॉल करके हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे उसमें नहीं कर सकते हैं?
11: तो उसमें जो नंबर अभी लिखा है तो उसमें कॉल भी है, तीन माध्यम है उसमें शो में जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप है, कॉल है, इंस्टाग्राम है, आप जो माध्यम है उपस्थित उस माध्यम
10: उसी में बोलेंगे, आप भी बोलेंगे पान वाला बात उसी में बोलेंगे।
11: सही रहेगा,
10: बहुत दिनों के बाद मैडम मिली है, इतना हमको खुशी हो रहा है कि क्या बताएं मैडम।
11: नहीं आते तो डेली हैं, लेकिन अब लाइव वाले में रहते हैं, दूसरा काम करते हैं, बाकी वो लोग हैं।
10: हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कोई गाना सुनाइए ना, बहुत दिनों के बाद आप मिली है जी, आप ही के मन से आज गाना सुनने का दिल करता है।
11: ठीक है, तो हम अपने कव्वाली
10: सुना दीजिएगा।
11: अच्छा, कव्वाली सुनना है?
10: हाँ, कोई कव्वाली जो है और ये वाला एल्बम का कोई कव्वाली भी सुनवा दीजिए।
11: अच्छा, पुराना कि नया? में
10: पुराना नया क्या, कव्वाली कव्वाली होता है, दूसरा का नाम है कव्वाली, बहुत तरह।
11: हाँ, वो तो है।
10: अब हम नहीं कहेंगे भोजपुरी गाना, नहीं कहेंगे वो कोई गलत गलत गाना का, हम नहीं कहेंगे
11: गलत गलत गाना। तो
10: जब आपसे सुनवाना है, हमको सुनना है, तो कव्वाली के माध्यम से हमारे लिए सही रहेगा।
11: जी जी बिल्कुल।
10: हाँ, तो कोई सुनवाइएगा। एक दिन भारती जी बोले थे, आप भी मेरे गाने में चॉइस का कोई बजाइए ना, तो कह रही हैं कि कौन सा, आखिर कोई नाम फिल्म का तो बताइए। ये वो हमने कहा कि बहुत पुराना फिल्म है, एक हंटर वाली, एक सजो रानी, ढूंढते रहिएगा, है ना।
11: तो सुनाई थी
10: ना, तो वो सजो रानी का सुनाई है एक गाना, सुना भी है, तो वो भी मेहनत कर रही है,
11: करना ही पड़ेगा।
10: आप थोड़ा थोड़ा बताते रहिएगा।
11: बताते हैं कुछ।
10: रख रहा है मैडम,
11: ठीक है।
10: सलाम अलैकुम।
11: वालेकुम सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कॉल किया।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर फोन अप, हेलो, पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, Now pick your phone up.
9: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट RJ सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
10: नमस्ते।
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: बालवीर सुंदरपुर
9: जी, कैसे हैं बालवीर जी?
10: ठीक है, अपन बताइए।
9: हम भी बढ़िया हैं।
10: बारिश हो रहा है क्या? उधर
9: कल हुई थी, आज तो नहीं हुआ है।
10: इधर तक बहुत ज्यादा हो रहा है।
9: चलिए बढ़िया है, तो आज आप इंजॉय करिए बारिश।
10: जी जी जी जी, खातरी ना खोल बरसा भीगे ना, खातरी खोल ना बरसा, सही है गाना पुराना।
9: एक बार और बताइए, आवाज कट रही है।
10: खातरी ना खोल ना बरसा भीगे ना जाना, नेटवर्क भाई ने पकड़े,
9: गाना डेडिकेट भी करिएगा। चलिए तो प्ले करे गाना आपका। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, इसमें कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से हैं?
0: अफ्ताक अलम बरारी अरकेर।
1: जी, कैसे हैं अफ्ताक जी?
0: अब ठीक है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। और सर बताइए, घर परिवार में आपके सभी लोग कैसे हैं?
0: ठीक है, आप घर में?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: दिन का कैसा हालत है?
1: दिन का हालत तो जैसा आपके उधर है वैसा ही है, ज्यादा दूर पे थोड़ी है।
0: बहुत गर्मी है।
1: गर्मी तो काफी है, हवा भी नहीं चल रहा।
0: गाना सुना दीजिए।
1: जी, गाना सुना देंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: नाज शरीफ।
1: तो नाज शरीफ अगर आपको याद हो तो दो लाइन गा के आप ही बता दीजिए।
0: नहीं मैम, आप नाम उनसे प्लीज।
1: देखिए, नाज शरीफ के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो अगर आप बता दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा।
0: मराबा मराबा या मुस्तफा
1: गा के बता दीजिए।
0: उतना नहीं याद है मैम।
1: नहीं याद है? अच्छा, चलिए ठीक है,
0: आपने बता दीजिए।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी करिएगा नाज शरीफ।
0: जी मैम, सब कोई।
1: चलिए तो प्ले करेगा।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: तो छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो 90.4 FM पर।

0: नमस्ते,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम्यू 90.4 हमें।
0: मेरा नाम शोभा पांडे है। मेरा नाम शोभा पांडे है, गोपालगंज से हाजीपुर से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, तो
0: गाना सुन रहे हैं।
1: जी जी, कौन सा गाना सुनवा दे बता दीजिए आपको।
0: बाघवा आइल बा
1: टुनटुन यादव का।
0: क्या
1: टुनटुन यादव के आवाज में है वही ना?
0: हाँ हाँ हाँ वही।
1: सुनाना भी है
0: आपको और पूरे रेडियो रिम्यू परिवार को और मेरे भाई बहन है।
1: चलिए कुछ ले करेगा ना।
0: ओके
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, माय चॉइस में कॉल।
2: बोला।

0: जी प्रतापका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: नाम तो हरेंद्र प्रसाद पड़ेगा
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं हरेंद्र जी?
1: बक्सर से।
0: बक्सर से
1: राकेश जी, भारती जी आपके पास कॉल किए थे बक्सर से?
0: अच्छा हाँ, राकेश भारती जी के मित्र बोल रहे हैं।
1: कॉल आया था आपके पास?
0: हाँ हाँ, बात हो चुकी है उनसे।
1: पार्टी दे रही है आप?
0: अच्छा, पार्टी चाहिए आपको भी?
1: चाहिए ना, हम तो साथ में है।
0: तो बोले हैं तो उनसे कि पार्टी उधार रहा, जिस दिन मिलेंगे उस दिन पार्टी देंगे। अब ऐसे तो फोन पे नहीं होगा ना, आइए कभी गोपालगंज तो पार्टी देते हैं।
1: आएंगे, हम भी आएंगे साथ में उनके साथ में। वो हमारे जीजा जी है।
0: स्वागत है आप सभी का गोपालगंज में।
1: वो राकेश जी मेरा जीजा जी है।
0: अच्छा, जीजा जी है। ओहो, फिर तो बढ़िया है, तब तो साथ में आना बनता है।
1: साथ में ही आएंगे।
0: आइएगा तो पहले बता के आइएगा ताकि हम भी रेडी रहेंगे।
1: सही, एक्टिव रहेंगे। सही, और सब सुनाइए, सब ठीक है? खाना पीना हो गया?
0: सब बढ़िया है, खाना पीना खा के ही आते हैं घर से।
1: हम लोग का भी सही है।
0: तो गाना कौन सा सुनवा दे बता दीजिए।
1: सुनवा दीजिए नीलकमल का कोई भी गाना।
0: नीलकमल जी का कोई भी गाना? अच्छा, और डेडिकेट भी से रहेगा, एक तो भारती जी रहेंगे।
1: पूरा अरेंजिंग रेडी और जितना भी है आप भी है सब कुछ।
0: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
1: तो ठीक है, प्ले करिए।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा,

0: रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7055006144 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: तो छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
0: मनीषा कुमारी तरह सिंह
1: जी। कैसे हैं मनीषा जी?
0: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: अभी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
0: अभी तो कॉल लगा रही थी, खाना खा के अभी और कॉल लगा रही थी आपके पास।
1: तो कॉल लग गया ना अभी?
0: जी मैम। आपका खाना हो गया है?
1: हाँ जी, मेरा खाना हो गया, खाना पीना खा के आए हैं, क्योंकि अब आप लोगों से बात करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना।
0: चलिए ठीक है।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: आप भारती मैम बोल रही हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं?
0: पहचान
1: कोई बात नहीं,
0: सब बढ़िया है ना?
1: हाँ जी, सब बढ़िया एकदम। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: सब कोई ठीक है घर परिवार।
1: चलिए,
0: तो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ बढ़िया एकदम, मस्त प्रकार से बिंदास है।
0: चलिए ठीक भी रहना चाहिए।
1: तो गाना कौन सा सुनवा दे बता दीजिए
0: मैम? अपने पसंद का कोई सुनवा दीजिए।
1: तो ये गड़बड़ हो जाएगा।
0: आज सुनवा दीजिए।
1: आज सुनवा दें?
0: हाँ
1: ठीक है, सुनवा देंगे। इतना बताइए कि आपको किसकी आवाज में सुनना है, कुछ तो हेल्प करिए आप।
0: नेहा कक्कर की आवाज में सुनवा दीजिए कोई अच्छा वाला। दिल गलती कर बैठा है।
1: दिल गलती कर बैठा है, ये तो उसका है ना, जुबिन नौटियाल का है ना?
0: हाँ, वो भी गाया है और नेहा कक्कर दोनों।
1: नेहा कक्कर, हाँ। चलिए तो वो गाना प्ले कर दें।
0: जी मैम।
1: जी, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: जी मैम, अपने घर में सब कोई को और आप और रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और भारती मैम को।
1: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: जी मैम।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमाइ चॉइस में कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: हाँ जी, सोनी जी या भाटी जी?
1: सोनी जी बात कर रहे हैं, आप राकेश भाटी?
0: हाँ जी।
1: जी कैसे हैं?
0: बढ़िया संजय
1: जी। अभी क्या हो रहा था, खाना पीना हुआ?
0: हाँ खाना हुआ, अभी खाना खा करके अभी बैठ के फोन लगा रहा था, लग गया।
1: चलिए बढ़िया बात है कि फोन लगाया और लग गया।
0: कब से कितने दिन से बातें नहीं हो रहा था भाटी जी से? बात
1: आज सोचे कि हम ही बात कर ले, थोड़ा काफी दिन हुआ सभी लोग से बात की है। ऐसे तो मुलाकात होता ही है लेकिन बात करने का अलग मजा है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: हाँ, है। हम कब से सोच रहे थे कि सोनी जी से कब बात।
1: चलिए बात हो गया, तो गाना कौन सा सुना दे आज?
0: गाना सुनना था हमको, पुराना फिल्म लगाना है अंदाज फिल्म का, तो हिंदी सॉन्ग है आएगा मजा बरसात का, उसी में लगाना है।
1: आएगा मजा बरसात का,
0: अंदाजे का लगाना है।
1: हाँ अंदाज का
0: ही है, वही वाला सुनना था।
1: सुनवाना भी है?
0: हाँ सुनवाना तो सब, हम लोग 3 आदमी है साथ में, हरिंदर जी है, पप्पू जी है, हम है, बलराम जी है, मंगलू यादव है, और अपना ग्रुप है 4-5 आदमी का। हाँ तो सब लोग में मतलब हम ही एगो मतलब मैसेज वैसेज या सब कुछ करते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या फिर करो, आपका फोन लग जाता है या आपका फरमाइश पूरा हो जाता है, हम करते हैं तो 1 सप्ताह लगता है।
1: ऐसा नहीं है, होता है कभी कभी किसी का कॉल जब बज जाता है ना तो वो कॉल बार बार बजते जाता है।
0: हाँ नहीं भोजपुरी है ना मैसेज वाला में, तो उसमें हम मतलब दूसरे दिन पर मैसेज करते हैं तो हमारा तो बज जाता है, उन लोगों का नहीं बजता। उन लोगों का होता है कि आपका 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ है।
1: नहीं तो आप 1 सप्ताह बाद ही मैसेज करते हैं ना, फरमाइश देते हैं।
0: हाँ तो वही हमसे तो मतलब शिकायत कर रहा था कि आपसे क्यों आपका फरमाइश बज जाता है, हमारा नहीं बजता है।
1: कोई नहीं खुद बच जाएगा।
0: तो हम बोले कि हम तो भाई पुराने लिस्नर है, हमारा तो बजेगा ही बजेगा।
1: अच्छा चलिए बात होगी फिर,
0: ठीक है।
1: और भी कॉल लेना है?
0: और सुन जी बढ़िया बना।
1: जी जी सब बढ़िया है एकदम।
0: बर्थडे वाला नहीं मिला।
1: अच्छा बाकी रहता हूँ उधार, जहिया भेट हो तहिया खा ले।
0: ठीक है,
1: अब फोन पे तो नहीं दे सकत।
0: ना बोल सही बात,
1: जहिया गोपाल का जाए तहिया दे दे पार्टी। ठीक
0: है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सोने कॉल के लिए।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
12: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
16: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट RJ सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
17: नमस्कार मैम।
18: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
17: धनेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
18: जी कैसे हैं धनेश जी?
17: आज आवाज बदली बदली लग रहा है, कौन बोल रहे हैं?
18: जैसा हम नहीं पहचान पाए वैसे ही समझिए।
17: अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। आज आवाज बदली बदली लग रहा है ना। चलिए, और सब
18: बढ़िया है?
17: आज मौका मिल गया?
18: हाँ मौका मिल गया, सही बात कर ले, ज्यादा दिन हो गया।
17: मैं भी याद किया था ना।
18: हाँ हाँ,
17: मैं भी आज याद किया था कि आज आप ही आ जाओ, थोड़ी बात हो जाए।
18: हाँ बोलते हैं ना, याद करो सच्चे दिल से तो वो हो जाता है।
17: हाँ जिस दिन, हाँ ये तो माना हुआ बात है, जिस दिन याद किए हैं जिस दिन आप मिले हैं, ऐसी बात नहीं है।
18: आप दिल से याद करते हैं इसीलिए।
17: हाँ हाँ, उस दिन भी याद किया था तो मिले थे, आज भी याद किए हैं तो मिल ही गए,
18: ये तो और भी अच्छी बात हो गई।
17: तो आज बारिश थोड़ी सो रहा है कि नहीं?
18: आज बारिश नहीं हुआ, आज तो धूप निकला हुआ है काफी कड़ाके वाली।
17: धूप निकला हुआ है तो उधर से बारिश खत्म करके इधर भेजना चाहिए, इधर मर रहे हैं हम गर्मी में।
18: हम तो भेज दिए हैं, हो सकता है कि रास्ते में हो।
17: मैं थोड़ी बहुत आई थी, बुंदा बूंदी तो रात में आई थी। मैं सोचा कि सोनी मैम बोल रही थी कि भेज रही हूँ इधर से, तो भेज दिए लेकिन हुआ ही नहीं।
18: अब उधर जाते जाते रास्ते में जाते जाते खत्म हो गया होगा पानी, बादल का सारा।
17: खत्म हो गया होगा, दूर पड़ता है ना।
18: दूर भी तो है काफी।
17: चलिए आप सब ठीक है?
18: जी जी सब बढ़िया है। तो बता दीजिए गाना कौन सा सुना दें?
17: आप सुना दीजिए बबीता सागर के ही, लेकर अच्छे में गिलवा टूट जा रहा है वह सुना दीजिए।
18: अच्छा बबीता सागर क्या है?
17: हाँ
18: ओके,
17: ये सुनाना है आपको और भारती जी को। हाँ, और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सारे सुन लेंगे।
18: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
17: हाँ प्ले कीजिए।
18: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दीजिए।
0: मैं अहमद अली सर नंबर एक से। आप कौन हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडिया में।
0: आपसे बात करके बहुत दिन हो गया मैम। ऐसा जगह काम कर रहे हैं सारा नेटवर्क नहीं लगा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है।
1: नेटवर्क आजकल बहुत इशू कर रहा है।
0: तो ऐसा अंदर काम है ना मैम, तो भी नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत अभी दिन भर दिन नहीं लगता है, तो भी नहीं सुन पा रहे हैं। क्या करें?
1: कोई नहीं, जब समय काम भी जरूरी है। काम
0: सबसे जरूरी है मैम, काम से ही सब है।
1: काम बिल्कुल जरूरी है। काम पहले काम, फिर उसके बाद कुछ भी है।
0: अच्छी है ना?
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम लोग तो अच्छे हैं। आप कितना दिन हो गया आइए? पांच दिन तो सो नहीं सुन रहा हूँ आपका।
1: कोई नहीं, काम पहले निपटा लीजिए, फिर सो आराम से एकदम बिंदास सुनिएगा।
0: फोन करने के लिए काम छोड़ के बाहर निकले थे।
1: तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
0: आज हमको गाना सुनवाइए तारिंदी बाहो मूवी है, उसका गाना सुनवाइए। कितना सपने है, कितना आराम है, पाप में तुम हो, यहाँ सुन जाम।
1: जी, और सुनवाना भी है?
0: हाँ, सुनवाना तो है। सबसे पहले तो आपको सुनवाना है और भारती मैम को, अखरी को, और चंद्रान भाई को, और दिलीप भाई को, राजे जी को, और जो भी रेडियो यहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
1: चलिए ठीक है, फिर बात होगी।
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल किया।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: नमस्कार। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार
12: जी। नमस्कार, क्या हाल चाल
11: जी? मैं यूट्यूब बदानी जी, पप्पू यादव
12: जी। कैसे हैं पप्पू जी?
11: बहुत बढ़िया, आपसे काफी दिनों बात हुई। और क्या हाल है?
12: सब बढ़िया एकदम।
11: बारिश हो रही है आपकी तरफ?
12: कल हुई थी,
11: आज नहीं हुई है।
12: नहीं, आज तो मौसम गर्मी वाला है, एकदम धूप निकला हुआ है।
11: ओहो, हमारी तरफ तो अभी 6 बजे से काफी बारिश हुई है।
12: इधर से बारिश अब आप लोगों की तरफ चली गई है।
11: आपने रहेगी बढ़िया।
12: कल काफी बारिश हुई है यहाँ, दिन भर पूरा दिन बारिश हुआ है कल 9 बजे।
11: तो बढ़िया, पहले आपने फर्स्ट बाजी मार दी है।
12: नहीं, इससे पहले कहीं हो रही थी बारिश, तो हम बोले थे कि वहाँ से भेजी है, स्कूल में बात हुई थी।
11: अच्छा,
12: फिर कल यहाँ हुआ तो कल बाकी लिस्टनर लोग बोल रहे कि हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम बोले ठीक है। तो आज कहीं दूसरे जगह हो रही है बारिश।
11: चलिए, और आप प्रार्थना करवा लिया करेंगे जब भी एड्रेस हुआ करें, बारिश दिक्कत हुआ करेगी।
12: बिल्कुल, प्रार्थना तो कर ही रहे थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश बहुत जरूरी था, बारिश होना
11: बहुत जरूरी, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, फेल हो गए
12: थे, फसल के लिए भी जरूरी था,
11: बहुत जरूरी है, क्योंकि धान वगैरह गाड़ जाएंगे ना ये।
12: हम लोग को तो गर्मी लग रहा है, तो हम लोग बहुत सारे उपाय है कर लेंगे, लेकिन फसल के लिए कोई उपाय नहीं है।
11: बिल्कुल, आप तो एसी में बैठे रहते हैं।
12: हाँ, तो अभी जब तक ऑन एयर है एसी में रहते हैं।
11: हाँ, जब तक ऑफ एयर होते तो थोड़ा बाहर हो जाते हैं,
12: बाहर हो जाते हैं एसी से,
11: फिर ठंड रहते हैं।
12: एसी में तो ठंड लगता है।
11: हाँ, सही बात है। एसी में कितना टेम्परेचर हो जाता है? माइनस
12: में नहीं रखते हम लोग, नॉर्मल रखते हैं। फिर माइनस में रखने के बाद पता चला बाहर निकलने के बाद बीमार हो जाएगा आदमी ना, सरद गर्म हो जाएगा।
11: ये बात तो सही है, दिसंबर का आनंद लेना है तो माइनस करो।
12: हाँ, तो दिसंबर का आनंद नहीं लेते हैं, बस नॉर्मल रखते हैं कि गर्मी का पता ना चले।
11: बिल्कुल सही बात है, या तो 20 रखो या फिर 24 रखो।
12: हाँ, वैसे ही रहता है, 20 से 24 के अंदर रहता है, उससे नीचे नहीं आता।
11: सही बात है। और अब अपने स्टाफ कितने आ गए? अब नए आ गए हैं?
12: नहीं, अभी है स्टाफ है, तो अभी तो रिकॉर्डिंग भारती जी ही करती थी, आज सोचे काफी दिन बाद चलो आज हम करते हैं, एक घंटे देखते हैं।
11: अच्छा, भारती जी मेरी बात हुई थी
12: तो ज्यादातर वही बात करती है आजकल रिकॉर्डिंग।
11: तो आज लाइव शो करेंगे,
12: आज भी करेंगे।
11: अच्छा, बढ़िया बात है। अभी गर्मी भी रिकॉर्ड बहुत तोड़ दिया था, एसी वगैरह सब फेल हो गए है ना, शॉर्ट बहुत हो गए थे एसी, तब ज्यादा दिक्कत होती है आउटरों में, उनमें बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं वो।
12: हाँ, वो सब हीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति ठीक है अभी। तो गाना कौन सा सुना दे?
11: गाना आज मेरे ना है, मैं 18 वर्ष की हो गई, मैं क्या करूँ, मेरी चुंदरी लंबी हो गई, हल्का यानी सॉन्ग है सुदीप नारायण जी, ये सॉन्ग सुनना है।
12: बड़ा ही गाना डेडिकेट भी करिएगा किसी को।
11: बिल्कुल, स्पेशली आपके लिए डेडिकेट रहेगा, फिर आपसे काफी दिनों में बात हुई है, अभी सोता काफी बात कर रहे थे, बहुत बिगी जा रहा था, बहुत मुश्किल से कॉल लगा है।
12: बजने के बाद सभी लग जाते हैं कि मेरा कॉल लग जाए, मेरा कॉल लग जाए।
11: अब वो लोग ट्राई कर रहे होंगे, आपके पास तो बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे।
12: बहुत सारे तो वेटिंग बंद करके रखते हैं, क्योंकि परेशानी होती है रिकॉर्डिंग करने में।
11: हाँ, ये बात है।
12: हाँ, तो बंद रहता है, जैसे ही कॉल करता है तुरंत दूसरा कॉल आ जाता है।
11: हाँ, वो तो तुरंत ही, वो तो लक बाई चांस है। और घर परिवार में आपकी सब ठीक है?
12: जी जी, सब कोई बढ़िया है,
11: बढ़िया ही होना चाहिए।
12: तो बात बहुत हुई, फिर बात होगी।
11: बिल्कुल
12: जी, और भी लिसनर है वो लोग परेशान हो रहे हैं।
11: हाँ बिल्कुल, स्पेशली आपके लिए डेडिकेट रहेगा, और हमारे जितने श्रोता सुना लाइव सुनेंगे उनके लिए, सबके लिए डेडिकेट रहेगा।
12: ओके, चलिए, तो प्ले करेगा ना?
11: जी बिल्कुल
12: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-556-97-644।
9: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
10: Hello? हेलो मैम, सलाम, नमस्कार।
11: जी नमस्कार, बहुत
10: जी मैम, कैसे हैं?
11: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: हम हिमाचल जटा सोनी में बोल रहे हैं।
11: जी जी
10: मैम, अभी कॉल कट गया, रिंग हुआ पूरा।
11: इधर तो कॉल आया ही नहीं है।
10: नहीं मैम, रिंग हुआ था लेकिन कट गया ऑटोमेटिक।
11: हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, इधर कॉल नहीं पहुँचा है क्योंकि अभी दो कॉल हम रिकॉर्ड किए, आपका तीसरा कॉल है।
10: जी मैम, हम बहुत ज्यादा कोशिश में थे कि पहला कॉल लग जाए, सोनी मैम से बात हो जाए।
11: चलिए पहला नहीं, खैर लेकिन बात तो मेरे से हो गया।
10: मैम तो कितना नंबर पे हैं? हम
11: तीसरे नंबर पे हैं। आप
10: जी ये बताने के लिए धन्यवाद।
11: जी
10: आप सब बढ़िया मैम? नाश्ता पानी हो गया?
11: हाँ जी, खाना हो गया है।
10: और भी अच्छा है ये बात। जी मैम, आप तो बहुत अकेले मतलब दोनों शो करती हैं?
11: नहीं दोनों नहीं करते, अभी तो भारती जी आ गई हैं तो हेलो माय चॉइस शो कर लेती हैं। आज सोचे काफी दिन हो गया है तो मैं बात कर लूं।
10: मैम भोजपुरी एक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से चलाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर संडे को टाइम निकाल कर जुड़ते हैं।
11: जी जी धन्यवाद, क्या आप टाइम निकाल के जुड़ते हैं हमारे शो से?
10: जी मैम, बस आपका तो अच्छा चलता है इसलिए आपको पुराना बोल रहे हैं।
11: जी जी
10: जी मैम, तो मुझे गाना सुनना था।
11: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुना दे आपको?
10: सबसे अलग ही गाना सुनना है जो सबको पसंद आएगा, शीशे का दिल, ऐसा ही कुछ है ना गाना,
11: पत्थर का जमाना था।
10: हाँ ऐसा ही कुछ गाना है, बहुत पहले सुने थे, आपको भी सुना दे हम भी सुन ले।
11: काफी बढ़िया गाने की फरमाइश है और काफी दिन बाद फरमाइश पहुँचा है इस गाने की।
10: मैम तो ले कीजिएगा पूरा फुल सॉन्ग।
11: ओके फुल सॉन्ग प्ले करेंगे।
10: मैम तो कब तक बज जाएगा? जाते जाते बता रही है
11: 5 से 7 के बीच में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारी चॉइस में कॉल।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हेलो माय चॉइस से विदा लेने का। आपकी फरमाइशों और प्यार ने इस महफिल को और भी खास बना दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी आरजे सोनी को जाने की इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, लेकर आएंगे आपकी पसंद के और भी खूबसूरत गीत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जे. शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको

0: अजंता सिनेमा रोड गोपालगंज और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
3: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी अपन बोली के पहचान यानी की रेडियो रिमझिम 90.4 FM और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गलवानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने क्या आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

0: ये धुआंधार मुकाबला गायक विजय लाल यादव श्यामदेव प्रजापति के बीच में और एक खानदानी गीत अपने बंसावली का गीत भाई बेचू यादव जी के देख रेख में कैसे ठोरल बा। उम्मीद बा कि आप लोग पसंद करब। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखा श्यामदेव भाई।
1: अरे वाह वाह।
0: जैसे गुड़ का पाग होला, खाना का भी पाग होला, वही तरह बिरहा और संगीत का भी पाग होला। एक चिन्ह वाला चिन्ह। और अपने श्रोता भाई लोगन का देख खुशखबरी हो के एक खानदानी वीर रस का बिरहा बड़ा दिन से आप लोगन का भी मन रहल, तो हमारे बेचू भैया का भी मन रहल कि हो जाए।
2: क्या बात है?
0: अब भैया तब हो जाए।

0: एगो विराग बहुत पहले गौले रही रतन बोलारी कैल जब भोरिक के नीचवा भोरिक कैल गर्जनवा समर के बीचवा अब भोरिक जब बोलारी के छक्का छोड़ा दलन है अब करे बाद के बाद बड़ी मौके का बात है तनी आनंद लिया ना आप लोग तर्ज लगल और तर्ज में भी एक सीख हो कैसे श्याम दो भाई
1: अरे बा, बा, बा।
0: देखा।

अपनी कुछ ऐसी आदत है। क्या आदत है?

0: कहानी का शुरुआत भइल। आजकल विवाह में जौहरी सर चलल हो, इतना गवैया कस के वो जौहरी सर पर चिल्ला दे कि सामने अगर कायदे से बैठ के आदमी सुन ले तो कोमा में चल जाए। एक गवैया इतने गावत रहल, इतना चिल्लाल के एक ठे बुढ़ऊ सुनत रहल, गिरलन पट से कोमा में चल गिरल। उठा पठा के हॉस्पिटल गइलन, डॉक्टर पूछलन भैया दादा कोमा में कैसे गइलन, कल का बताओ जब फलाने गावत रहल जौहरी शहर पे इतना कस के जिड़ अल कि वह गिरल हूँ दादा तब से ही हाथ गोड़ हिलावत ना हूँ कोमा में हूँ। डॉक्टर कहलन कि भैया लोहा के लोहा काटा ला, वही गवैया के बोलावा फिर गवावा एक बेर। ए भैया चारठे नर्स अपन दादा के धैले हैं, केहू बोतल लेके दौड़ल बा, केहू पानी लेके दौड़ल बा, केहू दवाई लेके दौड़ल बा। गवैया बोलावल गल सट्टा उट्टा करके आल, कह भैया 5 मिनट गाई चाहे 25 मिनट रुपया हम बराबर ले, कहे दे भैया। आयल भैया चिल्लाए शुरू कैलस, जब एक बेर जोर बढ़लस अलाप वही कान के हा, तब बुढ़ऊ दादा के अंगुरी तनी सखाली हिलल बिछली। मचल हल्ला के रे भाई तो दादा कोमा से लौट गई, उफ कह के बैठला हे प्रभु हो बड़ा देरी ले सुतली नाथ। एक बाद उठा के लोग ले जाए लगल, गवैया पैसा लेके चले लगल, तो कंपोटर डॉक्टर आए के गवैया के कालर धर ले, कहला कहाँ जा चुका, कहला पैसा मिल गया हम दादा को कोमा से बाहर कर दिए अब हमें जाने दीजिए। कहला दादा के कोमा से बाहर कर दिला पैसा लेके जात हुआ, तो दादा तो कोमा में से लौट लन है, चाठे नरसवा कोमा में चल गए है इनके के उठाई। अब चलना चार जने के शांति फिर चिल्ला, तो सुना वाले भाई लोगन से निवेदन हो कि ये कोमा में भेजे वालन से सावधान,
1: कुछ हरकत लिया वालों का।
0: हाँ जौहरी सर
2: क्या बात,
0: लेकिन इनमें कलर है।
2: क्या बात है।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: कलर का भाव डबल हुई। छिड़ गया।

0: सही हो, मार दे भक्त दे मजा आ जा राजा। साफ साफ फरियागल होई, नहीं तो आजकल चलल हो जौहरी शहर में खटखाट खूट खटकीटा, खटखाट खूट खटखूटा, तमाम कुल चलल हो। गवैया इतना हाली हाली गा के गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ कर देते हूँ, लेकिन आप लोगों के समझावे के नहीं पड़ी, मजा आप लोगों के आगल हुई। जाके पूछलन है जमुनी से भोरी कि बाबूजी हमार जौने देवी का पूजा करत रहलन, वो देवी का मंदिर कहाँ हो बतावा हमके।
1: क्या बात है,
0: रोवे लगलिन जमुनी, कहले कि हाई करेजा के जौन दबल आग है के उठावा मत। तर्जवा उहे लग गई, ये हमारे बिरह से शुरुआत भइल, हमारे ही बिरह तक सीमित रह गई, काहे कि एकर बोझा थोड़ा गढ़ू है। वह गीत बा जौन होली में आज के 5-6 साल पहले मशहूर गायिका मशहूर कव्वाला रुखसाना बानो से अपने कैसेट में गवले रही।

साफ साफ जमुनी मतारी बता दे कि चल जा उजरी बन में पोखरा हो, वो पोखरा में घड़ीला तोरे बाप के हाथ से फेंकल हो, वो घड़ीला के निकाल के और वही घड़ीला से पानी देवाम तो दुर्गा माई प्रगट हुई। प्रगट हुई तो खड़ा मत रही शरण में गिर जी। एक बात और कहलिन है लेकिन हमारे उस्ताद वाली लग गई।

0: खानदान का गरिमा के बचाया।
1: वाह वाह वाह।
0: भोरी की जब सुनलस हो तब मर्दे के असली मर्दे के श्याम दे भाई बात काफी हो, उलट के तरेर के कोई आंख दिखा दलस तो वो कैसे बर्दाश्त करी। माइया का बात है लेकिन कैला सका जवान कि मरल सरी आज वीर बना लस फेटा।

0: माई बस बता देलू ना उजरी बन में पहुंचल हो और जाके लोरी कब्बेटवा बीर भोरी कुदल हो पोखरा में मंगरा घोड़ा खड़ा हो बाहर।
1: वाह वाह वाह,
0: समय बीता लगल समय बीता लगल निकलत नहीं बा पनिये में भा।
1: अरे वाह वाह,
0: मंगरा घोड़ा सोचे लगल कल लगत है अब गड़बड़ हो जाई। आयल काहे नहीं, तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल हो। कौन तर्ज?
2: ठक ठक।
3: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा ट्रिपल टी से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की, 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का ISPT से मलाही पकड़ी तक हुआ विस्तार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी प्रमंडलों में निगरानी के विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी, साथ ही प्रत्येक जिले में निगरानी थाने और सभी अनुमंडलों में निगरानी OP खोले जाएंगे। श्री चौधरी पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
10: प्रत्येक अनुमंडल में आप थाना बनाइए और सभी जिले में OP बनाइए, जिससे कि पूरी व्यवस्था नीचे तक जाने का काम हो सके। उसी तरह न्यायालय के लिए जो आपको अतिरिक्त सेट की आवश्यकता है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि पटना में विशेष न्यायालय निगरानी प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय पटना का 3 न्यायालय के एक अतिरिक्त सेट का गठन किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी विशेष न्यायालय का 3 न्यायालय का एक अतिरिक्त सेट गठित किया जाए।
9: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन के लिए TTT, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
10: इसमें हम लोगों ने TTT की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर ये अभियान चलाने से हम बिहार के लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे।
9: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कर्मियों को सतर्कता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने खेमनीचक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण भी किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार अब ISBT से मलाही पकड़ी तक हो गया है। पूरे रूट की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह दूरी 15 मिनट में तय होगी। ISBT से मलाही पकड़ी तक का किराया ₹30 निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने मेट्रो में यात्रा भी की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
9: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान आज तिरुपति में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
11: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं। पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
9: पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श में केंद्र राज्य सहयोग को मजबूती मिलने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर सुशासन, अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी ग्रामीण विकास के लिए सहायता मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों को सस्ती कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने पर 50% या 17,50,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत 50 कोल्ड स्टोरेज को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य है। यह योजना कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी वाले 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में लागू होगी। लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कोल्ड स्टोरेज संचालक बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीवी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। टीवी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में से अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले कई श्रमिक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 5 जुलाई तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी किए जाएंगे। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में पारंपरिक सौराठ सभा की आज से शुरुआत हुई। मिथिला की इस प्राचीन वैवाहिक परंपरा में बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से मैथिल ब्राह्मण परिवार विवाह योग्य वर और वधु के संबंध तय करने के लिए पहुंचते हैं। सभा में पारंपरिक पंजी व्यवस्था के अनुरूप वंशावली और गोत्र का मिलान कर विवाह प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभा स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के पौथु थाना क्षेत्र अंतर्गत भताई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से 2 छात्राओं की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बड़ियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाराही गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के सुखासन पंचायत में पटवन के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी आईटीआई के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 60,000 रूपये लूट लिए। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन के निर्देश पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 प्रखंडों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 3,000 लीटर पेट्रोल के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पेट्रोल की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई है। पेट्रोल के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, TCCC से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का ISBT से मलाही पखड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: वह गीतिया बा, अरे निबिया के डरिया कटोली बनवली।
7: क्या बात है
6: निबिया।

खोद के घड़ीला निकलला से आ वही चल लेके घड़ीला के जब भोरिक पहुंचल हो खाली धोती एक सुनी पहले बार अरे बागमती छाती हो पहुंचल हो दुर्गा माई के हन तो कहत बका मोरे खाने।

0: कुछ ना भयल, ना दुर्गा माई प्रकट भयलिन, ना भोरिक का मनोकामना पूर्ण हो चो। तलवार खींच लिया म्यान साहब और कहा कि सुना अब बर्दाश्त ना हुई। का कहले समास्टर,
1: अरे लड़ाई के करे बूते पर होई, हाँ लड़ाई के करे बूते पर होई, अरे गर्दन काट वीर चौरा पर दिया चढ़ाई, अरे चढ़ाई अरे चढ़ाई।
0: ए भैया किया प्राण का दान, बघेला काम हुआ न रत्ती काम, मगरा घोड़ा को ख्याल है आया बोहा वाली बन सकती का, क्यों भूल गई पूजा देवी बलिदान भाव वीर लोरी का, देवी दुर्गा दे गई दगा कट गया है शीश भोरी काम, जा स्वर्ग में देवी बन सकती दुर्गा पलने पर झूल रही, धिकारी बन सकती दुर्गा को फर्ज को अपने भूल रही, अब होरिक को किसी तरह भी उजरी बन में जिलाना है, बोली है दुर्गा बन सकती से पहले ब्रह्मा को मनाना है। अगर अब होरिक अपन गर्दन कटले हो ककरे बदे, बन सकती कहली ना धिकारा लेन के है दुर्गा तोहरे चौर पर तोहरे बदे गर्दन कटले हो। दुर्गा जी मूक दर्शक बन के सुनत थी, कहा कि तब तो ब्रह्मा जी के मनावे की पड़ी, गीत तो बड़ी पुरान वाले की लहर कर हो आए है।

0: दुर्गा माई धीरे धीरे पहुंच गई ब्रह्मा जी के यहाँ, जाके ब्रह्मा जी से कहलिन हाथ जोड़ के,
1: बोर के दे दो जीवन दान, बोर के दे।

कल ना मन बुक है ना मन अब कह तब जा, ये ब्रह्मा जी के लेके जा। ब्रह्मा जी के लेके दुर्गा जी पहुंचल हैं उजरी वन में मंदिर पर, जहां भोरी का अपन गर्दन काट के चढ़ौले हो तो बिरहा में तरत फिर लग गई। गर्दन सटावत हो, कहीं भाव स्थल पर गौर करी।

का चाहते हो कहे तो गर्दन ना सटी। विश्वकर्मा जी दुर्गा जी लाल होते विश्वकर्मा जी पर, कहा नाव छो मत पढ़ावा जी आवा हमारे भक्त के, कह मजरी का दूध चाहिए मौके पर, ओकर दूध अगर मिल जाये तो जी जाइए नहीं तो न जी पाई। तब

0: अब बबुआ संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
14: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
13: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
14: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
13: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
15: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
16: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
15: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
16: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
15: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
16: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
17: मजरी सोचले उमर पुरनी, अरे मजरी सोचले उमर पुरनी राम।
18: बनारसी ढुनमुनिया श्याम दे भाई, मजरी सोचे यही का तनी सा चोरी करके या तनी सा यही में से काट के एगो गीत गौले रही जो सुपर हिट रहा। गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजिया।

मरद कबले दुलार ढेर करल सैया बेदर्दी कटिया करावे हमसे ढोवावे बोझा।

है भाव जो कभी कभी, वह भाव उठे हर रोज नहीं। बारे कभी उठता है भाव जो कभी कभी, वह भाव उठे हर रोज नहीं। बोले भोर की लानत बंसज को पूर्वज की करे जो खोज नहीं। बेटवा जन्मे तो सपूत हो, कपूत हो तो बल्कि जन्मते मर जाए। कभी जी भाव लिखलन है कहा हमारे बाबूजी बेशक उनसे मिलना होगा। बोली दुर्गा दुर्गम रास्ता है भयापुर में चलना होगा। दुर्गा माता के साथ चले या भोरी का अच्छा मौका है। आंचल में छिपे या भोरी को यमदूत चंद्रजीत रोका है। एक यमदूत है चंद्रजीत नाम का, दुर्गा जी छिपा के आंचल में भोरी के लेके जाते हैं, रोक दलस क्षमा हो। यहाँ जंग जीत करके हमसे अभयापुर में जा सकते हो। यहाँ मुझसे लड़ाई करो, लड़ने का हौसला हिम्मत हो तो भुजबल आजमा सकते हो। अगर लड़ने का हौसला है हिम्मत है तो लड़ाई कर लो। अब होरी कूद कर लेके तेगा कह दुर्गा माई से हाथ जोड़ते हैं, 2 मिनट रुका, बड़बड़ लोन के देख ली, अभी चलन हो इन्हें भी देख लो रही। तो कभी जी भाव लिख रहे कैसे, भाई

अब और ही कूद गया चरवा में से दुर्गा माई से कहला माई तनी बगल में खड़ा हो जा देख ले वादा तनी यहू के एक बात आओ बात बात बढ़ गई बात फिर का दोनों गरमाई हो अब पटक के चल गया छाती ऊपर अब होरी का कला दिखाई हो अरे बात

कूदल है आंचल में से और कहला सा पटक के छाती पर सवार जब तलवार लगौला सा चंद्रजीत यमदूत कहां पर लगल कजा भैया जीत गिला दिखाए आगे का भाव तनी गरमा था मास्टर

0: जब पहुंचल है व्यापुर में दुर्गा जी ले जाके देखल नहीं तुहार बाप हम लोरी नर्क का दुख झेलत रहलन।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: जाके ब्रह्मा जी से पूछल सो के हमार बाप इतना बड़ा सरदार, इतना बड़ा बहादुर और नरक का दुख भोगत हुआ कहा। ब्रह्मा जी बतौलन है, ब्रह्मा जी बतावे तोरे बाप इतना बड़ा अधर्मी, कोई धरती पर नहीं रहा। एगो बात हमार सुन ला, का पूछा गया तो जाके उन्हीं से पूछ ला। अरे अपने बाप से पूछ ला तो नरक भोग थून। ए भैया आंख में आंसू हो, कलेजे में ज्वालामुखी हो, भोरिक पहुंचा है आ जाके बाबू जी के आगे खड़ा भयल हो। यहाँ बिरादरी वाली दुलाइन लग गए मास्टर। ए भैया।

0: सुनीला के बड़ा बड़ा लोहा जितला। हमारे मौसी का ब्याह है भुला गिला। भोरिक रो कबास सुन के
1: क्या बात है,
0: लोरिक रोवत हो असली खड़ी हो गई।

0: फूल का ले ली।
1: वाह वाह वाह।
0: लेकिन एगो शादी भुला गई। एगो शादी कवन भुला गया। तब ब्रह्मा जी कहना अपने बड़ा बतियोला लोग यहाँ का बतौलन है मास्टर।

पहुंचल सुदर्शन बुढ़ऊ के सिंघल दीप में, जाए कहत मऊसा पार लगी कहा मऊसा सारे हमार ब्याह हुआ ना बोलते मऊसा पोसा कहाँ से रे कह सुना कह ब्याह हुआ करवावा याल है सुदर्शन बुढ़ऊ ताक के हंसा लगना कहलन का।

कब ढल गई उमर, निकलस तलवार कह ब्याह करवा नहीं, निकाल के आप आगे से घोड़े सब पीछे निकल जाई भक्क दे। सुदर्शन बुढ़ऊ के बरियाई से एठे कुर्ता उर्ता पहिरा के कह कि चला चले कोई, कह कहा बेकाम है हम कहा ले जाती, कह तो मौसिया कौन काम लायक बा, दोनों जाने बुढ़ौती में अपन सेवा बर्दाश्त करिया, बेकाम तो हमारे ख्याल पर गल हो। एठे एठे बुढ़ऊ दादा साइकिल से गिर गई लन, उनके पोता में घाव लग गई, डॉक्टर केहन गई लन, डॉक्टर कहला दादा चोट तो बड़ी खतरनाक लग गई है, गोली निकाले के पड़ी। दादा कहना बेटा रही फलवा बेकाम हो गए तो गोली रह के का करी, निकाल के फेंक दे भाई, आखिरी भाव हो।

0: श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
8: सुनो दिल से।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
13: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
13: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
14: क्या हुआ?
8: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
15: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
15: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
13: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
20: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
13: तो देर मत कीजिए,
20: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
21: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
22: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
21: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
22: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
15: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
22: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
15: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
22: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
15: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
23: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
24: भरोसे वाले से लेंगे,
23: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
24: और कीमत भी।
23: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
15: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
25: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
15: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
22: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
15: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
26: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
15: कॉल करें 85070-32042 पे।
27: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
28: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
27: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
27: संपर्क करें 9939365923।
0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: रेडियो रूम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशक के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान और अन्य सभी विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की वेबसाइट www.sctimst.ac.in। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 लेवल 6 का पद भरने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.narcoticsindia.nic.in। वेबसाइट पर रिक्तियां टैब के अंतर्गत सभी आवश्यक जानकारियां आपके लिए उपलब्ध हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2 रिक्तियां, जूनियर सुपरिंटेंडेंट 3 रिक्तियां, जूनियर असिस्टेंट 2 रिक्तियां, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 रिक्ति, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 1 और जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट BSBE के लिए भी 1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट www.iitdh.ac.in। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सक्रिय भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोर फैकल्टी हाईवेज, कोर फैकल्टी ब्रिज, कोर फैकल्टी पेवमेंट और कोर फैकल्टी सेफ्टी। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, आयु सीमा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी की वेबसाइट iahe.mort.gov.in। भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल 6 पद उपलब्ध हैं। कमांडेंट IAM IAF विमानपुरा पोस्ट बेंगलुरु में और पद का नाम है MTS। इसी प्रकार बहुकार्य कर्मचारी MTS के लिए शैक्षणिक योग्यता, वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा बराबर की परीक्षा। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
12: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
12: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
0: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
12: कॉल करें 85070-32042 पे।
13: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
14: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
13: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
15: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9939365923।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरल पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री

0: आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी

0: विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
4: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
5: क्यों, क्या हुआ है?
4: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
4: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड के आरोपी को 2.5 वर्षों के अंदर हो गई आजीवन कारावास की सजा, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आयुष्मान योजना की हर सुविधा, घर बैठे बन सकता है आयुष्मान कार्ड। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। तालू और कटे फटे होठों का इलाज करने के लिए 20 बच्चों की टीम को जिला प्रशासन ने किया रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल के लिए रवाना। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत और जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी हुआ स्थानांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, हत्या और SC ST एक्ट में सुनवाई करते हुए महज 2.5 वर्षों में ही आरोपी को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुना दी। इसकी आज पूरे कोर्ट परिसर में चर्चा होती रही। बताया जा रहा है कि SC ST के विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार की अदालत ने अभियोजन पक्ष के स्पेशल PP मोहम्मद परवेज हसन की प्रभावी पैरवी पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया गया। यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 530/2023 में, यानी 28/10/2023 में यह केस पुलिस ने दर्ज किया था और महज लगभग 2.5 सालों में ही अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले के अभियुक्त बादशाह यादव, पिता हरदेव यादव, साकिन नारायणपुर थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और ₹25,000 का अर्थदंड लगाया गया। बताया जा रहा है कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी आरोपी को भुगतनी होगी। गोपालगंज पुलिस ने प्रभावी अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन के साथ न्यायालय में अपनी सशक्त पैरवी की और इसी के परिणाम स्वरूप आरोपी को सजा हुई है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। हालांकि एक और मामले में आज अदालत ने फैसला सुनाया। यह भी मामला कटिया थाना क्षेत्र में ही हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इसमें भी आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि यह मामला 2020 में हुआ था और इस हत्याकांड में माननीय न्यायालय ADJ 10 की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और अभियुक्त जय श्री चौहान पिता स्वर्गीय बुनेला चौहान को अदालत ने सजा सुना दी। यह आरोपी बिशुनपुरा नंद शाह के टोला थाना कटिया का निवासी है। इनको IPC 302 के तहत दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। आर्थिक दंड जमा नहीं करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि न्यायालय में पुलिस के सशक्त पैरवी और प्रभावी अनुसंधान तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जयराम के द्वारा की गई पैरवी और साक्ष्यों को सुनते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए अब सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने योजना से जुड़ी लगभग सभी प्रमुख सेवाओं को सीधे WhatsApp पर उपलब्ध करा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान सारथी नाम से आधिकारिक WhatsApp चैटबॉट शुरू किया है। इसके माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन अपने मोबाइल से ही योजना की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सारण जिले सहित पूरे देश के करोड़ों आयुष्मान लाभार्थियों के लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी साबित होगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड बनवाने, पात्रता जांचने, अस्पताल की जानकारी लेने या शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग अलग कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। केवल WhatsApp के माध्यम से ही यह सभी सेवाएं कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो जाएंगी। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि कार्यालयों के प्रधान लिपिकों की भी समीक्षा बैठक की गई। इसमें विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार और जिले के सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कार्यालयों में संचालित प्रशासनिक कार्यों, अभिलेख संधारण, पत्रों एवं आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन तथा कार्यालय व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों एवं आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न बरतें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई तय होगी। अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इधर प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनिल कुमार ने कुचायकोट प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुचायकोट भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत की जा रही तैयारियों, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, आवश्यक दवाओं और जांच या मरीजों के पंजीकरण, उपचार और जागरूकता की गतिविधियों की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आज समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण तथा श्रम संसाधन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें उन्होंने सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाना हम सभी संबंधित अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत बड़ी पहल की। जिले के 20 ऐसे बच्चे जिनके तालू या होठ कटे हुए हैं और टोंग इत्यादि जो जन्मजात रूप से कटे हुए हैं, ऐसे पीड़ित बच्चों के इलाज और सर्जरी को लेकर विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। जिले के आज 20 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी के लिए पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित डंकन हॉस्पिटल में भेजा गया। सिविल सर्जन ने एम्बुलेंस से सभी बच्चों को रवाना किया, साथ ही एम्बुलेंस नियंत्रण पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिया गया। चिन्हित सभी बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। 2 जुलाई की सुबह 6 बजे तक जिला स्वास्थ्य समिति परिसर में एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी गई और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सर्जरी और चिकित्सकीय जांच पूरी होने के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान 20 बच्चे अलग अलग प्रखंडों से चिन्हित हुए हैं और सभी बच्चों को अस्पताल सर्जरी के लिए भेजा जा रहा है। आज कई जगहों पर सड़क हादसों की भी खबर आई। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 50 वर्षीय सुरेंद्र महतो की मौत हो गई। भवन निर्माण के लिए छड़ खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इधर बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास भी एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक के चपेट में आने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोपनी कर पैदल ही घर लौट रही थी, तभी यह हादसा हो गया। इधर हथुआ के मिर्जापुर बाजार में भी तेज रफ्तार कार का कहर दिखा। साइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 20 वर्षीय रियांश बताया जा रहा है, जो मिर्जापुर के ही निवासी थे, बाजार जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। आज गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी स्थानांतरण हो गया। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार का तबादला कर उनको पटना का शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया और गोपालगंज के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में अमरेंद्र कुमार पांडे की तैनाती हुई है। ये पूर्व में भागलपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। अब गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्पाद विभाग ने एक डंगा जांच चौकी के पास 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला विजयमल कुमार है, जो एक डंगा भगवानपुर गांव का ही निवासी है, और दूसरा अजीत चौहान, यह सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव का रहने वाला है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में शराब मिली है। दोनों की मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया गया है। इसके अलावा बढ़िया वार्ड नंबर 9 में भी उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्कर राजन कुमार को गिरफ्तार किया। यह बरौली के बढ़िया गांव का रहने वाला है। इसके पास से 7 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। सिपाया ढाला के पास भी उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई की और यहां राजन कुमार शर्मा को शराब के साथ पकड़ा गया। यह गोपालगंज शहर के राम नरेश नगर वार्ड नंबर 10 का निवासी है। यह महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से 686 लीटर देशी शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हथुआ जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और नए ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने रेल मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री को यहां के पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी सुनीता शाह ने पत्र लिखते हुए हथुआ और मीरगंज क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और साथ ही नए ट्रेनों की मांग को लेकर निवेदन किया है। इधर माझा थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गरजू गद्दी और पारस गद्दी हैं। ये दोनों माझागढ़ के गद्दी टोला के रहने वाले हैं। दोनों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कीर्तपुरा गांव में एक फटा हुआ दूध से बना खाद्य पदार्थ खाने से एक ही परिवार के 10 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। आनन फानन में सभी को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सबका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अनिल सोनी और रजांती देवी के घर से फटा दूध से बना हुआ खाद्य पदार्थ इनके घर आया था और घर के सभी लोग उसका सेवन किए और देखते ही देखते सभी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द, उल्टी और कमजोरी की शिकायत होने लगी, जिन्हें तत्काल सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज के बाद सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड के आरोपी को 2.5 वर्षों के अंदर हो गई आजीवन कारावास की सजा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आयुष्मान योजना की हर सुविधा, घर बैठे बन सकता है आयुष्मान कार्ड। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। तालू और कटे फटे होठों का इलाज करने के लिए 20 बच्चों की टीम को जिला प्रशासन ने किया रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल के लिए रवाना। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत और जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी हुआ स्थानांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
12: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
12: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
12: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
12: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
12: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
15: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
17: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
18: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 97076575।
18: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
18: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
18: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
18: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
0: बाकी दिन जादवपुर बाजार। Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ समय 9:26 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने का फरमाइश करें और अपने गाने के लेकर इंतज़ार करें और आपके गाने प्ले ना हो और आप सुन ना पाएँ और कार्यक्रम की समाप्ति भी हो जाए, तो आप डायरेक्ट पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और

पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से और सॉन्ग सुनना है। और गाने का बोल देते हैं, दिल ले गया परदेसी, डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई और गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई और दिलीप भाई, शुफिया वशीम, शगुफा करीम, रूबीना नाज, सफाक शाहजहाँ और हिना हजरा, अनामिका गुड़िया, सविता ब्यूटी, शबनम जरीन और शबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, सबीना, सबा, आशा, निशा, तब्बू और सलदा, संतरा और आपको। तो चलिए सबकी आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल कर ले, फिर आपके गाने प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोना भाई नमस्कार, कैसे हैं आप और मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ आप भी। और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो रेडियो रिमझिम, नमस्कार सभी दोस्तों को और सोना भाई आपको भी, और मैं राजेश प्रसाद सूरत से और आपको सुन रहा हूँ। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं शगीर अंसारी जी फ्रॉम तेजपुर आसाम से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि छोड़ दिया उसने हमें किसी और का वास्ता देकर, हम खुद ही तड़पते हैं हम अपने ही आंसू का रास्ता देखकर। हेलो सर नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं सुजीत जी। तो सुजीत जी आप भी बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं प्रियंका और गांव एक डनवा से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल हम समीर आलम के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

काफी प्यारा गाना सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचते जा रहे हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम, मैं एमपी महमूद केरला से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गुड इवनिंग सर, हरिकेश कुमार गौतम जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूँ इंतज़ार तेरे आने के बाद, क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इस करने के बाद। सुनो भाई नमस्कार, सगीर अंसारी जी की सुपर सॉन्ग, हम भी जुड़ गए हैं। दिलीप राम जी, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और सगीर अंसारी जी के गाने नहीं सुन रहे थे अभी हम सभी, समीर जी के गाने सुन रहे थे, और सगीर अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं यहाँ पे रोहित जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। गाने का बोल दिया गया है, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं रोहित जी, सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमझिम 94.4 एफएम पे।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
4: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और काफ़ी प्यारा गाना सुन रहे थे हम सभी ब्रेक से पहले, और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे रोहित जी। और यहाँ पे मैसेज करते हैं और लिखते हैं कि सुनो भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपको धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं हमारे श्रोतागण राजेश प्रसाद जी सूरत से, और गाने की फरमाइश करते हैं धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ये गाना सबसे पहले लिखे हुए आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूँ। हमारे मैडम जी भी हैं, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और हमें लगता है कि उन्हीं के उपरांत इस गाने के फरमाइश किया गया है। चलिए, अच्छी गाने हैं, सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे इंजॉय करते हैं।

प्रीडियम छी 94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई गाना बजाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए राजेश जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अगले गाने की फरमाइश और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं सुजीत जी और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है तेरा शहर छोड़ जाऊँगा। प्रेमनगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से मैसेज किए हुए हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि हाँ भैया हमको गाना सुनना है, मैं बुलेट चौधरी तीन भेड़िया से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, और मुझे एक सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली गाने की फरमाइश।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

हुआ है और लिखा गया है कि जितना प्यार है आपसे उससे और ज़्यादा पाने को जी चाहता है। जाने वो कौन सी खूबी है आप में कि हर रिश्ता आपसे बनाने को जी चाहता है। सुनो भाई नमस्कार और मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, सुपर सॉन्ग दिलीप राम जी मैसेज करते हैं। अगर मैसेज अभी टाइप कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइप करते रहे, और फिलहाल हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगले श्रोतागण की पसंद के गाने बॉर्डर फिल्म से संदेश आते हैं।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे, और काफी लंबे गाने हैं और अभी हम सभी आधे से ज्यादा सुन चुके हैं और आधे बाकी हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और कहा जा रहा है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। चलिए आपकी सॉन्ग सुनाते हैं, और इस मैसेज को करती हैं प्रियंका गांव एक डेढ़वा से, और इन्होंने गाने की फरमाइश करती हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, और गदर 2 मूवी से इस गाने की फरमाइश कर रही हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आगे इससे भी पुराने गाने का फरमाइश करने की प्रयास करेंगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय मैं भी हूँ, मेरा भी वेलकम कीजिए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबीना खातून श्यामपुर से जुड़ी हैं, बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सुनो भाई प्ले करने के लिए सॉन्ग। तो चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमछम सुनने के लिए, आप भी बन रहे हमारे साथ। फिलहाल आगे भी गाने एंजॉय करने हैं, तो सुना जाए अगली फरमाइश चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।

काफी प्यारा गाना सुन रहे थे अभी हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे प्ले करेंगे।

और आगे गाने के फरमाइश हमारे पास पहुंचाते हैं बुलेट चौधरी जी तीन भेड़िया से, और गाने का बोल देते हैं दीवानी में दीवानी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि माय प्रिय आरजे सोनो बाबू कैसे हैं, और इस हफ्ते में आज फर्स्ट बार आपसे जुड़ रहा हूँ, और शादी का मौसम है क्या करें, पर आज से नियमित हूँ तो मुझे भी एक सॉन्ग सुना दें। तो आज तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि काफ़ी समय निकल चुके हैं, और फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में वीरेंद्र गुप्ता भैया। कल कोशिश रहेगा कि आपकी फरमाइश हम प्ले करें। यहाँ पे मैसेज नहीं कॉल आ रहे हैं, तो कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। यदि आप मैसेज करते हैं तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने का प्रयास रहेगा। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। हाय सर, मेरा नाम नंदनी और मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन गाने की फरमाइश तो पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तो बिल्कुल आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं संदीप प्रजापति जी अम्बेडकर नगर जिला उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हाय सुनो जी गाना सुनना है अमृता कुमारी सरिया वार्ड नंबर 4 से। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है, अंतिम गाने प्ले होने बाकी हैं, तो आज नहीं हो पा रहा है। जो भी श्रोतागण आज छूट जा रहे हैं वो कल अपने मैसेज के साथ इस कार्यक्रम में हाजिरी देंगे। और समय है 9:15 से 10:15 तक ये कार्यक्रम चलता है, अधिकतम 20 मिनट तक चलता है, उससे ज़्यादा नहीं। और आज के लिए अंतिम गाने हम प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं, और आप सब इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। यहाँ पे एक और मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ था, और इनके तरफ से लिखा गया था कि ज्योति जी हैं और कह रही थी कि आज मेरे पति जी का जन्मदिन है, कोई बर्थडे वाला सॉन्ग सुना दीजिए। तो समय की कमी के कारण बर्थडे वाला सॉन्ग तो नहीं सुना पा रहे, लेकिन आपके तरफ से ये गाने होंगे, और इस गाने का फरमाइश बुलेट जी किए हुए हैं, और आपके तरफ से भी हम इस गाने को प्ले करते हैं, दीवानी में दीवानी, सजन की दीवानी। और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, और आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening Suez sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga Basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uparashtrapati Bhavan today. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, "Democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights." The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly, and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूं आपके अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ, जहां आपकी फरमाइशे और आपकी पसंद की गीते सजाते हैं इस महफिल को। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफ़र को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मनीषा कुमारी तरिया से।
1: जी, कैसी हैं मनीषा जी?
2: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था?
2: अभी बैठी हूँ, खाना खा कर बैठी थी। आपका खाना हो गया?
1: जी जी, मेरा खाना हो गया है।
2: चलिए ठीक है।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
2: तेनु शरारत सिखावा जद नैना लड़ा।
1: और सुनाना भी है?
2: जी मैम, आपको और अपने दोनों दीदी को और छोटे भाई को और रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आगे।
1: ओके, चलिए तो प्ले करेगा गाना आपके।
2: जी मैम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल के।
2: जी थैंक यू मैम।
1: मोस्ट वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 FM में।
1: प्रणाम प्रणाम
0: जी। प्रणाम जी। जी आज हम ही बानी सब बढ़िया बा। अपने के बताए कैसा बानी घर परिवार सभी लोग कैसा बा?
1: सब लोग ठीक
0: बा। हम भी ठीक है बानी। धनेश मिश्रा बात करते नहीं?
1: हाँ कुमार मिश्रा। सबका हमारा ठीक ठाक बानी है।
0: कैसे
1: सही अनुमान होता?
0: अच्छा मतलब अनुमान लगा के कारण जान सकता नहीं?
1: कारण क्या जान सकता नहीं,
0: मतलब कैसे अनुमान लागल कि हम ठीक ठाक नहीं थी?
1: ठीक ठाक जब शो में आई ले जब बोली ले तो वही पता चल जाएगा कि ठीक ठाक वाली की नहीं ठीक ठाक।
0: अच्छा अच्छा चली।
1: वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ नाम चकाचक तो आज बारिश भी भय लगे ना।
0: अभी कहाँ इंतजार बटे बारिश के। तो गाना कौन सुनवा दे?
1: गाना सुनवा दिया एगो अंजलि यादव के गाना बा सीधा साधा दिलवा के कत्ल कैलू
0: जी।
1: सुनवा दी
0: सुनवाई के भी बात
1: इतना हमारा नाम से जाने वाला लोग सब लोग सुन ली आपका रोड़ा के।
0: चलिए ठीक बात तो प्ले करते नहीं गाना
1: प्ले करे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल के। प्रणाम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
3: हेलो, नमस्कार मैडम।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
3: ये आप भारती जी बोल रहे हैं?
4: सोनी बात कर रहे हैं।
3: सोनी
4: जी,
3: आपसे हमको शिकायत है पहली बार। आज बहुत दिनों के बाद मिली हो। मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
4: जी जी,
3: है ना। आज कितने दिनों के बाद मिली है? कल आपका हम प्रोग्राम सुने हैं, वो वाला लाइव वाला। उसमें कौन सा आदमी पूछा है कि हम पान बहुत ज्यादा खाते हैं?
4: गणेश मिश्रा बोले हैं कि आप पान के शौकीन हैं।
3: बताइए, हम पान खा के बात करते हैं क्या?
4: नहीं, और ये बिमलेश जुड़ते हैं थारे की तरफ से कहीं से।
3: अच्छा,
4: हाँ, तो वो बोले कि आप कुछ खाते खाते बात करते हैं, आपके बातों से ऐसे लगता है।
3: मेरा आवाज ही मोटा है तो हम क्या करें, बोलिए।
4: नहीं, वो तो मैं बोली उनको कि ऐसा है, बाकी अब मुझे नहीं पता कि वो खाते हैं या नहीं खाते हैं।
3: ऐसा ही बोल रहे थे कपूरपुरा वाले भाई साहब।
4: हाँ हाँ, मन्नान भाई।
3: तो पान खा के बात करते हैं क्या? और इतना ही हम पहले सुने, जब रेडियो को जैसे वॉल्यूम ऑन किए ना, तो यही आवाज पहले मेरे कानों पे आया। और उससे पहले क्या प्रोग्राम हुआ वो हमको पता नहीं है।
4: अच्छा,
3: लेकिन हाँ, वही प्रोग्राम सुनने के लिए खोले, जब हमें टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिला तो अपना खोल कर सुनने लगे हम, इन्हीं का आवाज आया है ना।
4: अभी पता नहीं था समय पे आप रेडियो ऑन किए हैं।
3: हाँ, एकदम बिल्कुल सटीक एकदम समय पे किए हैं ऑन, है ना। अब हम किसी से शिकायत अपना बोल भी नहीं रहे घर में कि देखो ना, हमारे पान खाने का जो है मेरा शिकायत आ चुका है, है ना।
4: तो ऐसा क्या बात है? नहीं होता है कि अनुमान लगाना। तो वो ऐसे बोले तो हम बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम उनसे बात होगा तो बोले कि पूछिएगा, हमें उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर वो सुन रहे हैं तो वो खुद ही बोलेंगे, जवाब देंगे।
3: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात, पान तो खा ही लेते हैं, पर ऐसा कोई ये नहीं है कि पान हम नहीं खाए हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं। ऐसा ये नहीं है कि हम बात करते वक्त जो पान खा लिए हो, है ना, तो वैसा नहीं है बात मेरा। लेकिन वो शिकायत किए हैं तो सीखी किए हैं, कभी ना कभी तो खा ही लेते हैं।
4: नहीं, शिकायत नहीं बोले, शिकायत बोल के नहीं बोले, वो बोले कि ऐसा लगता है कि कुछ खाते हुए बात करते हैं। तो वो बोले कि हो सकता है पान के शौकीन हो तो पान खा रहे हो, ऐसा नहीं, बात बस बात हुई है। शिकायत के तौर पे ना वो बोले है ना, ये उनका सवाल था कि पूछिएगा,
3: पूछिएगा। तो हम उनसे पहले हम ही आपसे पूछ दिए हैं, बात को काटिएगा नहीं।
4: नहीं नहीं, काटने की, हम बोले वासो में ही बोले कि मुझे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो सुन रहे हैं जहाँ से भी।
3: हाँ,
4: तो इसका रिप्लाई वो जरूर देंगे जब भी उनसे बात होगी, लेकिन जवाब मिलेगा।
3: बोल दीजिएगा फोन से भाई साहब से कि हम पान खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, है ना, पर वो जो बातें होती है उस टाइम पे हम नहीं खाते हैं, और हम मेरे आवाज ही है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा।
4: नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन
3: हम तो ज्यादा तो कभी कभी तो नाम भी नहीं लेते हैं, बातों बातों में झील जाते हैं, है ना। कभी नाम भी लेते हैं, लेकिन नाम लेना जरूरी है और जगह का नाम लेना भी जरूरी है। इसमें लोग बाकी लोग सुनेंगे तो कैसे पता होगा कि कौन सा
4: लिस्नर है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए क्या कि आदमी जुड़े कहाँ से है, कौन है।
3: आज आपका प्रोग्राम आएगा ना, वो
4: लाइव तो आज आएगा ही,
3: लाइव आएगा ना।
4: लाइव आएगा
3: तो उसमें कैसे, उसका नंबर भी नोट नहीं किया ना कि लाइव वाला का, उसी में कॉल करके हम भी बोले।
4: उसमें नंबर है 72-77-16-65-96 पे कॉल कर सकते हैं।
3: 72-77-16-65-96
4: जी,
3: है ना। तो कितने बजे कॉल होता है? हर रोज होता है क्या?
4: हर रोज 12 से 4 के बीच में शो चलता है, लाइव रहते हैं। हाँ तो 12 बजे के बाद आप कभी भी जब भी रेडियो ऑन करिए, बस रोज सुनना शुरू करिए, कॉल कर सकते हैं आप।
3: तो ये कभी इसमें लिखते हैं, रुकिए, 72 कितना,
4: 77
3: 16
4: 65 96
3: रख लिए हैं। और इसी को हम कॉल करेंगे 12 बजे से लेकर कितने बजे तक मैडम?
4: 4 बजे तक।
3: 4 बजे तक 12 1 2 3 4 वापस कितना बड़ा स्कूल चलाती है जी आप?
4: बीच में आधा घंटे का ब्रेक होता है, न्यूज चलता है ना दोपहर समाचार,
3: तो हम तो देखते हैं कि आप इतना स्पीड में आप बोलती जा रही हैं, इतने बोलती सकती नहीं है क्या मेरा?
4: थकते हैं तो पानी लेके बैठते हैं, पानी पीते रहते हैं।
3: अरे बड़ी स्पीड है, इतना स्पीड में आपका वो पढ़ लेना, जान लेना, बोल लेना, हम तो कहते हैं कि ये ऊपर वाला कहाँ से दिमाग आया है, कितना सोच है।
4: नहीं वहाँ तो फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ काफी सारे लिसनर होते हैं, और गाना बजे या ना बजे मैसेज तो सबका शामिल करना है।
3: अच्छा कॉल भी उठा लेती है उसी टाइम में?
4: उसी में एक व्हाट्सएप से रहता है, इंस्टाग्राम से भी फरमाइश होती है, कॉल से भी होता है।
3: व्हाट्सएप से करेंगे क्या?
4: जिससे मर्जी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहे तो वहाँ मैसेज हो सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज वो, अब या फिर आप बोल के वॉइस भेज सकते हैं अपना, उसमें होता है ना वॉइस रिकॉर्डिंग का, हाँ तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने आवाज में अपना बात।
3: जैसे अभी कॉल करके हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे उसमें नहीं कर सकते हैं?
4: तो उसमें जो नंबर अभी लिखा है तो उसमें कॉल भी है, तीन माध्यम है उसमें शो में जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप है, कॉल है, इंस्टाग्राम है। आप जो माध्यम है उपस्थित उस माध्यम
3: उसी में बोलेंगे, आप भी से बोलेंगे, पान वाला बात उसी में बोलेंगे।
4: सही रहेगा।
3: बहुत दिनों के बाद मैडम मिली है, इतना हमको खुशी हो रहा है कि क्या बताएं मैडम।
4: नहीं आते तो डेली है लेकिन अब लाइव वाले में रहते हैं, दूसरा काम करते हैं, बाकी वो लोग हैं।
3: हम समझ रहे हैं। आपसे तो कोई गाना सुनाइए ना, बहुत दिनों के बाद आप मिली है जी, आप ही के मन से आज गाना सुनने का दिल करता है।
4: ठीक है तो हम
3: कोई कव्वाली सुना दीजिएगा।
4: अच्छा कव्वाली सुनना है?
3: हाँ कोई कव्वाली जो है वो ये वाला एल्बम का कोई कव्वाली भी सुनवा दीजिए।
4: अच्छा पुराना की नया में?
3: पुराना नया क्या, कव्वाली कव्वाली होता है, दूसरा का नाम है कव्वाली बहुत।
4: हाँ वो तो है।
3: अब हम नहीं कहेंगे भोजपुरी गाना, नहीं कहेंगे वो कोई गलत सलत गाना का हम नहीं कहेंगे।
4: गलत सलत गाना तो
3: जब आपसे सुनवाना है हमको सुनना है तो कव्वाली के माध्यम से हमारे लिए सही रहेगा।
4: जी जी बिल्कुल।
3: हाँ तो कोई सुनवाइएगा। एक दिन भारती जी बोले थे आप भी मेरे गाने में चॉइस का कोई बजाइए ना, तो कह रही हैं कि कौन सा, आखिर कोई नाम फिल्म का तो बताइए। ये वो हमने कहा कि बहुत पुराना फिल्म है, एक हंटर वाली, एक सजो रानी, ढूंढते रहिएगा, है ना?
4: तो सुनाई थी
3: ना, तो वो सजो रानी का सुनाई है एक गाना, सुना भी है, तो वो भी मेहनत कर रही है,
4: करना ही पड़ेगा।
3: आप थोड़ा बताते रहिएगा।
4: बताते हैं कुछ,
3: रख रहे हैं मैडम।
4: ठीक है,
3: सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने कॉल किया।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
2: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: बालवीर सुंदरपुर
1: जी, कैसे हैं बालवीर जी?
2: ठीक है, अपन बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं।
2: बारिश हो रहा है क्या उधर?
1: कल हुई थी, आज तो नहीं हुआ है।
2: इधर तक बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: चलिए बढ़िया है, तो आज आप इंजॉय करिए बारिश।
2: जी जी जी जी खातरी ना खोल बैठा भेजे ना खातरी खोल ना बैठा कही जाना पुराना।
1: एक बार और बताइए, आवाज कट रही है।
2: खातरी ना खोल ना बरसा भेजे ना जाने नेटवर्क के भाई ने
1: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा
2: हमारा।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपका। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, इसमें कॉल।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: अफ्ता कलम बरारी।
0: ठीक, कैसे हैं अफ्ताक जी?
1: अब ठीक है, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो सर बताइए, घर परिवार में आपके सभी लोग कैसे हैं?
1: ठीक है, आप घर में?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: दिन का कैसा हालत है?
0: दिन का हालत तो जैसा आपके उधर है वैसा ही है, ज्यादा दूर पे थोड़ी है।
1: बहुत गर्मी है।
0: गर्मी तो काफी है, हवा भी नहीं चल रहा।
1: गाना सुना दीजिए।
0: जी गाना सुना देंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
1: नाथ शरीफ।
0: तो नाथ शरीफ अगर आपको याद हो तो दो लाइन गा के आप ही बता दीजिए।
1: नहीं मैम, आप नाम उनसे प्लीज।
0: देखिए नाथ शरीफ के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो अगर आप बता दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: मरहबा मरहबा या मुस्तफा
0: गा के बता दीजिए।
1: उतना नहीं याद है मैम।
0: नहीं याद है? अच्छा ठीक है,
1: आपने बता दीजिएगा।
0: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी करिएगा नाथ शरीफ।
1: जी मैम। सब कोई
0: चलिए तो प्ले करेगा।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 हमें।
0: मेरा नाम शोभा पांडे है। मेरा नाम शोभा पांडे है, गोपालगंज से हाजीपुर से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, तो
0: गाना सुनना है।
1: जी जी, कौन सा गाना सुनवा दे बता दीजिए आपको।
0: बाघवा आइल बा
1: टुनटुन यादव का।
0: क्या
1: टुनटुन यादव के आवाज में है? वही ना।
0: हाँ वही।
1: और सुनाना भी है
0: आपको और पूरे रेडियो परिवार को और मेरे भाई बहन है।
1: चलिए कुछ ले करेगा ना।
0: ओके,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, माय चॉइस में कॉल।
2: बोला

0: जी आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: नाम तो हरिंदर प्रसाद पड़ेगा
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं हरिंदर जी?
1: बक्सर से।
0: बक्सर से
1: राकेश जी, भारती जी आपके पास कॉल किए थे बक्सर से।
0: अच्छा, हाँ राकेश भारती जी के मित्र बोल रहे हैं।
1: कॉल आया था आपके पास?
0: हाँ हाँ, बात हो चुकी है उनसे।
1: पार्टी दे रही है आप?
0: अच्छा, पार्टी चाहिए आपको भी?
1: चाहिए ना, हम तो साथ में है।
0: हाँ तो बोले हैं तो उनसे कि पार्टी उधार रहा, जिस दिन मिलेंगे उस दिन पार्टी देंगे। अब ऐसे तो फोन पे नहीं होगा ना, आइए कभी गोपालगंज तो पार्टी देते हैं।
1: आएंगे, हम भी आएंगे साथ में उनके साथ में। वो हमारे जीजा जी है।
0: स्वागत है आप सभी का गोपालगंज में।
1: वो राकेश जी मेरा जीजा जी है।
0: अच्छा, जीजा जी है। ओहो, फिर तो बढ़िया है, तब तो साथ में आना बनता है।
1: साथ में ही आएंगे।
0: आइएगा तो पहले बता के आइएगा ताकि हम भी रेडी रहेंगे।
1: सही, एक्टिव रहेंगे। सही है, और सब सुनाइए, सब ठीक है? खाना पीना हो गया?
0: सब बढ़िया है, खाना पीना खा के ही आते हैं घर से।
1: हम लोग का भी सही है।
0: तो गाना कौन सा सुनवा दे बता दीजिए।
1: सुनवा दीजिए नीलकमल का कोई भी गाना।
0: नीलकमल जी का कोई भी गाना? अच्छा, और डेडिकेट भी से रहेगा, एक तो भारती जी रहेंगे।
1: इंजन रेडी और जितना भी है आप भी है सब कुछ।
0: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
1: ठीक है, प्ले करिए।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस कॉल।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल

से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद की गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029994911। जी हाँ, 8029994911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंदन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
0: मनीषा कुमारी तरह सिंह से।
1: जी, कैसे हैं मनीषा जी?
0: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: अभी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
0: अभी तो कॉल लगा रही थी, खाना खा के अभी और कॉल लगा रही थी आपके पास।
1: चलो तो कॉल लग गया ना अभी।
0: जी मैम, आपका खाना हो गया है?
1: हाँ जी, मेरा खाना हो गया, खाना पीना खा के आए हैं, क्योंकि अब आप लोगों से बात करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना।
0: चलिए ठीक है।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
0: आप भारती मैम बोल रही हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं।
0: पहचान
1: कोई बात नहीं,
0: सब बढ़िया है ना?
1: हाँ जी, सब बढ़िया एकदम। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: सब कोई ठीक है घर परिवार में।
1: चलिए,
0: तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, सब कोई बढ़िया एकदम, मस्त प्रकार से बिंदास है।
0: चलिए ठीक है, भी रहना चाहिए।
1: तो गाना कौन सा सुनवा दे बता दीजिए
0: मैम, अपने पसंद का कोई सुनवा दीजिए।
1: तो ये गड़बड़ हो जाएगा।
0: आज सुनवा दीजिए।
1: आज सुनवा दें?
0: हाँ
1: अच्छा, ठीक है सुनवा देंगे। इतना बताइए कि आपको किसकी आवाज में सुनना है, कुछ तो हेल्प करिए आप।
0: नेहा कक्कर की आवाज में सुनवा दीजिए कोई अच्छा वाला। दिल गलती कर बैठा है।
1: दिल गलती कर बैठा, ये तो उसका है ना, जुबिन नौटियाल का है ना?
0: हाँ, वो भी गाया है और नेहा कक्कर दोनों।
1: नेहा कक्कर, हाँ चलिए, तो वो गाना प्ले कर दें।
0: जी मैम।
1: जी, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: जी मैम, अपने घर में सब कोई को और आप और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और भारती मैम को।
1: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
0: जी मैम।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमाई चॉइस में कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: हाँ जी, सोनी जी या भाटी जी?
1: सोनी जी बात कर रहे हैं, आप राकेश भाटी?
0: हाँ जी।
1: जी कैसे हैं?
0: बढ़िया संजय
1: जी। अभी क्या हो रहा था, खाना पीना हुआ?
0: हाँ खाना हुआ, अभी खाना खा करके अभी बैठ के फोन लगा रहा था तो लग गया।
1: चलिए बढ़िया बात है कि फोन लगाया और लग गया।
0: कब से कितने दिन से बातें नहीं हो रहा था भाटी जी से बात।
1: आज सोचे कि हम ही बात कर ले, थोड़ा काफी दिन हुआ सभी लोग से बात किए। ऐसे तो मुलाकात होता ही है लेकिन बात करने का अलग मजा है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: हाँ जी, है। हम कब से सोच रहे थे कि सोनी जी से कब बात।
1: चलिए बात हो गया। तो गाना कौन सा सुना दे आज?
0: गाना सुनना था हमको, पुराना फिल्म लगाना है अंदाज फिल्म का, तो हिंदी सॉन्ग है आएगा मजा बरसात का, उसी में लगाना है।
1: आएगा मजा बरसात का
0: अंदाजे का लगाना है।
1: हाँ अंदाज का ही है,
0: वही वाला सुनना था।
1: सुनवाना भी है?
0: हाँ सुनवाना तो सब हम लोग 3 आदमी है साथ में, हरिंदर जी है, पप्पू जी है, हम है, बलराम जी है, मंगलू यादव है, और अपना ग्रुप है 4-5 आदमी का। हाँ तो सब लोग में मतलब हम ही एगो मतलब मैसेज वैसेज या सब कुछ करते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या फिर करो, आपका फोन लग जाता है या आपका फरमाइश पूरा हो जाता है, हम करते हैं तो 1 हफ्ता लगता है।
1: ऐसा नहीं है, होता है कभी कभी किसी का कॉल जब बज जाता है ना तो वो कॉल बार बार बजते जाता है।
0: हाँ नहीं भोजपुरी है ना मैसेज वाला में, तो उसमें हम मतलब दोनों दिन पर मैसेज करते हैं तो हमारा तो बच जाता है, उन लोगों का नहीं बचता। उन लोगों का होता है कि आपका 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ है।
1: नहीं तो आप 1 हफ्ता बाद ही मैसेज करते हैं ना, फरमाइश देते हैं।
0: हाँ तो वही हमसे तो मतलब शिकायत कर रहा था कि आपसे क्यों बात, आपका फरमाइश खोल जाता है, हमारा नहीं बनता है।
1: कोई नहीं बच जाएगा।
0: तो हम बोले हम तो भाई पुराने लिस्नर है, हमारा तो बजेगा ही बजेगा।
1: अच्छा चलिए बात होगी फिर।
0: ठीक है संजय, तो बढ़िया बन
1: है, और भी कॉल लेना है?
0: और संजय बढ़िया बना है?
1: जी जी सब बढ़िया है एकदम।
0: बर्थडे वाला बाकी मिठाई अफेक्ट ना मिला था हमसे।
1: अच्छा बाकी रहता हूँ उधार, जहिया भेट हो तहिया खा ले।
0: ठीक है,
1: अब फोन पे तो नहीं दे सका।
0: ना बल्ले सही बात है,
1: जहिया गोपाल का जाए तहिया दे दे पार्टी। ठीक
0: है, ठीक है संजय, ठीक है, बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद। समय कॉल के लिए

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
3: जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: धनेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
3: जी कैसे हैं धनेश जी?
2: आज आवाज बदली बदली लग रहा है, कौन बोल रहे हैं?
3: जैसा हम नहीं पहचान पाए वैसे ही समझिए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। आज आवाज बदली बदली लग रहा है ना। चलिए, और सब?
3: सब बढ़िया है।
2: आज मौका मिल गया?
3: हाँ मौका मिल गया, आज सच्ची बात कर ले, ज्यादा दिन हो गया।
2: मैं भी याद किया था ना।
3: हाँ हाँ,
2: मैं भी आज याद किया था कि आज आप ही आ जाओ, थोड़ी बात हो जाए।
3: हाँ बोलते हैं ना, याद करो सच्चे दिल से तो वो हो जाता है।
2: हाँ जिस दिन, हाँ ये तो माना हुआ बात है, जिस दिन याद किए हैं जिस दिन आप मिले हैं, ऐसी बात नहीं है।
3: तो आप दिल से याद करते हैं इसीलिए।
2: हाँ हाँ, उस दिन भी याद किया था तो मिले थे, आज भी याद किए हैं तो मिल ही गए।
3: ये तो और भी अच्छी बात हो गई।
2: तो आज बारिश थोड़ी हो रहा है कि नहीं?
3: आज बारिश नहीं हुआ, आज तो धूप निकला हुआ है काफी कड़ाके वाली।
2: धूप निकला हुआ है तो उधर से बारिश खत्म करके इधर भेजना चाहिए, इधर मर रहे हैं हम गर्मी में।
3: हम तो भेज दिए हैं, हो सकता है कि रास्ते में हो।
2: मैं थोड़ी बहुत आई थी, बूंदा बूंदी तो रात में आई थी। मैं सोचा कि सोनी मैम बोल रही थी कि भेज रही हूँ इधर से, तो भेज दिए लेकिन हुआ ही नहीं।
3: अब उधर जाते जाते रास्ते में जाते जाते खत्म हो गया होगा पानी, बादल का
2: सारा खत्म हो गया होगा। दूर पड़ता है ना?
3: दूर भी तो है काफी।
2: सब ठीक है?
3: जी जी सब बढ़िया है। तो बता दीजिए गाना कौन सा सुना दे?
2: आप सुना दीजिए बबीता सागर कहीं लेकर अच्छे में गिलवा टूट जाला, वह सुना दीजिए।
3: अच्छा बबीता सागर क्या है?
2: हाँ
3: ओके,
2: ये सुनाना है आपको और भारती जी को। हाँ, और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सारे सुन लेंगे।
3: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
2: हाँ प्ले कीजिए।
3: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए।
0: मैं अहमद अली सरयाबाद नंबर 1 से, आप कौन हैं?
1: सोनी बात कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडिया में।
0: आपसे बात करके बहुत दिन हो गया मैम, टाइम नहीं मिलता, कैसा जगह काम कर रहे हैं सर, नेटवर्क नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है।
1: नेटवर्क आजकल बहुत इशू कर रहा है,
0: तो जैसा अंदर काम है ना मैम, तो भी नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत अभी दिन भर दिन नहीं लगता है, तो भी नहीं सुन पा रहे हैं, क्या करें?
1: कोई नहीं, जब समय काम भी जरूरी है, काम
0: सबसे जरूरी है मैम, काम से ही सब है।
1: काम बिल्कुल जरूरी है, काम पहले काम फिर उसके बाद कुछ भी है।
0: अच्छे है ना?
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम लोग तो अच्छे हैं। कितना दिन हो गया करीब, कितना 5 दिन तो सो नहीं सुन रहा हूँ आपका।
1: कोई नहीं, काम पहले निपटा लीजिए, फिर सो आराम से एकदम बिंदास सुनिएगा।
0: फोन करने के लिए काम छोड़ के बाहर निकले थे।
1: तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
0: आज हमको गाना सुनवाइए काजल की बाहों में मूवी है, उसका गाना सुनवाइए, कितना सुकून है, कितना आराम है, पास में तुम हो और हाँ सुनने काम
1: जी, और सुनवाना भी है।
0: हाँ सुनवाना तो है, सबसे पहले तो आपको सुनवाना है और भारती मैम को, अखरी को और चंद्रान भाई को और दिलीप भाई को, राजेश जी को और जो भी रेडियो यहाँ से सुन रहे हैं सभी को।
1: चलिए ठीक है, फिर बात होगी।
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, कॉल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों के ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहाँ से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार
3: जी। नमस्कार, क्या हाल चाल
2: जी? मैं यूट्यूब बलानी जी पप्पू यादव।
3: कैसे हैं पप्पू जी?
2: बहुत बढ़िया, आपसे काफी दिनों में बात हुई। और क्या हाल है?
3: सब बढ़िया एकदम।
2: बारिश हो रही है आपकी तरफ?
3: कल हुई थी,
2: आज नहीं हुई है।
3: नहीं, आज तो मौसम गर्मी वाला है, एकदम धूप निकला हुआ है।
2: ओहो, हमारी तरफ तो अभी 6 बजे से काफी बारिश हुई है।
3: इधर से बारिश अब आप लोगों की तरफ चली गई है।
2: आपने भेजी? बढ़िया।
3: कल काफी बारिश हुई है यहाँ, दिन भर पूरा दिन बारिश हुआ है। कल 9 बजे
2: तो बढ़िया है, पहले आपने फर्स्ट वाग ही मार लिया।
3: नहीं, इससे पहले कहीं हो रही थी बारिश, तो हम बोले थे कि वहाँ से भेजी है, स्कूल में बात हुई थी।
2: अच्छा।
3: फिर कल यहाँ हुआ तो कल बाकी लिस्टनर लोग बोल रहे कि हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम बोले ठीक है। तो आज कहीं दूसरे जगह हो रही है बारिश।
2: चलिए, और आप प्रार्थना करवा लिया करेंगे जब भी एड्रेस हुआ करें, बारिश दिक्कत हुआ करेगी तो।
3: बिल्कुल, प्रार्थना तो कर ही रहे थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश बहुत जरूरी था। बारिश होना
2: बहुत जरूरी, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, फेल हो गए
3: थे, फसल के लिए भी जरूरी था।
2: बहुत जरूरी है क्योंकि धान वगैरह गाड़ जाएंगे ना ये।
3: हम लोग को तो गर्मी लग रहा है, तो हम लोग बहुत सारे उपाय है कर लेंगे, लेकिन फसल के लिए कोई उपाय नहीं है।
2: बिल्कुल, आप तो एसी में बैठे रहते हैं दिन में।
3: हाँ, तो अभी जब तक ऑन एयर है एसी में रहते हैं।
2: हाँ, जब तक ऑफ एयर होते हैं तो थोड़ा बाहर हो जाते हैं।
3: बाहर हो जाते हैं एसी से,
2: फिर ठंड रहते हैं।
3: एसी में तो ठंड लगता है।
2: हाँ, सही बात है। एसी में कितना टेम्परेचर हो जाता है? माइनस
3: में नहीं रखते हम लोग, नॉर्मल रखते हैं। फिर माइनस में रखने के बाद पता चला बाहर निकलने के बाद बीमार हो जाएगा आदमी ना, सरद गर्म हो जाएगा।
2: ये बात तो सही है, दिसंबर का आनंद लेना है तो माइनस करो।
3: हाँ, तो दिसंबर का आनंद नहीं लेते हैं, बस नॉर्मल रखते हैं कि गर्मी का पता ना चले।
2: बिल्कुल सही बात है। या तो 20 रखो या फिर 24 रखो।
3: हाँ, वैसे ही रहता है, 20 से 24 के अंदर रहता है, उससे नीचे नहीं आता।
2: सही बात है। और अब अपने स्टाफ कितने आ गए? अब नए आ गए हैं?
3: नहीं, अभी है स्टाफ है, तो अभी तो रिकॉर्डिंग बातें भी करती थी, आज सोचे काफी दिन बाद चलो आज हम करते हैं, एक घंटे देखते हैं।
2: अच्छा, एक मिनट बात हुई थी
3: तो
2: ज्यादातर
3: वही बात करती है आजकल रिकॉर्डिंग।
2: तो आज लाइव शो करेंगे,
3: आज भी करेंगे।
2: अच्छा, बढ़िया बात है। अभी गर्मी भी रिकॉर्ड बहुत तोड़ गया था, एसी वगैरह सब फेल हो गए है ना, शॉर्ट बहुत हो गए थे एसी, तब ज्यादा दिक्कत होती है आउटरों में, उनमें बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं वो।
3: हाँ, वो सब हीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति ठीक है अभी। तो गाना कौन सा सुना दे?
2: गाना आज मुझे सुनना है, मैं 18 वर्ष की हो गई, मैं क्या करूँ, मेरी सुंदरी लंबी हो गई, अलका याग्निक सॉन्ग है, सुरेश नारायण जी, ये सॉन्ग सुनना है।
3: बड़ा ही गाना डेडिकेट भी करिएगा किसी को।
2: बिल्कुल, स्पेशली आपके लिए डेडिकेट रहेगा, क्योंकि आपसे काफी दिनों में बात हुई है, अभी सोता काफी बात कर रहे थे, बहुत बिजी जा रहा था, बहुत मुश्किल से कॉल लगा है।
3: बोलने के बाद सभी लग जाते हैं कि मेरा कॉल लग जाए।
2: अब वो लोग ट्राई कर रहे होंगे, आपके पास तो बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे।
3: बहुत सारे तो वेटिंग बंद करके रखते हैं, क्योंकि परेशानी होती है रिकॉर्डिंग करने में।
2: हाँ, ये बात है।
3: हाँ, तो बंद रहता है, जैसे ही कॉल करता है तुरंत दूसरा कॉल आ जाता है।
2: हाँ, वो तो तुरंत ही, वो तो लग बाई चांस है ये।
3: हाँ,
2: और घर परिवार में आपकी सब ठीक है?
3: जी जी, सब कोई बढ़िया है।
2: बढ़िया ही होना चाहिए।
3: तो बात बहुत हुई, फिर बात होगी।
2: बिल्कुल
3: जी, और भी लिसनर है वो लोग परेशान हो रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल, स्पेशली आपके लिए डेडिकेट रहेगा, और हमारे जितने श्रोता सुना लाइव सुनेंगे उनके लिए, सबके लिए डेडिकेट रहेगा।
3: ओके, चलिए, तो प्ले करेगा ना?
2: जी बिल्कुल
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माई चॉइस में कॉल।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों के ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
3: हेलो मैम, सलाम, नमस्कार।
4: जी नमस्कार, बहुत
3: जी मैम, कैसे हैं?
4: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: मास्टर जटा सोनी में बोल रही हैं।
4: जी जी
3: मैम, अभी कॉल कट गया, रिंग हुआ पूरा।
4: नहीं, इधर तो कॉल आया ही नहीं है।
3: नहीं मैम, रिंग हुआ था लेकिन कट गया ऑटोमेटिक।
4: हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, इधर कॉल नहीं पहुंचा है क्योंकि अभी दो कॉल हम रिकॉर्ड किए, आपका तीसरा कॉल है।
3: जी मैम, हम बहुत ज्यादा कोशिश में थे कि पहला कॉल लग जाए, सोनी मैम से बात हो जाए।
4: चलिए पहला नहीं, खैर लेकिन बात तो मेरे से हो गया।
3: मैम तो कितना नंबर पे हैं हम?
4: तीसरे नंबर पे हैं आप।
3: जी मैम, ये बताने के लिए धन्यवाद।
4: जी
3: सब बढ़िया मैम, नाश्ता पानी हो गया?
4: हाँ जी, खाना हो गया है।
3: और भी अच्छा है ये बात। जी मैम, आप तो बहुत अकेले मतलब दोनों शो करती हैं?
4: नहीं दोनों नहीं करते, अभी तो भारती जी आ गई हैं तो हेलो माई चॉइस शो कर लेती हैं। आज सोचे काफी दिन हो गया है तो मैं बात कर लूं।
3: मैम भोजपुरी एक्टर बहुत ज्यादा अच्छे मतलब अच्छे से चलाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर संडे को टाइम निकाल कर जुड़ते हैं।
4: जी जी धन्यवाद, क्या आप टाइम निकाल के जुड़ते हैं हमारे शो से?
3: जी मैम, बस आपका तो अच्छा चलता है इसलिए आपको पुराना बोल रहे हैं।
4: जी जी
3: जल्दी। जी मैम, तो मुझे गाना सुनना था।
4: जी बिल्कुल बताइए, कौन सा गाना सुना दे आपको?
3: सबसे अलग ही गाना सुनना है जो सबको पसंद आएगा, शीशे का था दिल, ऐसा ही कुछ है ना गाना,
4: पत्थर का जमाना था।
3: हाँ ऐसा ही कुछ गाना है, बहुत पहले सुने थे, आपको भी सुना दे हम भी सुन ले।
4: काफी बढ़िया गाने की फरमाइश है और काफी दिन बाद फरमाइश पहुँचा है इस गाने की।
3: मैम तो ले कीजिएगा पूरा फुल सॉन्ग।
4: ओके फुल सॉन्ग प्ले करेंगे।
3: मैम तो कब तक बज जाएगा, जाते जाते बता रही है?
4: 5 से 7 के बीच में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारी चॉइस में कॉल।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हेलो माई चॉइस से विदा लेने का। आपकी फरमाइशों और प्यार ने इस महफिल को और भी खास बना दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी आरजे सोनी को जाने की इजाजत। फिर होगी मुलाकात, लेकर आएंगे आपकी पसंद के और भी खूबसूरत गीत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा कैमरे से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाप पर ताली, भौजी

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि दिनांक 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार के सुप्रभात। रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:14 पर होगा और सूर्यास्त 6:46 पे होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। तो श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:00 हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।